सुप्रभात। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज दिन बुधवार है, शक संवत 1947 के ज्येष्ठ मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 3 जून 2026। अब हमारी सुबह की सभा आरंभ होती है। आप सभी का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो।

एक सेठ ने अपने बेटे को मतलबी दोस्तों से घिरे देखा तो उसे बताने के लिए कि वो जिन्हें अपना दोस्त समझकर अपना समय और धन दोनों बर्बाद कर रहा है वो सब मतलबी हैं। उसने एक तरकीब निकाली, एक सफेद चादर में कटा हुआ तरबूज लपेटकर अपने बेटे को दिया और कहा, बेटा मुझसे अनजाने में किसी की हत्या हो गई और इस चादर में उस व्यक्ति का कटा हुआ सिर है, इसे एक दिन के लिए अपने किसी दोस्त के पास छिपा दो। बेटा चादर को लेकर अपने सभी दोस्तों के पास एक एक कर पहुंचा और उन्हें सारी बात बताकर एक दिन के लिए उस चादर में लिपटे सिर को छिपाने के लिए कहा, लेकिन सभी ने बहाने बनाकर टाल दिया। निराश होकर बेटा वापस अपने पिता के पास लौट आया और उसे सारी बात बताई। पिता ने कहा, कोई बात नहीं, तुम इस चादर को लेकर मेरे दोस्त राम प्रकाश के घर चले जाओ और उन्हें सारी बात बताकर इसे छिपाने के लिए कहना। बेटा राम प्रकाश के घर पहुंचा और सारी बातें बताई। राम प्रकाश ने वो चादर लेकर कहा, अपने पिता से कहना घबराने की जरूरत नहीं। अब बेटे की समझ में आ गया था कि दोस्ती असल में किसे कहते हैं।

तो अभी भी आपने सुना जीवन सौरभ दोस्ती किसे कहते हैं। अब आपको बताया था आज की सभा में प्रसारित की जाने वाले अन्य कार्यक्रम। अब से ठीक बात सुनेगा अक्षय निधि मंडल 132 और अक्षय निधि के बाद आनंद लीजिए भक्ति संगीत का। आज बुधवार है, बुधवार को भक्ति संगीत, ये तो रोज ही गणेश वंदना से आरंभ होता है, गणेश जी की भक्ति से आरंभ होता है हम सभी का दिन, हर कार्य। आज बुधवार है, भगवान गणेश का दिन, शुरुआत करेंगे भक्ति संगीत की गणेश वंदना से। वतन का राग रोजाना की तरह सुबह 8 बजे का समय होगा। वतन के राग का बालकृष्ण भट्ट की जयंती पर आधारित होगा आज का ये कार्यक्रम। कार्यक्रम में स्वर होगा सुनीता सिंह का। रानी दुर्गावती के गौंड राज्य का इतिहास सुनिए कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से अंतर्गत सुबह 8:30 पर। डॉक्टर पूजा सक्सेना से संदीप शर्मा की चर्चा आपको सुनवाएंगे। टेक गुरु ये कार्यक्रम सुनिए सुबह 9 बजे गूगल सुपर सर्चर विषय पर। कार्यक्रम स्वर होगा एकता सरीन का। सुबह 9:30 पर सुनिए भारत विभूति कार्यक्रम अमियो कुमार दास पर आधारित। कार्यक्रम स्वर होगा सुनीता सिंह और दीपक नीमा का। और सुबह 10 बजे का समय होगा परिक्रमा का। काव्य गुंजन यह कार्यक्रम सुनिए सुबह 10:30 पर। कार्यक्रम में कलाकार होंगे भक्ति सक्सेना संदीप शर्मा दीपक नेमक के स्वर के तौर पर। ग्यारह बजे सुनिए कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक श्री प्रोफेसर श्री राम शंकर अभियंग्र के पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम।

11:30 पर सुनिए कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो अब से लेकर दोपहर 12 बजे तक बने रहिए मेरे यानी रत्नेश के साथ और आनंद लीजिए इन विभिन्न कार्यक्रमों का।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 132वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं परुच्छेप देवोदासी, देवता हैं इंद्र, पर्वत और शेष, छंद है अत्यष्टि।
3: त्वया वयम् मघवन् पूर्वे धन इंद्रत्वोताः सासह्याम प्रतन्यतो वनुयाम वनुष्यतः नेदिष्ठे अस्मिन्न हन्यधिवोचा नु सुन्वते अस्मिन्यज्ञे वीचयेमा भरे कृतम् वाजयन्तो भरे कृतम्। हे ऐश्वर्यवान इंद्रदेव, आपके संरक्षण में हम लोग प्रथम संग्राम में ही आक्रमणकारियों पर विजय प्राप्त करें। आप हिंसक वृत्ति के दुष्टों का संहार करें। इन समीपस्थ दिवसों में आप साधकों को प्रेरित करें। श्रेष्ठ कर्मों के लिए संघर्ष करने वाले हम याजक गण इस यज्ञ में आपका वरण करें। हम शक्ति संपन्न बनकर युद्ध नेतृत्व की योग्यता में कुशल हों। स्वर्जेशे भर आप्रस्य वक्मन्युषर बुधः स्वस्मिन् नञ्जसि क्राणस्य स्वस्मिन् नञ्जसि अहन्निन्द्रो यथा विदे शीर्ष्णा शीर्ष्णोपवाच्यः अस्मत्रा ते सध्रयक् सन्तु रातयो भद्रा भद्रस्य रातयः। सुख प्राप्ति हेतु किए जाने वाले संघर्षों, श्रेष्ठ मनुष्यों के उच्च लक्ष्यों, प्रभात वेला में जागने वालों के व्यवहारों तथा सत्कर्मों का निर्वाह करने वालों के नित्य कर्मों में बाधा डालने वाले आलस्य प्रमादादि शत्रुओं को इंद्रदेव ने ज्ञान की तीक्ष्ण धारा से समाप्त किया। इससे समस्त मनुष्यों में इंद्रदेव प्रशंसनीय हुए। हे इंद्रदेव, आपके समस्त ऐश्वर्य हमें प्राप्त हों। आप जैसे मंगलकारी के सभी अनुदान हमारे लिए मंगलमय हों। तत्तु प्रयः प्रत्नथा ते शुशुक्वनम् यस्मिन् यज्ञे वारमकृण्वत् क्षयमृतस्य वारसि क्षयम्। वि तद्वोचेरध द्वितान्तः पश्यन्ति रश्मिभिः स घा विदे अन्विन्द्रो गवेषणो बन्धुभिक्षिद्भ्यो गवेषणः। हे इंद्रदेव, जिस यज्ञ में आपने प्रतिष्ठित स्थान बनाया है वहां पूर्ववत ही आपके निमित्त तेजस्वी अन्न उपलब्ध हों। सत्य की महिमा से सुशोभित उच्च स्थान पर पहुंचने वाले आप उसी सत्य मार्ग को ही दिखाएं। सूर्य रश्मियों से सभी लोग दोनों लोकों के मध्य में स्थिर मेघ रूप में आपके ही दर्शन करते हैं। आप ही गौवों के प्रदाता होने के साथ साथ सत्य धाम के ज्ञाता हैं तथा यजमानों के लिए गौवों को देने वाले हैं, ऐसा सुप्रसिद्ध है। नु इत्था ते पूर्वथा च प्रजाच्यम यदंगिरोभ्यो वृणोरप वज्रमिंद्र शिक्षन्नपव्रजम् एभ्यः समान्या दिशास्मभ्यं जेषि योत्सि च सुन्वद्भ्यो रंधयाकं चिदव्रतं हृणायन्तं चिदव्रतं। हेन्द्रदेव, पहले के समान ही आपकी पराक्रम शक्ति प्रशंसनीय हो, जो आपने अंगिराओं को गौ समूह जीत कर दिया तथा उन्हें ले जाने का मार्ग दिखाया, वैसे ही आप हमारे लिए भी ऐश्वर्यों को जीत कर प्रदान करें। आप यज्ञ विरोधियों तथा क्रोध युक्त पापियों को यज्ञादि श्रेष्ठ कर्म करने वालों के हित में विनष्ट करें। सम यज्जनान क्रतुभिः शूर ईक्षयद्घने हिते तरुषन्त श्रवस्यवः प्रयक्षन्त श्रवस्यवः तस्मा आयुः प्रजावदिद्बाब्दे अर्चन्त्योजसा इन्द्र ओक्यं दिधिषन्त धीतयो देवा अच्छा नधीतयः। जब बलशाली इंद्रदेव ने पराक्रम युक्त कर्मों द्वारा मनुष्यों की तरफ निहारा, तब अन्न प्राप्ति के इच्छुक मनुष्यों ने युद्ध के प्रारंभ होने पर शत्रुओं को विनष्ट किया। उस समय यशः अभिलाषियों ने इंद्रदेव की विशेष अर्चना की, आप अपनी सामर्थ्य शक्ति से शत्रुओं को विनष्ट करके श्रेष्ठ संतान एवं दीर्घायुष्य प्रदान करें। श्रेष्ठ कर्मों के निर्वाहक मनुष्य इंद्रदेव को ही अपना एकमात्र आश्रयदाता मानते हैं।

0: याजक श्रेष्ठ वीर पराक्रमी संतानों से युक्त होकर अपार धन वैभव से लाभान्वित हों।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 132वें सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत। और भक्ति संगीत की शुरुआत भगवान गणेश की गणेश वंदना से।

श्रोताओं, ये तो सर्वविदित है कि ईश्वर के बिना हम कुछ नहीं हैं। अंततः उसी ने हमें गढ़ा है, उसी ने बनाया है और हमें भी उसी की शरण में जाना होता है। या यूं कहें कि सब कुछ होने के बाद भी अंततः है हरि शरण ही।

श्रोताओं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, करते भी हम हैं, हर कोई करता है, आप भी करते हैं, वो भी करता है, हर इंसान उसकी जितनी क्षमता है उससे कार्य करता है, प्रयास करता है, फल भी पाता है। लेकिन हम कोई ना कोई एक ताकत है जिसके भरोसे ये करते हैं, जो हमसे करवाता है, जो कार्य हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है। तो हम सब के मन में एक भरोसा है, उस भरोसे के सहारे हम अपने प्रयास करते हैं।

श्रोता, हम प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास कितना सफल होगा, क्या उसके परिणाम होंगे, परिणाम जो भी हो, अंततः हम जाते हरि शरण में ही हैं। सफल हो तो भी, असफल हो तो भी, सफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, असफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, जाते हरि शरण में ही हैं।

मित्रों, ये था भक्ति संगीत। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। बने रहिए हमारे साथ अगले कार्यक्रमों के लिए।

नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सन 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम, विद्रोह की हुंकार से अंग्रेजी राज की नींव हिल उठी थी और इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की पुरजोर कोशिश। इसी कालखंड में 13 वर्ष का एक बालक अंग्रेजों की बर्बरता को अपनी आंखों से देख रहा था। प्रयागराज के चौक इलाके में अनगिनत क्रांतिकारियों को सरेआम पेड़ से लटका दिया गया था। उस बच्चे ने अपनी आंखों से कितने ही देशभक्तों के शवों को पेड़ से लटकते हुए देखा और यहीं से उसके मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत का भाव पैदा हो गया। आने वाले समय में ये बालक एक सफल पत्रकार, निबंधकार, उपन्यासकार और नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिन्हें हम पंडित बालकृष्ण भट्ट के नाम से पहचानते हैं। वो बेशक राजनीति में नहीं आए, लेकिन इस घटना ने उनके एक दृढ़ चरित्र का निर्माण किया। वो आजीवन गलत के मुखर विरोधी रहे, पूरी बेबाकी से गलत को गलत और सही को सही कहा करते। अपने इसी तेवर और साहस के साथ उन्होंने आजीवन पत्रकारिता और साहित्य सेवा की। पंडित बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के उन्नायक रचनाकारों में से एक हैं। वो भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में स्थान रखते हैं। इस तरह पंडित बालकृष्ण भट्ट हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार और हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रगण्य हैं। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने जनधर्मी व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा, नया रंग रूप और मानस प्रदान किया। इस युगांतरकारी कार्य में वो अकेले नहीं थे। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम घन, राधाचरण गोस्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकार उनके साथ थे। लेकिन ये एक स्थापित मान्यता है कि पंडित बालकृष्ण भट्ट अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय, मुखर और लंबे समय तक संपूर्ण निष्ठा के साथ साहित्य सेवा करने वाले एक समर्पित साहित्यकार थे। सन 1844 में प्रयागराज में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित बेनी प्रसाद भट्ट था और माताजी का नाम था पार्वती देवी। उनके पिता एक व्यापारी थे, जबकि माता एक सुसंस्कृत विदुषी महिला थीं, जिनके कारण बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन के प्रति विशेष रुचि और लालसा जागी। बचपन से ही उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रारंभ में घर पर ही उन्हें संस्कृत की शिक्षा प्रदान की गई और फिर प्रयाग के मिशन स्कूल से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। वो अत्यंत मेधावी छात्र थे। शिक्षा के साथ ही उन्होंने संस्कृत, व्याकरण और साहित्य का भी गहन अध्ययन किया। संस्कृत के साथ ही उन्हें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और फारसी भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन का कार्य भी किया। आगे चलकर दूसरे स्कूलों में उन्होंने संस्कृत का अध्यापन कार्य भी आरंभ किया था, लेकिन अपने सिद्धांतों, अपनी विचारधारा और दृढ़ स्वभाव के कारण नौकरी उन्हें कभी रास नहीं आई और उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दिया तथा नई राह की तलाश में चल पड़े।

पंडित बालकृष्ण भट्ट ने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। इसी के चलते उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। चूंकि उनका विवाह हो गया था, इसलिए अब उन्हें अपनी बेकारी खलने लगी थी। तब वो व्यापार करने के लिए कलकत्ता चले गए, लेकिन उनका मन व्यापार में नहीं रमा और वो वापस लौट आए। साहित्य ही वो विषय था जिसमें उनका मन लगता था। वो संस्कृत साहित्य के अध्ययन और हिंदी साहित्य की सेवा में जुट गए। पिता की मृत्यु के पश्चात ये अपेक्षा उनसे की गई कि वो अपना पैतृक व्यवसाय संभालेंगे। इस व्यवसाय के कारण भी उन्हें गृह कलह का सामना करना पड़ा। उन्होंने गृह त्याग दिया। घोर आर्थिक संकट का सामना करने के बावजूद उन्होंने निरंतर साहित्य सेवा की। अध्यापन कार्य के साथ ही भारतेंदु जी से प्रभावित होकर उन्होंने हिंदी साहित्य सेवा का व्रत ले लिया था। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला, जिसका संपादन वो स्वयं करते थे। मासिक पत्रिका हिंदी प्रदीप का पहला अंक छात्रों से मिले 5-5 रुपए के चंदे से सन 1877 में प्रकाशित हुआ। इसके एक अंक की कीमत 4 आने थी। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप द्वारा निरंतर 32 वर्षों तक हिंदी की सेवा की। उनकी कलम ब्रिटिश हुकूमत को भयभीत किया करती थी। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध हिंदी प्रदीप पत्र लोगों के भीतर राष्ट्रीयता का भाव भरा करता था। दरअसल उन्होंने हिंदी के प्रचार के लिए प्रयाग में हिंदी वर्धिनी सभा की स्थापना भी की थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा की ओर से ही उन्होंने हिंदी प्रदीप पत्र निकालना प्रारंभ किया था। ये एक साहित्यिक पत्र था जिसमें हास्य व्यंग्य और गंभीर दोनों प्रकार की साहित्यिक रचनाओं का प्रकाशन होता था। हिंदी प्रदीप के माध्यम से भट्ट जी ने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के साथ ही राष्ट्रीय चेतना को बलवती बनाने का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक पद्य रचना तैयार की जो हिंदी प्रदीप के मुख्य पृष्ठ पर निरंतर छपती रही। सरकारी नीतियों, ग्राहकों और आर्थिक तंगी से उत्पन्न अनेक समस्याओं का सामना करते हुए पंडित बालकृष्ण भट्ट ने 32 वर्षों तक हिंदी प्रदीप का संपादन प्रकाशन जारी रखा। हिंदी प्रदीप के आरंभिक अंक जहां भारतेंदु युग से पूर्णतः प्रभावित हैं, वहीं द्विवेदी युग में प्रकाशित हिंदी प्रदीप के अंकों में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा निर्देशित साहित्य विधाओं की झलक दिखाई देती है। इस तरह पंडित बालकृष्ण भट्ट ने आधुनिक हिंदी साहित्य के दो महत्वपूर्ण युगों, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में अपनी उत्कृष्ट साहित्यिक पत्रकारिता के माध्यम से अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज करा के एक अलग पहचान स्थापित की। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सन 1906 में सरस्वती पत्रिका के अगस्त के अंक में हिंदी प्रदीप पर लेख भी लिखा था, जिसमें पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा स्थापित हिंदी वर्धिनी सभा और हिंदी प्रदीप निकालने का उल्लेख किया गया था। सरस्वती के पूर्व संपादक पंडित देवीदत्त शुक्ल ने भी लिखा था कि पंडित बालकृष्ण भट्ट हिंदी के अत्यंत स्वाभिमानी लेखक थे। स्वदेश और अपनी संस्कृति से उन्हें अत्यधिक प्रेम था। सच तो ये है कि हिंदी साहित्य के लिए व्यक्तिगत रूप से त्याग करने वाले पंडित बालकृष्ण भट्ट जैसे साहित्यकार और पत्रकार हिंदी साहित्य जगत में कठिनाई से ही मिलेंगे। उन्होंने कलम के माध्यम से मां भारती की अद्भुत सेवा की।

हिंदी प्रदीप में छपने वाले तीखे लेखों से ब्रिटिश सत्ता बेचैन थी। सन 1909 में हिंदी प्रदीप के अप्रैल के अंक में माधव शुक्ल की कविता बम क्या है छपी थी। इससे नाराज होकर ब्रिटिश सरकार ने 3,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। पंडित बालकृष्ण भट्ट के पास भोजन तक के पैसे नहीं थे, वो जुर्माना क्या भरते। परिणाम स्वरूप हिंदी प्रदीप की लौ सदा के लिए बुझ गई। लेकिन 32 वर्षों की अपनी सुदीर्घ यात्रा में हिंदी प्रदीप के साहित्यिक लेखों ने जो उजाला पैदा किया, उससे हिंदी साहित्य जगत आज भी आलोकित है। पंडित बालकृष्ण भट्ट एक सजग पत्रकार और संपादक होने के साथ साथ एक उत्कृष्ट रचनाकार भी थे। उन्हें आज की गद्य प्रधान कविता का जनक माना जा सकता है। उनका गद्य गद्य न होकर गद्य काव्य सा प्रतीत होता है। भाषा की दृष्टि से भी अपने समय के लेखकों में उनका बहुत ऊंचा स्थान है। उन्होंने अपनी रचनाओं में यथाशक्ति शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया है। कहावतों और मुहावरों का प्रयोग भी उन्होंने सुंदर ढंग से किया। वो हमेशा ही हिंदी की परिधि का विस्तार चाहते थे, इसलिए विषय और प्रसंग को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हिंदीतर शब्दों को भी सम्मिलित किया। इसीलिए उनकी लेखनी में कहीं कहीं पूर्वी बोली का प्रयोग भी दिखाई देता है। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने एक ओर जहां आंख, कान, नाक, बातचीत जैसे साधारण विषयों पर लेख लिखे, तो वहीं दूसरी ओर आत्मनिर्भरता, चारुचरित्र जैसे गंभीर विषयों पर भी लेखनी चलाई। साहित्यिक विषय के साथ ही उन्होंने समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए सामाजिक निबंधों की रचना की। पंडित बालकृष्ण भट्ट के निबंधों में विचारों की गहनता, विषय की विस्तृत विवेचना और गंभीर चिंतन के साथ एक अनूठापन भी है। उनके निबंध अधिकतर हिंदी प्रदीप में प्रकाशित होते थे। उनके निबंधों में ईश्वर की भी क्या ठठोल है, नाक निगोड़ी भी बुरी बला है, अकल अजीर्ण रोग, भकुआ कौन कौन है, हम डार डार तुम पात पात, इंग्लिश पढ़े सो बाबू होए, चंद्रोदय, संसार महानाट्यशाला, मेला ठेला, शब्द की आकर्षण शक्ति, बातचीत, भिक्षावृत्ति आदि प्रमुख हैं। उनके निबंधों का संकलन भट्ट निबंधमाला, साहित्य सुमन और आत्मनिर्भरता नाम से प्रकाशित हैं। इसके अलावा उन्होंने नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान और 1 सुजान और रहस्य कथा नाम से उपन्यास भी लिखे, तथा दमयंती स्वयंवर, बाल विवाह, चंद्रसेन, वृहन्नला, पद्मावती, सीता वनवास, रेल का विकट खेल आदि नाटकों की रचना की। संपूर्ण हिंदी साहित्य में वो प्रथम श्रेणी के निबंध लेखक माने जाते हैं। अपनी लेखन शैली से वो प्रताप नारायण मिश्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निकट मालूम होते हैं। हिंदी प्रदीप के अलावा भट्ट जी ने 2-3 अन्य पत्रिकाओं का भी संपादन किया। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा संकलित हिंदी शब्द सागर के संपादन में भी उन्होंने बाबू श्याम सुंदरदास और शुक्ल जी के साथ कार्य किया। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने परंपरावादी होते हुए भी परंपरा का अंधानुकरण कभी नहीं किया। उन्होंने परंपरा का विश्लेषण कर उसे सतर्क बुद्धि विवेक से देखा, परखा, उसके बाद ही उसके अनुकरण के बारे में विचार किया। उन्होंने निष्प्राण परंपरा और पाखंडपूर्ण धर्म को कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा भी की तथा लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। पंडित बालकृष्ण भट्ट अत्यंत संयमी और त्यागी व्यक्ति थे। बताया जाता है कि अपने पिताजी के गया श्राद्ध के समय 3 वर मांगते हुए उन्होंने कामना की थी कि पैतृक संपत्ति में मुझे 1 भी पैसा न मिले, मेरे पुत्र और पुत्रियों का चरित्र निर्मल रहे और मेरा 1 पुत्र संस्कृत का विद्वान हो। इस तरह एक अत्यंत संयमित और निर्मल जीवन था उनका। आजीवन साहित्य सेवा करते हुए 20 जुलाई सन 1914 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: यूनियन नामक जुड़वा जहाज, एक कॉरपोरेट गृह युद्ध की कहानी। क्या आप जानते कि 18वीं शताब्दी की शुरुआत में समुद्र की लहरों पर एक अजीब संयोग देखने को मिला था? दो कट्टर प्रतिद्वंदी कंपनियों के पास दो बिल्कुल एक जैसे जहाज थे और दोनों का नाम था यूनियन। ये जहाज बनाने वालों की कोई गलती या कल्पना की कमी नहीं थी, बल्कि ये जुड़वा जहाज अंग्रेजी मसाला व्यापार के अस्तित्व को बचाने के लिए की गई एक हताशा का प्रतिनिधित्व करते थे। इस भ्रम को समझने के लिए आपको उस कॉरपोरेट गृह युद्ध को देखना होगा जिसने लंदन शहर को दो हिस्सों में बांट दिया था। लगभग एक सदी तक पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्ण एकाधिकार का आनंद लिया था, लेकिन 1690 के दशक तक उन्हें उन राजनेताओं और व्यापारियों ने घेर लिया जो उनके विशेष अधिकारों को एक असंवैधानिक अवशेष मानते थे। क्या आप जानते हैं कि ये प्रतिद्वंदिता कितनी तीव्र थी? दोनों कंपनियों ने केवल काली मिर्च के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं की, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ तोड़फोड़ का युद्ध छेड़ दिया। सूरत में नई कंपनी की कौंसिल सर निकोलस वेट ने मुगल अधिकारियों को रिश्वत देकर पुरानी कंपनी के अध्यक्ष सर जॉन गियर को 9 साल तक जेल के एक गंदे छेद में बंद रखा। हिंद महासागर के पार दोनों फर्मों के एजेंटों ने स्थानीय राजाओं के सामने एक दूसरे को चोर और समुद्री डाकू घोषित कर दिया, जबकि उनके कर्मचारी एक दूसरे को कालकोठरी में फेंक रहे थे। लंदन में बैठे निदेशकों ने जब अपने बैंक खातों को देखा तो वे कांप गए। इस आंतरिक युद्ध की लागत अनुमान से अधिक थी। इसके अलावा फ्रांस के साथ एक नया युद्ध, वॉर ऑफ द स्पैनिश सक्सेशन, करीब आ रहा था और ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी थी कि रॉयल नेवी दो विभाजित और झगड़ालू बेड़ों की सुरक्षा का खर्च नहीं उठा सकती। दोनों कंपनियों को एहसास होने लगा कि अगर वे विलय नहीं करती हैं तो दोनों दिवालिया हो जाएंगी। अतीत में उन्होंने स्पीड वेल या ट्रेड्स इंक्रीज जैसे आशावादी नाम चुने थे। अब दोनों ने यूनियन नाम से एक जहाज का निर्माण कराया जो इस बात का संकेत था कि विलय ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। अप्रैल 1702 में अंततः इंस्ट्रूमेंट ऑफ यूनियन पर हस्ताक्षर किए गए। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प हिस्सा है, क्या आप जानते हैं कि यूनियन ने वास्तव में भ्रम को समाप्त नहीं किया? 7 साल की संक्रमण अवधि के लिए तकनीकी रूप से एक साथ 3 कंपनियां काम कर रही थी, पुरानी नई और नई बनी यूनाइटेड कंपनी, जो अपने अलग अलग ऋणों को निपटाने की कोशिश कर रही थी और एक ही जहाज साझा कर रही थी। बंगाल में इसने पूर्ण भ्रम की स्थिति पैदा कर दी, जहां दो प्रतिद्वंदी अध्यक्ष हर हफ्ते बारी बारी से गवर्नर की कुर्सी पर बैठते थे। दो जहाज जिनका नाम यूनियन था, उस समय के प्रमाण हैं जब व्यापारिक लालच ने एशिया में ब्रिटिश उपस्थिति को लगभग नष्ट कर दिया था। केवल जहाज के पतवार पर लिखा वह हताश नाम उस यूनाइटेड कंपनी की ओर इशारा कर रहा था जो आगे चलकर एक विशाल साम्राज्य पर राज करने वाली थी।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज हम अपने कार्यक्रम इतिहास के पन्नों की 11वीं कड़ी में पहुंच गए हैं। इतिहास के पन्नों से। इतिहास के पन्नों। हमने इसकी 10वीं कड़ी यानी पिछली कड़ी में सुना था, सन 1564 ईस्वी में चौरागढ़ पर अधिकार करने के उपरांत आसफ खां को अपरिमित धन मिला। इसके बाद मुगल दरबार और गढ़ा राज्य के बीच हुए नरई युद्ध के उपरांत की संधि हुई। गढ़ा राज्य की ओर से अपना अगला उत्तराधिकारी चंद्रशाह को घोषित किया गया। चंद्रशाह राजा वीर नारायण के चाचा थे, यानी राजा दलपत शाह के छोटे भाई और वीरांगना रानी दुर्गावती के देवर। स्टूडियो में फिर से एक बार हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर पूजा सक्सेना। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में।
3: नमस्कार।
2: 11वीं कड़ी में भी हमारे श्रोता राह देख रहे हैं कि आप उन्हें कितनी दिलचस्प जानकारियां देने वाली हैं। आपसे सुनना चाहेंगे कि आगे क्या हुआ।
3: रानी दुर्गावती के वीरांगना होने के बाद गढ़ा राज्य का इतिहास तो जैसे बदल ही गया। जैसा आपने कहा, उनके उत्तराधिकारी उनके देवर राजा चंद्रशाह हुए और मुगलों के बीच तो संधि हो ही चुकी थी
2: जी।
3: गढ़ा राज्य को अपने 10 गढ़ जो हैं मुगलों को देने पड़े। हालांकि बाद में अकबर ने वो 10 गढ़ गोंडों को ही वापस लौटा दिए। पर यहाँ गढ़ा में यानी जबलपुर में क्या हुआ, तो हम देखते हैं कि गोंड राजा चंद्रशाह का कुछ छोटा सा राज्य काल है और उसके बाद उनके उपरांत मधुकर शाह हुए और प्रेम शाह हुए, ये सभी गढ़ा के राजा रहे। यहाँ उल्लेखनीय राजा जो हैं वो हैं गढ़ा राज्य के गोंड राजा हृदय शाह, शायद आपने उनका नाम सुना होगा। हृदय शाह 1635 में सिंहासन पर बैठे
2: जी।
3: ये समय था रानी को वीरांगना हुए लगभग 70 वर्ष बीत चुके
2: हो चुके थे जी।
3: तो 1635 में जब हृदय शाह गद्दी पर बैठे, उनके लिए चौरागढ़ से शासन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था।
2: अच्छा।
3: कुछ यहाँ वहाँ से आक्रमण हो रहे थे और नरई के युद्ध के बाद अस्थिरता तो फैल ही गई थी
2: जी।
3: तो हृदय शाह ने एक नया निर्णय लिया और उन्होंने चौरागढ़ से अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी।
2: अच्छा।
3: ये 1651 की बात है
2: जी।
3: और उन्होंने जो अपनी नई राजधानी चुनी वो थी मंडला में ही, और आजकल उसे हम रामनगर के नाम से जानते हैं।
2: अच्छा।
3: तो रामनगर मंडला शहर से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में है
2: जी।
3: और आजकल ये ऐतिहासिक स्थल है, पुरातात्विक स्थल है और पर्यटन का भी एक बड़ा जाना पहचाना केंद्र है
2: जी।
3: हम ये तो नहीं कह सकते कि रामनगर सामरिक दृष्टि से बहुत उचित स्थान था, लेकिन ये बहुत ही सुंदर जगह है
2: जी।
3: यहाँ नर्मदा नदी कलकल करके बहती है
2: जी, जी।
3: और दूसरी ओर से बंजर नदी का संगम होता है, तो ये दोनों नदियां मिलकर इस स्थान को दो ओर से घेर लेती हैं। हृदय शाह ने इन दोनों नदियों को जोड़ते हुए एक खाई बनवा दी
2: जी।
3: तो अब ये हुआ क्या कि ये जो यू शेप ये जगह थी
2: जी।
3: ये अब चारों ओर से पानी से घिर गई और एक टापू के समान बन गई।
2: वाह।
3: तो देखने में ये बहुत ही सुंदर लगती है, आप कभी जाएं तो यहाँ पर जाकर आपका
2: मतलब ये जगह हम अभी भी देख सकते हैं जो आप बता रही कि जो हृदय शाह ने बनवाई वो टापू अभी भी है वहाँ पर।
3: बिल्कुल, वो टापू है, हृदय शाह ने जो वहाँ पर बहुत सारी इमारतें बनवाई वो आज भी हम वहाँ पर देख सकते हैं
2: जी।
3: हम साधारणतः जिस तरीके के किलों की कल्पना करते हैं ये वैसा नहीं है। हम जानते हैं कि हृदय शाह जो थे वो एक जाने माने कवि भी थे, तो उनका कवि हृदय रहा होगा
2: जी।
3: और उन्होंने जब स्थान का चुनाव किया तो वो कुछ वैसा ही था जैसे कोई कवि चुनता है। उन्होंने जो उसमें इमारतें बनवाई वो भी बहुत सुंदर हैं।
2: ये भी सुनते जैसे आपने कहा कि हृदय शाह को कवि हृदय कहा जाता है, वो कविताएं करते थे, और इसके साथ ही कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि उन्हें संगीत का भी ज्ञान था।
3: बिल्कुल, हृदय शाह को तो संगीत का ज्ञाता कहा जाता है, बल्कि हृदय शाह की गणना 17वीं सदी के अच्छे संगीतकारों में होती है।
2: वाह।
3: वह न केवल अच्छे गायक थे, वो एक अच्छे वादक भी थे, और बल्कि उन्होंने संगीत पर 2 पुस्तकें भी लिखी। इन ग्रंथों में शास्त्रीय संगीत की सूक्ष्म विवेचना की गई है और ग्रंथों का नाम है हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश।
2: तो लीजिए कितनी अच्छी बात निकल करके यहाँ पर सामने आई है। पूजा जी हमें इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां दे रही हैं। हम बात तो कर रहे हैं गोंड राजवंश की, लेकिन उन्हीं के एक राजा जिन्हें आमतौर पर हृदय शाह कहा जाता है, खासतौर पर उस क्षेत्र विशेष में उनका नाम था हृदय शाह, और वो ना सिर्फ कविताएं करते थे, संगीत के भी गाता थे, और उन्होंने हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश इन 2 पुस्तकों को लिखा था शास्त्रीय संगीत पर जो आधारित हैं। और हमारे श्रोता उन पुस्तकों को यदि हासिल कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। पूजा जी, कुछ स्थापत्य कला में क्या योगदान दिया हृदय शाह ने, ये जानना चाहेंगे।
3: रामनगर को राजधानी बनाते हुए उन्होंने कुछ इमारतें बनाई जिन्हें आज भी देखा जा सकता है, जैसे रामनगर का विष्णु मंदिर बड़ा ही प्रसिद्ध है।
2: अच्छा।
3: ये गोंड कला का बड़ा सुंदर उदाहरण है। इसके अलावा यहाँ एक मोती महल है, एक राय भगत की कोठी है और एक रानी महल है
2: जी।
3: तो अगर कभी मंडला जाएं और रामनगर का विष्णु मंदिर देखें, बहुत ही सुंदर मंदिर है और गोंड कला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसको हृदय शाह की रानी थी सुंदरी देवी, उन्होंने बनाया था 1667 में।
2: अच्छा।
3: और मंदिर जब पूरा हो गया तो रानी ने उस मंदिर में एक शिलालेख भी लगवाया, इसी शिलालेख से हमको गढ़ा का जो गोंड राजवंश है उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, जैसे कि उनकी वंशावली क्या थी, उनकी उपलब्धियां क्या थी और उन्होंने क्या विशेष कार्य किए। यहाँ तक कि नरई के युद्ध का जो वर्णन है वो भी रामनगर के शिलालेख में किया गया है।
2: अरे वाह।
3: रामनगर का शिलालेख इसी मंदिर में स्थापित था और अभिलेख में ये भी जानकारी है कि इस मंदिर के जो प्रमुख कारीगर थे वो थे दयाराम और भागीरथ।
2: अच्छा,
3: उनको भी इस अभिलेख में पूरा क्रेडिट दिया गया।
2: बहुत ये कितनी अच्छी बात है। देखिए, नहीं तो अक्सर ये हो जाता है कि इमारतें याद रह जाती हैं लेकिन शिल्पकारों का नाम कोई नहीं जानता।
3: अभी सुरक्षा की दृष्टि से इस अभिलेख को राम मंदिर से स्थानांतरित करके पास ही स्थित मोती महल में रख दिया गया है।
2: अच्छा।
3: इसे पर्यटक आज भी देख सकते हैं। जो ये विष्णु मंदिर है पांच देवताओं को समर्पित है
2: जी।
3: और इसमें शिव, गणेश, दुर्गा और सूर्य की प्रतिमाएं विष्णु के साथ में स्थापित
2: अच्छा।
3: थी
2: जी।
3: अब ये प्रतिमाएं मंदिर में नहीं है लेकिन इसका स्थापत्य जो है वो देखने लायक है। जैसा कि मैंने कहा कि मंदिर की स्थापना रानी सुंदरी देवी ने कराई थी।

0: नाम भी दिया था,
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: जिसमें कि एक मुख्य गर्भगृह और पांच देव कुलिकाएं होती हैं
1: जी।
0: तो चारों कोनों पर छोटे छोटे गर्भगृह होते हैं, इसको देव कुलिका बोलते हैं, और एक गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ होता है। तो इस विष्णु मंदिर में भी एक मुख्य देव कुलिका है
1: जी।
0: और उसके चारों ओर छोटी छोटी चार देव कुलिकाएं हैं
1: जी।
0: तो ये चारों देव कुलिकाएं आयताकार जो कक्ष है
1: जी।
0: उसके चारों कोनों पर स्थित हैं
1: जी।
0: तो जब आप इसके चारों तरफ प्रदक्षिणा लेंगे तो इन चारों देव कुलिकाओं में जो स्थापित देवता थे उनके दर्शन किए जा सकते थे। वर्तमान में ये प्रतिमाएं अब नहीं है,
1: अब नहीं है जी, जी।
0: जो मंदिर की छत है
1: जी।
0: वो गुंबजाकार है और छत के चारों तरफ से छज्जे निकले हुए हैं। तो छज्जों के नीचे जो तोड़े होते हैं यानी जो ब्रैकेट्स होते हैं वो बहुत ही सुंदर है इस मंदिर के। मंदिर के दरवाजे हैं वो मेहराबदार हैं और इस मंदिर का जो संरक्षण करता है वो मध्य प्रदेश का राज्य पुरातत्व विभाग है।
1: अच्छा पूजा जी, आपने एक महल का भी जिक्र किया था इस एपिसोड में विष्णु मंदिर के पहले, तो उस महल के बारे में आपसे जानना चाहेंगे।
0: विष्णु मंदिर की तरह ही रामनगर में मोती महल भी देखने लायक है
1: जी।
0: ये जो महल है वो राज परिवार का निवास हुआ करता था।
1: अरे वाह,
0: इसलिए इसको राजा महल के नाम से भी जानते हैं। पर इसके लिए एक स्थानीय किंवदंती है और वो बड़ी मजेदार है
1: जी।
0: जैसा जानते हैं कि हृदय शाह एक बहुत अच्छे गायक कवि भी थे
1: जी।
0: लेकिन उन्हें तंत्र विद्या का भी ज्ञान था, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो एक स्थानीय किंवदंती है जिसमें कहते हैं कि हृदय शाह ने तंत्र विद्या से इस मोती महल का निर्माण सिर्फ 2.5 दिन के अंदर कर लिया था। जो निर्माण के लिए पत्थर आए थे वो पास ही एक काला पहाड़ है वहां से उड़ उड़ कर आए थे।
1: ऐसी
0: जनश्रुति है। असल में क्या है कि रामनगर के निकट जो काला पहाड़ है वहाँ के अगर आप पत्थर देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तराशे हुए पत्थर हैं। मान लीजिए कि अष्टकोणीय ऑक्टोगोनल खम्बे किसी ने तराशे हों।
1: अच्छा।
0: और बिल्कुल एक से, और उन्हें बिल्कुल पास पास सटा के रख दिया हो
1: जी।
0: पूरा पहाड़ ही बन गया हो
1: जी।
0: ऐसा दिखाई देता है ये काला पहाड़। लोगों का मानना है कि यहाँ जो अष्टकोणीय खंबे दिख रहे हैं वही उड़ उड़ कर यहाँ से गए और जल्दी से हृदय शाह ने मोती महल का निर्माण कर दिया
1: जी।
0: पर अगर हम इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इन अष्टकोणीय खंबों का होना एक भूगर्भीय हलचल का परिणाम
1: बिल्कुल,
0: है
1: बिल्कुल, क्योंकि वो जो मंडला घाटी नर्मदा घाटी जो है वहां पर भूगर्भीय हलचलें पहले भी होती थी और अभी भी हमेशा अंदेशा जो है वो मंडराता रहता है।
0: हाँ, ये जो अष्टपहलु पत्थर हैं ये प्राकृतिक हैं, इन्हें तराशा नहीं गया है। जब भूगर्भीय हलचल होती है और ज्वालामुखी से लावा बहकर किसी स्थान पर जमा हो जाता है और जरूरत से ज्यादा जल्दी यानी कि कम समय में ठंडा हो जाता है तब उस लावा में दरारें पड़ जाती हैं।
1: अच्छा।
0: और अष्ट फलकीय पत्थर में वो तब्दील हो जाती है।
1: अच्छा।
0: इस तरीके से दरारें पड़ती हैं कि अष्ट फलकीय संरचनाएं बन जाती
1: हैं, अपने आप ही प्राकृतिक रूप से तैयार हो जाती
0: बन जाती हैं। तो वो कुछ ऐसा लगता है जैसे ऑक्टोगोनल खंबे एक के बाद एक के बाद एकदम सटाकर लगा दिए गए हों। तो पूरा की पूरा काला पहाड़ ही ऐसा है।
1: अच्छा।
0: और क्योंकि इसी काले पहाड़ के पत्थरों का उपयोग मोती महल और अन्य इमारतों को बनाने में किया गया था तो ये जनश्रुति प्रचलित हो गई
1: जी।
0: तो मोती महल भी देखने में बड़ा सुंदर है। इसमें प्रवेश के लिए एक बड़ा सुंदर मेहराबदार द्वार है
1: जी।
0: और आप जब अंदर जाएंगे तो एक बड़ा सा चौकोर प्रांगण है और इस प्रांगण के बीच में एक बड़ी सी हौज है जिसके अंदर पानी भरा रहता होगा, उसमें रंगीन मछलियां छोड़ते होंगे जो भी उस समय होता हो। और इस प्रांगण के चारों तरफ कई सारे कक्ष बने हुए हैं जो राजा रानी के निवास के लिए थे। उसी में दीवाने आम था, दीवाने खास था
1: जी, जी।
0: और ये महल कई मंजिला है।
1: अच्छा।
0: अगर आप इसकी छत पर जाएंगे तो चारों कोनों पर चार ऐसे कक्ष हैं जिनकी छत गुंबजाकार है और इस पर जो चूने से स्टकोवर किया गया है, जो अलंकरण किया है, वो भी बड़ा ही खूबसूरत लगता है और कई बार तो लोग इसे खरबूजा गुंबज भी कह देते हैं।
1: अच्छा।
0: क्योंकि इसका आकार कुछ अलंकरण के कारण खरबूजे जैसा धारीदार दिखने लगता है, तो खरबूजा अलंकरण के नाम से भी ये जाना जाता है। इसके पास ही अस्तबल है, हाथीशाला भी रही होगी।
1: अच्छा।
0: और खेल का कुछ मैदान भी रहा होगा, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और अगर आप मोती महल की छत पर से मंडला को देखते हैं, जो नर्मदा नदी दिखाई देती है, बंजारा नदी दिखाई देती है, और दूर दूर तक जो जंगल दिखाई देते हैं, वो बहुत ही खूबसूरत होते होंगे। जब हृदय शाह यहाँ गाते होंगे, जब महफिलें जमती होंगी, तो ये देखने लायक दृश्य होता होगा।
1: निश्चित रूप से वहाँ स्वयं हृदय शाह भी गाते होंगे, उनकी पत्नी भी गाती होंगी, और संगीत की बहुत सारी महफिलें, बहुत सारी सभाएं भी वहाँ पर आयोजित की गई होंगी।
0: जी हाँ, सुंदरी देवी तो खुद गाने की शौकीन थी।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, ये महल क्या आज भी पर्यटकों के लिए खुला है, जा सकते हैं?
0: बिल्कुल, ये राज्य पुरातत्व विभाग मध्य प्रदेश का संरक्षित स्मारक है।
1: जी।
0: तो इन सभी में, चाहे मोती महल हो, चाहे विष्णु महल हो, और इसके पास ही एक राय भगत की कोठी भी है।
1: अरे वाह,
0: आपने स्टेशन भी सुना होगा, भगत की कोठी।
1: भगत की कोठी सुना है, बिल्कुल। तो मैम, इस कोठी के बारे में जानना चाहेंगे कि जैसे मोती महल था, वहाँ पे राज परिवार रहा करता था, तो राय भगत की कोठी इसे क्यों कहा जाता है, यहाँ कौन रहते थे?
0: राय भगत हृदय शाह के समय उनके खास मंत्री थे।
1: अच्छा।
0: और उन्हीं के एक विशाल महल है
1: जी,
0: जिसको राय भगत की कोठी कहते हैं।
1: अच्छा।
0: मोती महल से लगभग आधा किलोमीटर आप जाएं अगर पूर्व की तरफ, तो एक रामनगर धंधरी सड़क पड़ती है
1: जी,
0: और उसी पर एक ऊंचा सा टीला दिखाई देता है, वहां पर ये महल है। और ये राय भगत का महल भी कहलाता है, राय भगत की कोठी के नाम से भी जाना जाता है। राय भगत को भगत राय भी कहा जाता है
1: जी, जी।
0: और जब भी हृदय शाह के प्रिय मित्रों की बात आती है, तो भगत राय की बात जरूर आती है। कई किस्से भी इन दोनों के आपस में बड़े लोग सुनाया करते हैं
1: जी।
0: और ये जो राय भगत थे, ये पठारी या प्रधान जाति के थे, इसलिए इनके किस्से बड़े प्रधानों में मशहूर हैं, दोनों की दोस्ती के
1: जी। जी।
0: तो हृदय शाह के लिए ये राय भगत की कोठी बनाई गई
1: जी।
0: ये दक्षिण की तरफ मुंह करके बनी है, और इसका भी जो प्रवेश द्वार है, बड़ा ही भव्य है
1: जी।
0: बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मोती महल से भी ज्यादा भव्य है।
1: अरे वाह।
0: और इसमें जो प्रवेश द्वार है, उस पर संगमरमर का उपयोग किया गया है, जो इस काल में बहुत कम होता था, खासकर मध्य भारत में। और प्रवेश द्वार के ऊपर नौबत खाना बना है, नौबत खाना जहाँ पर जब राजा का आगमन होता है तब नगाड़े बजाए जाते थे।
1: अच्छा।
0: फूलों की वर्षा होती थी
1: जी।
0: तो प्रवेश द्वार के दोनों ओर तीन तीन खिड़कियां भी बनी हुई हैं, बहुत बड़ी विशाल खिड़कियां हैं, और दीवार के ऊपर कंगूरे बने हुए हैं। तो ऐसा कहीं कहीं आपको लगेगा कि ये महल है कि किला है, तो दोनों के जो आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं, दोनों को मिक्स किया है। और महल के जो कोने हैं, वहाँ पर खासकर निकले हुए कक्ष भी बने हुए हैं, जो बड़े आकर्षित लगते हैं अलंकरण के कारण। और इनकी छतें भी वैसी हैं जैसी मोती महल की गुंबजाकार छतें हैं, धारीदार छतें हैं, खरबूजे जैसी, इनके भी गुंबज वैसे ही हैं। और जो राय भगत की कोठी की खास बात है, वो यहाँ के भित्ति चित्र हैं।
1: अच्छा।
0: मतलब कि छत पर, दीवारों पर बहुत सारा चित्रण किया गया है। खासकर जब हम प्रवेश करते हैं महल के अंदर, तो जो मुख्य प्रवेश द्वार है, उसकी जो छत है, उस पर आज भी बड़ा सुंदर अलंकरण उस काल का देखा जा सकता है। इसमें लाल, हरा, नीला, पीला, कई रंग यूज किए हैं। और जैसा हम जानते हैं कि उस समय रंगों के लिए खनिज पत्थरों का उपयोग किया जाता था, खासकर ये पत्थर जो हैं वो भारत में नहीं मिलते, ये मध्य एशिया से बुलाए जाते थे।
1: अच्छा।
0: और इन पत्थरों को घिसकर रंग तैयार किया जाता था। जहाँ कहीं भी इस तरीके की चित्रकारी करनी होती थी, तो वहां पर फिर बहुत चिकना चूने का प्लास्टर तैयार किया जाता था, एकदम सफेद, खूबसूरत, चिकना। और उसके बाद अलंकरण जैसा भी तैयार किया गया हो, तो फिर इन खनिजों को तैयार करके, इनका पाउडर बनाकर, इसमें जो प्राकृतिक गोंद होती है उसको मिक्स किया करते थे, उससे मिक्स करके उसको बना लिया करते थे, रंग पक्के हो जाया करते थे, और फिर इनको छतों पर लगाया जाता था, सुंदर ज्यामिति अलंकरण या फूल पत्तियों का अलंकरण इसमें किया जाता था। जैसा हम जानते हैं कि छत पर उल्टा ब्रश चलाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि जो रंगों का संयोजन है, जो चित्रकारी है, वो देखते ही बनती है।
1: श्रोताओं को तो हमारे लग ही रहा होगा कि बिल्कुल अब वो भागकर बिल्कुल रामनगर जाएं, मंडला जाएं, और पूजा जी ने इतनी अच्छी अच्छी हमें जानकारियां दी हैं। ना सिर्फ ये इतिहास से संबंधित हैं, ना सिर्फ ये गोंड राजवंश से संबंधित हैं, आज का तो हमारा एपिसोड बिल्कुल पर्यटन और संगीत के लिए भी बहुत विशेष रूप से खास रहा है। पूजा जी, इतने सारे जो आज आपने हमें चीज़ें बताई कि राजा हिरदेशाह ने मंडला में अपनी राजधानी यहाँ पर स्थापित की, दूसरी जगह लेकर के आए जिसे आज हम रामनगर के नाम से जानते हैं, वहाँ पर विष्णु मंदिर, मोती महल, राय भगत की कोठी और रानी महल का आपने जिक्र किया, लेकिन राजा हिरदेशाह के बाद गढ़ा मंडला का क्या हुआ?
0: हिरदेशाह का शासनकाल 1671 ईस्वी तक रहा।
1: अच्छा,
0: और उसके बाद उनके वंशजों ने शासन किया, जिसमें छत्रशाह हुए, केसरी शाह, हरि सिंह, पडार सिंह, और इसके बाद हम देखते हैं नरेंद्र शाह। तो नरेंद्र शाह ने भी अपने लिए मंडला में ही एक नई राजधानी बनाई।
1: अच्छा।
0: अब उसके अवशेष ना के बराबर हैं, केवल एक बुर्ज रह गया है
1: जी।
0: पर नरेंद्र शाह के बाद भी बहुत से राजा हुए, और फिर 1780 ईस्वी में गढ़ा का यह क्षेत्र सागर के जो मराठा शासक थे उनके अधीन हो गया। यहाँ से फिर गढ़ा मंडला का इतिहास बदल गया।
1: मतलब 1780 तक गढ़ा मंडला पर गोंड राजवंश का शासन रहा।
0: जी हाँ, संग्राम शाह से लेकर, और हम देखते हैं कि सुमेर शाह तक गढ़ा मंडला पर लंबे समय तक गोंड राजवंश ने अपना योगदान दिया।
1: वाह, तो श्रोताओं आज बहुत अच्छी अच्छी हमें जानकारियां मिली हैं राजवंश की। हम पिछले अपने इतने सारे एपिसोड से बात कर रहे हैं, हमने कहानी देखी संग्राम शाह जी की, हमने बात की रानी दुर्गावती की, जो कि गढ़ा राजवंश की सबसे मुख्य शासिका के रूप में भी जानी गई, बहुत सारे कार्य उनके हुए और मुगल दरबार तक उन्होंने हिला दिया था। उसके बाद हमने बात की हिरदेशाह की, और फिर उनके कुछ और उत्तराधिकारियों ने वहां पर राज किया, गढ़ा मंडला पर जाकर के गोंड राजवंश का शासन समाप्त हुआ। पूजा जी ने हमें ये जानकारियां दी, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी इतनी अमूल्य जानकारियों के लिए। आगे भी अपने अगले एपिसोड में आपसे कुछ और जानकारियां आपसे चाहेंगे, इतिहास के पन्ने हम खोलते रहेंगे कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। में अभी वक्त है आपसे विदा लेने का, मैं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा आपसे इजाजत लेता हूं। इस एपिसोड का ध्वनि अंकन और ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ देश का चैनल, देश के लिए रेडियो आजाद हिंद।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: गेल्मर वोसबर्ग एक डच सर्जन और मुगल दरबार की कूटनीति। 17वीं शताब्दी के बंगाल के आर्द नदी क्षेत्रों में शक्ति हमेशा औपचारिक संधियों या भव्य दूतावासों के माध्यम से नहीं दिखाई जाती थी। अक्सर ये एक शासक और डॉक्टर के बीच पाई जाती थी। इस अनूठी गतिशीलता के केंद्र में गेल्मर वोसबर्ग थे, जो एक डच सर्जन थे। वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक मीर जुमला के बीच एक कूटनीतिक सेतु बन गए थे। 1660 तक मुगल उत्तराधिकार के युद्ध ने साम्राज्य के पूर्वी सीमांत को उच्च तनाव की स्थिति में छोड़ दिया था। सम्राट औरंगजेब के मामा और एक प्रतिभाशाली उद्यमी सेनापति मीर जुमला को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया था। मीर जुमला का राजनैतिक और व्यापारिक प्रभाव इतना अधिक था कि वे अक्सर यूरोपीय कंपनियों पर अपने सैन्य उद्देश्यों के लिए धन, हथियार और तकनीकी विशेषज्ञता के लिए दबाव डालते थे। कपड़ा और शोरा के आकर्षक व्यापार को बनाए रखने के लिए बेताब वीओसी को लगा कि वे केवल तटस्थ नहीं रह सकते, जीवित रहने के लिए उन्हें मीर जुमला की सेवा में खुद को शामिल करना ही पड़ा। इस जबरन सहयोग के हिस्से के रूप में मीर जुमला ने वीओसी से विशेषज्ञ कर्मियों को लीज पर लेना शुरू किया, जिनमें जहाज निर्माता, नाविक और सर्जन गेल्मर वोसबर्ग शामिल थे। जहां उनका प्राथमिक कार्य नवाब और उनके आंतरिक घेरे के स्वास्थ्य की देखभाल करना था, वहीं बटविया के डच निदेशकों और ढाका के फैक्ट्री प्रमुखों ने डॉक्टर के लिए कहीं अधिक रणनीति उपयोग देखा। मीर जुमला के साथ निकटता के कारण कंपनी वोसबर्ग को दैनिक कूटनीतिक व्यवहार करने के लिए सबसे उपयोगी व्यक्ति मानती थी। प्रांतीय कूटनीति की दुनिया में जहां विशिष्ट स्थानीय बातचीत अक्सर दिल्ली के शाही फरमानों से अधिक महत्वपूर्ण होती थी, वोसबर्ग एक मुख्य कड़ी थे। जहां ढाका के डच प्रतिनिधि को सप्ताह में एक बार नवाब से मिलने की उम्मीद थी, वहीं वोसबर्ग नवाब के घेरे के भीतर ही रहते थे। वे कंपनी की आंख और कान थे, जो मीर जुमला के मूड को भांपने और चिकित्सा देखभाल के अनौपचारिक क्षणों के दौरान चुपचाप डच हितों की वकालत करने में सक्षम थे। ये व्यवस्था एक व्यापक पैटर्न का हिस्सा थी, जहां वीओसी ने अपनी विशेषज्ञता नौसैनिक शक्ति से लेकर चिकित्सा ज्ञान तक को महत्वपूर्ण बार्गेनिंग चिप्स के रूप में इस्तेमाल किया। वोसबर्ग की सेवा ने कंपनी को उस कठिन दौर में रास्ता खोजने में मदद की, जब मीर जुमला आक्रामक रूप से हिजली द्वीप जैसे क्षेत्रों पर अधिकार कर रहे थे। एक ऐसा सर्जन प्रदान करके जिस पर नवाब भरोसा कर सके, वीओसी ने यह सुनिश्चित किया कि सैन्य समर्थन के लिए दबाव के बावजूद उनका व्यापार चलता रहे। गेल्मर वोसबर्ग की कहानी उस युग के ऐसे प्रविधि को दर्शाती है जहां यूरोपीय कंपनियों को मौजूदा एशियाई शक्ति संरचनाओं के साथ तालमेल बैठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये याद दिलाता है कि वैश्विक व्यापार का इतिहास अक्सर व्यक्तिगत विश्वास और सामाजिक निकटता पर बनाया गया था। 17वीं शताब्दी के बंगाल में एक सर्जन की कैंची और गवर्नर के तंबू में फुसफुसाए गए कुछ शब्द कभी कभी वैश्विक साम्राज्य के हितों को सुरक्षित करने में युद्ध पोतों के बेड़े जितने ही शक्तिशाली होते थे।
2: क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना, हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: ख्वाजा अहमद का मिशन। जब मुगल दूत डच राजधानी पहुंचा, 3 मार्च 1665 को एक प्रभावशाली व्यक्तित्व ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी के समुद्री साम्राज्य के तंत्रिका केंद्र बटाविया कैसल के डॉक पर कदम रखा। उसका नाम ख्वाजा अहमद था और वह कोई व्यापारी नहीं था, बल्कि वे बंगाल के शक्तिशाली सूबेदार और मुगल शासक औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान का कूटनीतिक दूत था। जहां इतिहास एशियाई दरबारों में यात्रा करने वाले यूरोपीय राजदूतों के वृतांतों से भरा है, वहीं अहमद का मिशन इसके विपरीत था। यह एक मुगल दूत द्वारा यूरोपीय कंपनी राज्य की राजधानी की यात्रा का एक दुर्लभ उदाहरण था। यह मिशन प्रांतीय कूटनीति का एक सटीक उदाहरण था, जहां स्थानीय मुगल गवर्नर राजाओं की स्वायत्तता और वजन के साथ काम करते थे। ख्वाजा अहमद एक उच्च तनाव के क्षण में पहुंचा था। शाइस्ता खान चटगांव बंदरगाह को जीतने और आराकान खत्म करने के लिए एक बड़े सैन्य अभियान की तैयारी कर रहा था। डच एक अनिश्चित स्थिति में थे। वे बंगाल में अपने व्यापार से भारी लाभ कमा रहे थे, लेकिन साथ ही वे शाइस्ता खान के दुश्मनों के क्षेत्रों में भी व्यापार कर रहे थे। अहमद ने डच सरकार के सामने एक पत्र और उपहार प्रस्तुत किए, जिसमें एक कड़ा अल्टीमेटम छिपा था। संदेश बिल्कुल स्पष्ट था, VOC को तुरंत अपनी आराकान फैक्ट्री बंद करनी होगी। चटगांव अभियान में जहाजों और तोपों के साथ मुगल सेना का समर्थन करना होगा। यदि डच इनकार करते तो शाइस्ता खान ने उन्हें न केवल बंगाल से निकालने की धमकी दी, बल्कि पूरे मुगल साम्राज्य में उनके संचालन को रोकने की चेतावनी दी। बटाविया में डच प्रशासक एक रणनीतिक दुविधा में फंस गए थे। हालांकि उन्होंने शुरुआत में व्यावहारिक विवरणों की कमी का बहाना बनाकर देरी करने की कोशिश की, लेकिन वे समझ गए थे कि वे दिल्ली में मुगल शासक से अपील करके शाइस्ता खान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कंपनी के अधिकारियों का मानना था कि सूबेदार केंद्रीय दरबार से बहुत दूर रहता है और वो दिल्ली के किसी भी हस्तक्षेप से बहुत पहले ही प्रांतों में डचों को परिणाम भुगतने पर मजबूर कर सकता है। ख्वाजा अहमद का मिशन बंगाल के लिए एक बड़ी सफलता थी। पूर्ण व्यावसायिक विनाश के खतरे का सामना करते हुए VOC ने अंततः अराकान में अपना लॉज बंद कर दिया। यह दुर्लभ मिशन था कि शक्तिशाली दिखने वाली यूरोपीय कंपनियों को मौजूदा एशियाई सत्ता संरचनाओं के साथ आर्थिक और सैन्य रूप से तालमेल बिठाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। बटाविया में ख्वाजा अहमद के आगमन ने साबित कर दिया कि 17वीं शताब्दी में ओरिएंट की रानी यानी बटाविया को अभी भी भारतीय उपमहाद्वीप के मालिकों को जवाब देना पड़ता था।
3: आजाद हिंद रेडियो में आपका स्वागत है। ये है टेक गुरु प्रोग्राम। एक सफलता की कहानी आई है भोपाल के ईदगाह हिल स्थित सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। शिक्षिका श्रीमती एकता सरीन बन गई हैं मध्य प्रदेश की पहली गूगल सुपर सर्चर। उन्हें गूगल इंडिया ने उनके पहल के लिए गुरुग्राम में अपने कार्यालय में आमंत्रित किया। चलिए उनसे जानते हैं कि गूगल सुपर सर्चर क्या है। नमस्ते एकता सरीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत।

0: जो कि स्टूडेंट्स के डिजिटल परिदृश्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। किस तरह से उनको क्या सर्च करना चाहिए, क्या फेक है, क्या रियल है,
1: जी
0: ये हम इस प्रोग्राम के जरिए बताते हैं। आज हर कोई इंटरनेट पे एक्टिव है, जानकारी के लिए विश्वसनीय स्रोतों का हम इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं जानते कि क्या वो जानकारी जो हमें मिल रही है, जो वेबसाइट्स पे है, क्या वो ठीक है या वो गलत है।
1: सही
0: इस
1: बात।
0: ट्रेनिंग में हम एजुकेशन देते हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को, और उनको ये बताते हैं कि ऑनलाइन उनको क्या प्राप्त करना चाहिए, उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, उनका किस तरह से मूल्यांकन किया जा सकता है, क्या फेक है क्या रियल
1: क्या
0: है।
1: सही
0: तो
1: है।
0: दिस इज ऑल अबाउट सुपर सर्चर्स प्रोग्राम।
1: तो आप एक ट्रेन्ड करियर कोच हैं एकता सरीन जी, लैंग्वेज ट्रेनर हैं, तो आप कैसे एक सुपर सर्चर बनी इसके बारे में बताइए।
0: भले ही मैं डायरेक्टली आईटी से लिंक्ड नहीं हूँ, बिकॉज एज ए लैंग्वेज टीचर, एज ए एजुकेटर, एज ए काउंसलर, हम अक्सर गूगल का यूज करते हैं। सो एक बार गूगल इंडिया की तरफ से इंटरनेट ऑसम, बी इंटरनेट ऑसम 2022 में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जिस टाइम पे जो एजुकेटर्स के लिए ओपन था, जिसमें हमको ट्रेनिंग लेना था और फिर आगे ट्रेनिंग देना था। तो मैंने यही काम किया, मैंने उनके साथ ट्रेनिंग ली और इस तरह से मैं गूगल इंडिया के साथ कनेक्ट हुई। मेरी तरह बहुत से एजुकेटर्स हैं जो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, डिफरेंट कंट्रीज से थे, जो पोलैंड से हैं, यूएस से हैं, इंडिया के डिफरेंट स्टेट से हैं। इस तरह से बहुत सारे एजुकेटर्स इस सेम प्लेटफॉर्म पे आए और हमने ट्रेनिंग लिया और आगे बच्चों को एजुकेट किया। इस तरह से आई बिकेम अ बी इंटरनेट ऑसम, जो मुझे गूगल से अवार्ड मिला, और उसी तरह से ग्रेजुअली मैं सुपर सर्चर्स की डायरेक्शन में पहुंची, और दैट इज हाउ आई वॉज इन्वाइटेड इन गूगल इंडिया ऑफिस एट गुरुग्राम।
1: चलिए, तो बहुत ही अच्छी बात है सरीन जी कि आप भी इंटरनेट ऑसम बन गई हैं, लेकिन आप हमें ये बताइए कि हम कैसे बने इंटरनेट ऑसम।
0: इट्स अ ग्रेट आइडिया। आई थिंक हम सबको आज के जमाने में जब हम गूगल का यूज करते हैं, जब हम इंटरनेट पे हैं, तो आई थिंक हम सबको ऑसम बनना, बी इंटरनेट ऑसम की स्टेटमेंट के साथ फ्लो में आना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि देखिए, बी इंटरनेट ऑसम का मतलब ये होता है कि आप जो कुछ कर रहे हो, जो कुछ आप देख रहे हो, क्या वो ठीक है या वो नहीं है, क्या वो फेक है या वो नहीं है, तो हम उसको कैसे पता लगाएं।
1: जी
0: इसी तरह से हम बच्चों को अवेयर करें कि आप जो देखते हो बेटा, हम प्रोजेक्ट्स देते हैं बच्चों को, हम उनको रिसर्च वर्क करने के लिए देते हैं। जैसे मेरा एक एग्जाम्पल मैं लूंगी बच्चों को, क्योंकि एजुकेटर हूं मैं,
1: जी
0: तो बच्चों को मैंने एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि आपको एक डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है एंड दिस इज योर टॉपिक। आप बिलीव नहीं करोगे, हर बच्चे का सेम टॉपिक था, क्योंकि उन्होंने नेट से
1: नेट से
0: देखा
1: देख लिया
0: और उसको कट एंड पेस्ट
1: होगा।
0: करके लेके आ गए।
1: हाँ
0: तो मैं बच्चों को बोलती हूँ कि ठीक है, आप इंटरनेट का यूज करते हो, लेकिन मेक श्योर कि आप साथ में बुक्स का भी यूज करो, जिससे आपके कोटेशंस, आपका मैटर कहीं ना कहीं डिफर करे। आप पेरेंट्स से डिस्कस करो, आप जीडीज करो, तो आपका टॉपिक बेटर इम्प्रूवमेंट के साथ आएगा और वो कट एंड पेस्ट वाला नहीं होगा
1: ये
0: बिल्कुल
1: आपने
0: भी।
1: बहुत सही कहा कि ग्रुप डिस्कशंस कितना जरूरी है, ताकि हम समझ सके, सोच सके, उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर सके, और
0: हमारा
1: तब जाके एक
0: इमेजिनेशन बढ़ता
1: आत्ममंथन के
0: है।
1: साथ, एक
0: एग्जैक्टली
1: इमेजिनेशन
0: एग्जैक्टली
1: के साथ हम कुछ लिख सकते, वरना
0: क्रिएटिवली
1: क्योंकि
0: हम प्रेजेंट कर पाते हैं
1: प्रेजेंट कर
0: अपने आप
1: सकते
0: को।
1: हैं
0: एग्जैक्टली
1: नहीं, तो
0: राइट।
1: AI टूल्स ऐसे आ गए जहाँ पे हम डिपेंडेंट हो गए उन चीज़ों पे, तो इस तरीके से आप स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं।
0: हाँ जी, स्टूडेंट्स को बताना होता है कि बेटा देखो, कई बार बच्चा ऐसा भी होता है कि कुछ भी आप देख रहे हो, किसी पे भी आपने कुछ भी कमेंट कर देते हो, किसी की सेल्फी देखी, आपका पर्सनल कुछ किसी बच्चे से कुछ एनमिटी है या आपको पसंद नहीं है वो बच्चा, तो आपने उसकी सेल्फी देख पे उस पर कुछ गलत सा कमेंट कर दिया। तो उनको ये भी बताना बहुत जरूरी होता है कि बेटा, व्हेन यू आर ऑन नेट, यू शुड बी वेरी पार्टिकुलर विद योर लैंग्वेज। हमारी वैल्यूज जैसे हमारे डे टू डे लाइफ में जरूरी है, वैसे नेट पे भी वैल्यूज होना बहुत जरूरी है। और उनको अगर आप ठीक से गाइड करोगे, वो बच्चा आपके पास आएगा, आपसे शेयर करेगा। और मुझे पेरेंट्स से भी मेरा यही रिक्वेस्ट होता है कि जो आपके साथ में डे टू डे हो रहा है, बच्चे से शेयर करते रहिए, क्योंकि आपकी लाइफ स्किल्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उनको समझ में आता है कि क्या उनको करना चाहिए और क्या उनको नहीं करना चाहिए। सो जो बी इंटरनेट ऑसम है, इट्स अ कंप्लीट प्रोग्राम, इसमें हम बताते हैं कि बच्चे को इवन इंटरनेट पे भी यू हैव टू बी काइंड, इंटरनेट पे भी यू हैव टू बी ब्रेव। सो बी इंटरनेट काइंड, बी इंटरनेट ब्रेव, शेयर विद केयर। सो दिस इज समथिंग
1: सबसे
0: विच इज
1: जरूरी।
0: वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नेट पे हो डजंट मीन कि आपकी मर्जी में जो आएगा वो आप बोलोगे। बी सॉफ्ट, क्योंकि हो सकता है कल कोई आपके लिए कॉमेंट करे जो शायद आपको पसंद नहीं आएगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस चिल्ड्रन गेट इनटू बिग ट्रॉमेटिक कंडीशंस।
1: ये आपने बहुत सही बात कही है, हमें भी एहतियात बरतनी है एज पेरेंट्स की, क्या देख रहे वो लोग, क्या नहीं देख रहे। लेकिन इंटरनेट पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता है। जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि फेक न्यूज़, फेक विज्ञापन, इनसे हम कैसे बच सकते हैं, कैसे पता चल सकता है कि ये एक फेक न्यूज़ है।
0: इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी इस बात को कि अक्सर आपने एक मैंने बच्चों के साथ क्लास में एक एक्टिविटी करा बिकॉज इस प्रोग्राम में बहुत सारी एक्टिविटीज भी करते हैं. तो बच्चों को मैंने बोला कि ठीक है आपको किसी चिप्स का एक एड हम लोग देखते हैं कि आप ये चेक करो कि कोई चिप्स ऐसा अवेलेबल है जिसका जलेबी फ्लेवर है. जस्ट गो एंड चेक
1: चिप्स का जलेबी फ्लेवर
0: लाइक इट वॉज द सेम जैसे आपने रिएक्ट किया बच्चों ने भी ऐसे रिएक्ट किया. मैं पहले हम चेक करेंगे क्योंकि इंस्टेंटली हम येस और नो ना बोल के एक बार चेक करते हैं. अपने आप चेक करना है तो हम लोग कंप्यूटर रूम में थे बच्चों ने चेक किया उनको पता चला कि हाँ एक जलेबी फ्लेवर है. तो बच्चों ने बोला यस. तो मैं कहा ठीक है अब इसका हमें चेक करना है तो दोस थ्री डॉट्स उसको चेक करके देखो वहां पर जाओ चेक करो कि वो फेक है या वो रियल है. तो उनको पता चला कि आची जो जलेबी फ्लेवर तो है लेकिन वो एक जस्ट एक प्रैंक था जो कि सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट की तरह उसको पेश किया गया था ऑन 1st अप्रैल फूल्स डे कि हम ये फ्लेवर लेके आ रहे हैं. तो जिस उस कंपनी ने एक एड लॉन्च किया था से बच्चों को पता चला कि दिस वाज अ फेक न्यूज. सिमिलरली एक ऐसे ही एक न्यूज थी मैंने बच्चों को उसके लिए भी बताया कि एक आपका एक शिप ग्राउंडेड एट द मरीन बीच इन बॉम्बे. तो बच्चे कहते हाउ कैन दिस हैपन मतलब एक शिप इतनी बड़ी शिप मरीन बीच पे ग्राउंडेड कैसे हो सकती है. लेकिन जब बच्चों ने क्रॉस चेक किया अभी आप भी अगर ये गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि 2011 में एक ऐसी शिप थी जो ग्राउंडेड हो गई थी और वो काफी टाइम तक वहां पर थी. तो मेरे पास उस टाइम पे मुंबई की ऑडियंस थी और मुंबई के कुछ एजुकेटर्स थे उन्होंने ये बताया मुझे कि यस मैम इट्स अ ट्रू न्यूज इट हैपेंड इन मुंबई कि ऐसा हुआ था. तो कुछ चीजें ऐसी थी हमें साउंड करती हैं कि वो गलत ही हैं या वो सही ही हैं लेकिन जब हम उसको चेक करते हैं तो डोंट गो इमिजिएटली जब आप गूगल सर्च करते हो. तो मैं यहाँ पे बोलती हूँ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या फेक है क्या रियल है विद दैट यू कैन ऑलवेज चेक आउट ऑन दोस थ्री डॉट्स टू लेट अस नो वेदर इट्स फेक न्यूज और अ ट्रू न्यूज.
1: एक तो सरीन जी अब अगला प्रश्न मुझे ये आ रहा है कि गूगल में वर्ड सर्च का भी कोई तरीका है क्या.
0: ये आपने बहुत अच्छी बात करी शिवानी जी. यहाँ मैं आपको अपना एक एग्जाम्पल देती हूँ. मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है.
1: अच्छा
0: तो मैं एक बार वॉशरूम में थी और एक छिपकली मुझे वहां नजर आए. तो मुझे लगा मैं छिपकली को मुझे भगाना है मैं क्या करूं. तो मेरे को था कि घर में कुछ चीज मिल जाए मिर्ची विर्ची पाउडर और मैं डाल दूं और छिपकली चली जाए. तो मुझे समझ नहीं आया फिर मोबाइल उठाया उसमें सर्च किया उसमें वर्ड टाइप किया लिजर्ड DIY. अब उसमें जो रिजल्ट्स आए विल यू नॉट बिलीव दैट आउट उसमें आया कि हाउ टू मेक अ लिजर्ड आउट ऑफ अ कार्डबोर्ड. तो मुझे तो चाहिए था कि मुझे लिजर्ड को भगाना
1: कैसे
0: या तो हो जाएगा कि और सारी लिजर्ड्स मुझे डेवलप करनी है कि आई कैन डेवलप सो मेनी लिजर्ड्स आउट ऑफ अ कार्डबोर्ड. तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप क्या वर्ड टाइप कर रहे हो जिससे आपको एग्जैक्टली डालना है मुझे क्या डालना चाहिए था उस टाइम पे मुझे जिससे मैं उस लिजर्ड को भगा पाऊं. तो मेरा होना चाहिए था कि हाउ टू गेट रिड ऑफ द लिजर्ड. लेकिन मैंने क्या डाला उसको हाउ टू लिजर्ड DIY. तो ये वाला चीज हुई. तो मैंने इस चीज को लेके भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम क्या डालते हैं. तो गूगल में जब आप सर्च करते हो तो गूगल आपके क्या वर्ड्स होने चाहिए क्या आपके प्रॉप्स होने चाहिए वो बहुत जरूरी होता है कि वट एवर यू आर टाइपिंग सो दैट गूगल कैन गिव यू द राइट रिजल्ट
1: राइट इन्फॉर्मेशन हमें वहां से मिले.
0: एग्जैक्ट
1: जी. सो जैसे कि अभी इंटरनेट का जमाना है हम देख रहे हैं कि बार बार हमें कुछ ना कुछ टाइप करना पड़ता है तो ऐसे हमें पासवर्ड्स टाइप इन करने पड़ते हैं. कभी हमें पता चलता है कि हमारा पासवर्ड पता चल गया किसी को या कुछ हो रहा है तो हम अपने पासवर्ड को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं क्या कर सकते हैं.
0: ये मैं बच्चों के साथ गेम खेलती हूँ हमेशा जब बच्चों को एक्टिविटी करवाती हूँ उनको हमेशा बताती हूँ कि बेटा क्या किस किसका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है लेट्स ट्राई. तो दे डू इट ऑन द बोर्ड दे जस्ट ट्राई दिस आउट. तो उनको एक एक होता है एक हमारा अपर केस लोअर केस न्यूमरल्स किस तरह से आपका कॉम्बिनेशन आपको चाहिए दिस इज मिक्स ऑफ एवरीथिंग.
1: ओके
0: सो मैं बच्चों को एक एक बड़ा वे बताती हूँ. जैसे हमारा एक एक सॉन्ग है I'm a Barbie girl in the Barbie world. तो आप इसका सबका फर्स्ट इनिशियल ले लीजिए. That becomes one password for you. क्योंकि आपको पता है वो आपका ये सॉन्ग
1: ये सही तरीका है.
0: So this can be a way out है कि हमारा एक सॉन्ग भी हो गया और साथ में हमने बीच में जहां भी हमको चाहिए हमें अपर केसेस ले लिए लोअर केसेस ले लिए और बीच में हमने कहीं ना कहीं हैश टैग्स या अपने अंडरस्कोर डाल दिया. That becomes you know बिकॉज बच्चों को हमेशा होते हैं बच्चे अपने एड्रेस या बर्थडेज या फादर्स नेम या मदर्स नेम लेते हैं जो इज वेरी वेरी रॉन्ग. तो उनको बताना बहुत जरूरी होता है. दिस कैन बी अ वे ऑफ साइबर बुलिंग ऑल्सो. सो आप कोशिश कीजिए कि अपना पर्सनल डिटेल्स कभी भी अपने पासवर्ड में यूज मत कीजिए. इट्स लाइक अ लॉक इट्स लाइक अ डोर विच कैन बी ओपन एनी टाइम. अपने घर बंद करने से पहले आप चार बार चेक करते हो कि लॉक है कि नहीं. तो नेट इज ऑल्सो लाइक दिस. सो मेक श्योर कि आप जो भी पासवर्ड यूज कर रहे हो शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड.
1: ये आपने सही तरीका बताया बार्बी गर्ल सॉन्ग से और ये भी हमें समझ में आया कि कितना इजिली एक्सेसिबल रख देते हैं बच्चे अपने पासवर्ड पासवर्ड्स को, तो बहुत ज़रूरी है हम ऐसे कॉमन चीज़ें, एड्रेस हुआ, माता पिता का इंट्रोडक्शन हुआ, ये सब ना डालें और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स को रखें। तो ये बहुत अच्छी बात है। आजकल देखा जाता है एकता जी कि क्लासरूम्स में भी इंटरनेट है, AI की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो कैसे हम वहाँ पर एहतियात बरत सकते हैं?
0: आई थिंक यहाँ पे फिर बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि देखिए स्मार्ट बोर्ड्स हर जगह आ चुके हैं, AI ऑलमोस्ट हर उसमें एंटर कर चुका है, तो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो यूज़ कर रहे हो, जो आप AI का इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें किस तरह के आप वर्ड्स का यूज़ करो।
1: ओके,
0: आपका मैक्सिमम पर्पस क्या होना चाहिए? टीचर्स उस टाइम, एजुकेटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है यहाँ पर, कि आप बच्चों को उस टाइम अवेयर कीजिए कि आप अगर कोई प्रोजेक्ट वर्क दे रहे हो तो बच्चों को बताइए इस पर्टिकुलर साइट पे आप जा सकते हो। दिस शुड नॉट बी ओपन टू एवरीथिंग आउट। ChatGPT या BARD का यूज वो कर रहे हैं तो उनका अपना क्रिएटिविटी कैसे खत्म होता है, तो डोंट लेट देम गिव अ चांस फॉर दैट। करें वो इस्तेमाल, करें उसका, लेकिन उनको साथ में बोलिए बुक्स का यूज, लाइब्रेरी का यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे ग्रुप में जब हम ये प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो हमारे पास वैरायटी आएगी, नहीं तो वो सिमिलर चीज लेके आते हैं तो उनको आप वहां पे हाईलाइट कीजिए कि बेटा आपने ChatGPT का यूज किया है यहाँ पर। तो जब बच्चे को एक बार आप हाईलाइट कर देते हो तो बट ऑब्वियस उसको हम साइडलाइन कर सकते हैं, समझा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे इस एज में उनको गाइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एजुकेटर्स का जॉब है और डेफिनेटली घर में पेरेंट्स का जॉब है।
1: थोड़ी देर पहले आपसे SIFT के बारे में बात हो रही थी, तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएंगे कि क्या है SIFT?
0: SIFT एक्चुअली इज बीन डेवलप्ड बाय मिस्टर माइक कॉल्फी, जो कि एक एक्सपर्ट है, इन्होंने इसको डेवलप किया है। ये भी आपका सुपर सर्चर्स का प्रोग्राम था
1: जी।
0: तो S stands for stop। स्टॉप का मतलब क्या? सपोज आप एक RJ हो, आपके पास कल एक कॉल आता है दुबई से कि शिवानी तुम्हारी आवाज सुनी, इट वॉज सच अ ब्यूटीफुल वॉइस, और दुबई में एक जस्ट सेंड मी योर CV और तुम्हारा जॉब तो बिल्कुल फाइनलाइज है, प्लीज कम ओवर। आपको बड़ा अच्छा साउंड करेगा, बट प्लीज चेक द सोर्स, चेक द पर्सन आउट कि कौन ये इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है। तो स्टॉप इज दैट, स्टॉप। हम बहुत जल्दी से फ्लो में आ जाते हैं, जो आजकल की जनरेशन का मेजर प्रॉब्लम है, कि आपने कुछ सुना, आपका हाँ मेरे को भी अप्लाई करना है, तो बिफोर सेंडिंग योर CV जस्ट स्टॉप एंड थिंक। उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस सोर्स से आ रहा है क्या वो ठीक है, क्या वो गलत है। सेकेंड इज आई इज इन्वेस्टिगेट द सोर्स,
1: इन्वेस्टिगेट।
0: सो इन्वेस्टिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास जिस सोर्स से आया है हम इजिली उसको चेक कर सकते हो, कि आप पूछ सकते हो किस कंपनी में है ये, किस रेडियो स्टेशन में है, ठीक है, लव टू कम ओवर टू दुबई, लेकिन लेट मी नो अबाउट द डिटेल्स। सो आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो और अपने लेवल पे कर सकते हो वेरी इजीली। थर्ड कम्स इज F, F इज फाइंड बेटर कवरेज। You can always find out because everything is available. Is it right? Is it wrong? कितना फेक है, कितना true है? Because suddenly कोई आपकी आवाज सुन के आपको as a RJ invite नहीं कर सकता. So let's find out क्या उसके पीछे। और ऐसे बहुत लोग होते हैं जो पैसे दे देते हैं और आप जब जाते हो तो कुछ भी नहीं होता वहां पे, इस कारण बहुत ज्यादा आपके साथ में hoax calls होते हैं, right? This is something to very much understand and get the reality. Again, T stands for tracing the claims. This is usually done by the government, जो आपकी government की sites होती है वो primary होता है। ये secondary के level पे हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर हमको इसकी जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती, but as a secondary source हमको ये पता करना होता है कि क्या वो government site थी जहाँ से हमारे information आया, तो it can be true. But if it was something which was something कोई business purpose से वो हुआ, तो let's check it out whether that was a right claim or a wrong claim.
1: बिल्कुल सही। तो SIFT के बारे में हमें पता चला, तो आप हमें बताइए एकता जी, टिप्स टू बिकम सुपर सर्चर, आखिरकार हम कैसे बन सकते हैं, ये इसके बारे में बताइए।
0: टिप्स कैन बी, कि वी हैव अ क्विक टिप्स अबाउट इट, कि क्या कर सकते हैं हम एज अ सुपर सर्चर। सो पहली चीज तो है हमको सर्च बाय वॉइस, जो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे आजकल के बुजुर्ग है उनको टाइपिंग करना में बहुत मुश्किल होता है
1: जी,
0: लेकिन ऑलवेज सर्च By the voice. आप जैसे भी आप सर्च करोगे, कुछ भी आप बोलोगे, इमिजिएटली आपको आपका वॉइस आपको ट्रेस कर लेती है। और अभी दिस थिंग नॉट इज वेरी मच अवेलेबल ऑन योर मोबाइल्स, वेरी वेरी इजीली आपको उसको अपलोड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज सर्च बाय इमेजेस, हम इमेज से भी इजीली सर्च कर सकते हैं कहाँ हमें जाना है, कैसा करना है। सिमिलरली गूगल लेंस, गूगल लेंस आपको बहुत हद तक हेल्प करता है। सपोज मैं कहीं ट्रेवल कर रही हूँ और मुझे कोई रेस्टोरेंट दिखता है और मुझे चाहिए कि वो रेस्टोरेंट इज सर्विंग व्हाट, उनका मेन्यू कार्ड में क्या है, या ये मुझे सूट कर रहा है, डू आई वांट टू गो देयर, सो आई कैन ऑलवेज गूगल लेंस के थ्रू मुझे उनका पूरा मेन्यू कार्ड मिल सकता है, उसके थ्रू मैं जा सकती हूँ क्योंकि ये रेस्टोरेंट मेरे लिए है विदाउट इवन स्टेपिंग इन द रेस्टोरेंट. दिस इज समथिंग विच इज रियली रियली हेल्पफुल. आपके QR कोड्स, आपकी इमेजेस, इवन सपोज आपको कोई परफ्यूम गिफ्ट करता है. रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ था.
1: अच्छा.
0: मुझे किसी ने परफ्यूम गिफ्ट किया, कोई जापान से आया था, बट नाउ मुझे उस लैंग्वेज को समझ में नहीं है बिकॉज आई डोंट नो जापानीज. सो मैंने गूगल लेंस के थ्रू उसको चेक किया, अपनी लैंग्वेज में उसको डाला कि आई वांट टू सी इन हिंदी कि क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर. मुझे पता चला उसके डायरेक्शंस कैसा यूसेज है उसका. तो इवन दिस कैन बी डन वेरी इजीली बाय गूगल लेंस. सो वी कैन डू द रेगुलर थिंग्स एंड दैट हाउ यू कैन बिकम अ सुपर सर्चर फॉर श्योर.
1: ओके, तो एकता जी आप हमें बताइए कुछ क्लेम सोर्सिंग के बारे में, ट्रेसिंग के बारे में, इसके बारे में हम कैसे कर सकते हैं.
0: सी, इसका बहुत सारा वेज हो सकता है कि आपका जो डिफरेंट वेज होते हैं जब हम सोर्सेस पे जाते हैं, जब हम डिफरेंट क्लेम्स देखते हैं,

0: नथिंग हमारे पास अवेलेबल होता है, क्योंकि मैं बोलूँगी घर में हम सब, घर में बच्चे भी हैं जो सेम लैपटॉप यूज़ करते हैं या सेम डेस्कटॉप यूज़ कर रहे होते हैं. सो डेफिनेटली अपना सेफ सर्च का ऑप्शन हमको ओपन करके
1: safe
0: रखना
1: search.
0: चाहिए. उसमें हमेशा क्या होता है कि आपका फिल्टर्ड हो जाता है, जो भी सेक्सुअल फिल्म्स आ रही हैं या नोटिफिकेशन आ रहे हैं या इवन कुछ वायलेंस से लिंक जो चीज आती है, वो ऑटोमेटिकली फिल्टर होके आएगी, तो वो बच्चों के रीच तक नहीं रहेगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंडली, आपके पास कहीं से भी कुछ कॉल आता है और वो वीडियो कॉल आ रहा है, सो मेक श्योर अपने कैमरे पे अपना थंब प्रेस करके जरूर रखिए, जिससे आपका कोई भी वीडियो सामने तक ना पहुंचे जहां से भी कॉल आ रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल, गलत नंबर जो आपके पास सेव नंबर नहीं है उसको आपको रिसीव ही नहीं करना चाहिए. फिर आगे गेमिंग की बात, गेमिंग के साथ भी आई थिंक हमको बहुत क्लियर होना चाहिए, पेरेंट्स को बच्चों को गाइडेंस देते रहना चाहिए कि क्या जरूरी है. कई बार बच्चों को स्टेप्स मिलते हैं कि इसके बाद आपको नेक्स्ट लेवल ये रहेगा, आपको ये करना है, ये चैलेंजेस आपको एक्सेप्ट करने हैं. सो आस्क देम टू स्टॉप देयर, बिकॉज कई कई गेम्स ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को उनके उनके पर्सनालिटी के लिए, उनके पर्सनालिटी को डेवलप करने की जगह उनको ऑल डिप्रेशन में ले जाते हैं, जो आप अक्सर बच्चों को देखते रहते हो. तो टीनेजर्स के साथ बहुत जरूरी है कि उनको हमको वहां पर स्टॉप करना चाहिए. स्टॉप जो आपका सेव बटन है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि उनको जरूर पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सेफ सर्च का बटन हमेशा ऑन रखें.
1: ये आपने बहुत अच्छी बात बताई सेफ सर्च के बारे में, कि कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट हो गया है ये. और वैसे देखा जाता है साइबर बुलिंग का बुरा प्रभाव होता है, इससे प्रभावित लोगों को कैसे मदद मिल सकती है जो इससे प्रभावित हो चुके हैं? अब
0: देखिए, साइबर बुलिंग एक तरह का, जैसे आप रेगुलर डेज में इतने बच्चों का रैगिंग होता है या बुलिंग होता है, साइबर बुलिंग भी उससे वर्स चीज है.
1: क्या है ये साइबर बुलिंग बेसिकली?
0: देखिए, साइबर बुलिंग में क्या है, आपने कोई पिक डाला, एक इट्स वेरी वेरी वेरी कॉमन एग्जाम्पल, बच्चे अपनी पिक्स अपलोड करते रहते हैं, तो बच्चों की पिक पे बच्चे उसके बाद कॉमेंट्स भी देखते हैं. बच्चे जब कमेंट्स देखते हैं तो हर तरह के कमेंट्स आ सकते हैं, हो सकता है आपको चार अच्छे कमेंट आए तो 10 खराब कमेंट्स भी आ जाएं. उसके बाद जो उनको गलत कमेंट दे रहे हैं उससे लिंक भी लोग जुड़ जाते हैं, तो बच्चा को किसी तरह से भी पुट डाउन किया जा सकता है. अभी तो आप रियल लाइफ में हम ये बात कर रहे हैं, साइबर बुलिंग चल रहा है, बस उसको आप बच्चे क्लासरूम तक अपने ग्रुप्स तक भी लेके चले जाते हैं, तो बच्चे का कई बार घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता है कि मेरे साथ साइबर बुलिंग हो रही है, कॉन्स्टेंटली कोई मुझे वॉच कर रहा है, कॉन्स्टेंटली मुझे कोई गलत कॉमेंट कर रहा है, ग्रुप में उसको सबके सामने इंसल्ट कर रहे हैं, लुक्स अच्छे नहीं, आपके लिप्स बहुत मोटे हैं, यू डोंट लुक लाइक गुड एट ऑल, यू आर नॉट वर्थ, आपका हेयर स्टाइल आपको सूट नहीं करता, आप एक ऐसा ड्रेस पहन के आए हो. तो इस एज में ये छोटी छोटी चीजें बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं बच्चे, और बच्चे पब्लिक आने को तैयार नहीं होते हैं, उनका सोशल लाइफ जीरो हो जाता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लेट्स टॉक देम आउट, और पेरेंट्स को भी अप्रोचेबल होना चाहिए. अगर बच्चा आपको लग रहा है उनके सिम्टम्स की बच्चा लोगों से मिलने को तैयार नहीं है, आपके घर में कोई आ रहा है बच्चा बाहर आने को तैयार नहीं है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग. सो लेट्स टॉक टू अ चाइल्ड, अगर हम बच्चे से बात करेंगे तो डेफिनेटली अ चाइल्ड शुड ऑल्सो बी आस्क्ड टू गो टू अ काउंसलर, गो टू अ एजुकेटर, जिससे आप कंफर्टेबल हो, स्पीक इट आउट. तो दिस इज वी कॉल यू आर ब्रेव, आप ब्रेव हो इसलिए आप आके बात कर रहे हो. सो टॉक इट आउट, जब हम बात करते हैं तो बहुत हद तक चीजें क्लियर हो जाती हैं. और अगर आपको लगता है कि किसी को आपको ब्लॉक करना है तो प्लीज डू दैट, उसमें हमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं.
1: बिल्कुल,
0: है कई बार बच्चे इस बात से भी घबराते हैं कि अगर मैं ब्लॉक करा तो
1: क्या होगा,
0: हाउ विल द थिंग्स कम टू अस. तो इट्स इंपॉर्टेंट, आप ब्लॉक कर सकते हो, जिप इट आउट, कंप्लीटली जिप अ पर्सन आउट, ब्लॉक इट आउट एंड फ्लैग इट आउट. दिस इज थ्री थिंग्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग साइबर बुलिंग, कि वन शुड नो अबाउट इट, एंड बच्चों को हमें ट्रेन करना बहुत जरूरी है. इस प्रोग्राम के थ्रू हर एजुकेटर को और हर पेरेंट्स को जुड़ना चाहिए.
1: वेरी नाइस, वेरी नाइस. जैसे कि हम एहतियात बरत सकते हैं इन चीज़ों से कि हम साइबर बुलिंग की ओर ना जाए, या कैसे उस डिप्रेशन से बचा जा सकता है, कैसे हम पहले अवॉइड कर सकते हैं ऐसे सिचुएशंस कि हम साइबर बुलिंग की ओर जाए ही ना, उससे हम प्रभावित ना हो, लेकिन कोई ऐसी जगह है जहां हम शिकायत कर सकते हैं इन चीज़ों के बारे में? जैसे आपने बताया ब्लॉक कर दीजिए, वो एक मेथड है, लेकिन क्या कहीं शिकायत भी दर्ज की जा सकती है?
0: साइबर स्टेट्स के सेशंस रहते हैं, आप डेफिनेटली गो एंड कंप्लेन ओवर देयर, इमीडिएटली एक्शन लिया जाता है, वन शुड गो informed directly there. तो उनके पास इस तरह की complaints आती हैं और वो action भी लेते हैं.
1: एक तो सरीन जी, कोई message जो आप श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं बताइए.
0: मैं यहाँ पे एक quote से end करना चाहूंगी, that internet gives us the access to various things, right? It's just one click, but you have to be wise, you have to be internet awesome, so definitely you will be the super surgeons.
1: तो श्रोताओं आपको समझ में आया कैसे हम गूगल सर्चर बन सकते हैं, बी इंटरनेट ऑसम बन सकते हैं एकदम एकता सरीन जी की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद शिवानी जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके और अपने लिसनर्स से बात करके।
1: जी, तो आप सुन रहे हैं टेक गुरु प्रोग्राम, सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.8, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: बेरेनिका, वह रेगिस्तानी एम्पोरियम जहां रोमन सिक्कों का मिलन भारतीय रेशम से हुआ, मिस्र के तपते पूर्वी रेगिस्तान में जहां लाल रेत और लाल सागर का गहरा नीला पानी मिलते हैं। कभी एक ऐसा शहर बसा था जिसने अपने उजाड़ परिवेश को चुनौती दी थी। यह था बेरेनिका, एक ऐसी जगह जहां रोम का वैभव पूर्व के रहस्यों से मिलता था। 275 ईसा पूर्व में टॉलेमी द्वितीय द्वारा स्थापित और उनकी मां के नाम पर रखा गया यह शहर विलासिता के केंद्र के रूप में नहीं बल्कि एक सैन्य चौकी के रूप में शुरू हुआ था, जिसे अफ्रीकी युद्ध हाथियों को मिस्र लाने के लिए बनाया गया था। 30 ईसा पूर्व में मिस्र पर रोमन विजय के बाद यह दूरस्थ बंदरगाह प्राचीन दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और सक्रिय एम्पोरियम में से एक में बदल गया। इस शहर के अविश्वसनीय उत्थान की कुंजी यूनानी हिप्पुल्स जैसे नाविकों द्वारा मानसून की हवाओं की खोज में छिपी थी, जिसने जहाजों को तट के किनारे रेंगने के बजाय सीधे खुले अरब सागर के पार जाने की अनुमति दी। पहली शताब्दी ईस्वी के दौरान बंदरगाह के दृश्य की कल्पना कीजिए। घाट उन विशाल जहाजों के आगमन से हलचल में रहे होंगे जो भारत के मसालों से समृद्ध बंदरगाहों से दक्षिण पश्चिमी मानसून की सवारी करके अभी अभी पहुंचे थे। रोमन व्यापारी जिनकी जेबें सोने और चांदी के सिक्कों से भरी थीं, लोबान और लोहबान की महक से भरी हवाओं के बीच घूमते थे। यहां रोमन अभिजात वर्ग की सबसे प्रतिष्ठित विलासिता चीन से आने वाला चमकता रेशम उस शाही मुद्रा के बदले खरीदा जाता था जिसने साम्राज्य की वैश्विक पहुंच को ईंधन दिया था। बेरेनिका के अब छोड़े जा चुके स्थल पर मिले खजानों की विविधता अभूतपूर्व जुड़ाव की कहानी बयान करती है। पुरातत्वविदों ने भारत से बड़ी मात्रा में आई सागौन की लकड़ी बरामद की है, जिसे संभवतः समुद्र पार करने वाले जहाजों से दोबारा उपयोग के लिए निकाला गया था। इसके साथ ही सुदूर पूर्वी जावा के कांच के मनके भी मिले हैं। उन्हें ऐसे एम्फोरा यानी मिट्टी के पात्र मिले जिनमें कभी भूमध्य सागरीय शराब और जैतून का तेल लाया गया था, जो विदेशी व्यापारियों और बस्तियों की मेजों के लिए नियत थे। शायद सबसे जीवंत खोज 16 पाउंड भारतीय काली मिर्च से भरा एक जार था, एक ऐसा पुरातात्विक खजाना जो प्राचीन मसाला व्यापार के पैमाने को रेखांकित करता है। लेकिन बेरेनिका केवल माल ढोने की जगह से कहीं अधिक थी। यह एक जीवंत बहुजातीय संस्कृतियों का संगम था। इसकी रेगिस्तानी सड़कों पर चलते हुए कोई भी विभिन्न भाषाओं का एक संगीत सुन सकता था। स्थानीय पत्थरों पर खुदे हुए भित्ति लेख आम आदमी के साहित्य को दर्शाते हैं, जिसमें दक्षिण अरबियों, सीरियाई रेगिस्तान के पलमायरेन, इथियोपिया के ऊंचे इलाकों के एक्सुमाइटस और भारत के दक्षिणी छोर के तमिल भाषी लोगों की उपस्थिति का पता चलता है। इस विविधता के बीच देवी एफ्रोडाइट की मूर्तियां एक परिचित ग्रीको रोमन सुकून के रूप में खड़ी थीं, एक ऐसे शहर में जहां दुनिया की संस्कृतियों का मिलन होता था। इस रेगिस्तानी एम्पोरियम ने साबित कर दिया कि प्राचीन दुनिया इतिहास की किताबों के सुझावों की तुलना में कहीं अधिक वैश्विक थी। बेरेनिका वह अनिवार्य प्रवेश द्वार था जहां लाल सागर एक विशाल बहुकेंद्रित ऐतिहासिक इकाई में खुलता था जो पूर्व में हजारों मील तक फैली हुई थी। यह उस समय का प्रमाण है जब मिस्र की रेत का एक सुदूर टुकड़ा एक परस्पर जुड़ी दुनिया की धड़कन के रूप में कार्य करता था, जो मौसमी हवाओं और विनिमय की साझा मानवीय इच्छा से एकजुट था।
2: अगर आपको दो हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें। ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
3: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
2: दो हफ्तों से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी दोस्त सुनीता सिंह।
4: मैं हूं आपका दोस्त दीपक नेमा।
0: श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति। इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं स्वाधीनता संग्राम सेनानी, समाज सेवी और गांधीवादी विचारक लोकनायक ओमियो कुमार दास की। श्रोताओं, आज हम उस महान आत्मा को जानने समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र की स्वतंत्रता और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। आज हम स्मरण कर रहे हैं लोकनायक ओमियो कुमार दास जी का, एक ऐसे महापुरुष जो केवल असम के ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के गौरव हैं।
4: लोकनायक ओमियो कुमार दास जी का जीवन साधारण नहीं बल्कि असाधारण त्याग, तपस्या और समर्पण की एक अद्भुत गाथा है। वे एक ऐसे युग के साक्षी और निर्माता थे जब भारत की आजादी के लिए हर घर से दीप जल रहे थे, हर सीने में देशभक्ति की ज्वाला धधक रही थी। उस महान स्वतंत्रता संग्राम में ओमियो कुमार दास जी ने अग्रणी भूमिका निभाई। आज के इस कार्यक्रम में हम उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानेंगे, उनके योगदान को समझेंगे और उनसे प्रेरणा लेंगे। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, हम उनके दिखाए मार्ग पर चलेंगे और एक बेहतर समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे।
0: श्रोताओं, ओमियो कुमार दास, जिन्हें लोकनायक की उपाधि से विभूषित किया गया था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान सेनानी, समाज सेवी, गांधीवादी विचारक, शिक्षाविद और असम के प्रमुख राजनेता थे। उनका जीवन त्याग, समर्पण और राष्ट्र सेवा का एक अनुपम उदाहरण है। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश की स्वतंत्रता और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया।
4: ओमियो कुमार दास का जन्म 21 मई 1895 को असम के नागांव जिले में हुआ था। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें अच्छे संस्कारों से युक्त किया। बचपन से ही उनमें देशभक्ति की भावना और समाज सेवा की प्रवृत्ति विद्यमान थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा तेजपुर हाई स्कूल में हुई। तेजपुर, जो असम का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर है, वहां की शैक्षणिक वातावरण ने उनके व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्कूल के दिनों से ही वे मेधावी छात्र के रूप में जाने जाते थे।
0: प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद ओमियो कुमार दास ने गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज में दाखिला लिया। कॉटन कॉलेज असम का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान था, जहां उन्हें उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त हुई। यहां उनका संपर्क विभिन्न राष्ट्रवादी विचारों और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए लोगों से हुआ।
5: बाद में उन्होंने कलकत्ता के सिटी कॉलेज में अपनी उच्च शिक्षा जारी रखी। कलकत्ता उस समय भारतीय राजनीति और स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र था। यहाँ उन्हें गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों की गतिविधियों को करीब से देखने का अवसर मिला। इन महान नेताओं के विचारों और कार्यों ने युवा ओमियो कुमार दास को गहराई से प्रभावित किया।
4: कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने छात्र राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया। वे छात्र संगठनों से जुड़े और राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करने लगे। ये उनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत थी। जब 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया, तब ओमियो कुमार दास ने इसे अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। वे गांधी जी के आदर्शों, सत्य, अहिंसा और स्वराज से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने असम में असहयोग आंदोलन को संगठित करने में अग्रणी भूमिका निभाई।
5: युवा ओमियो कुमार दास ने असम के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर छात्रों और युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सार्वजनिक सभाओं को संबोधित किया और लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत की। उनके प्रभावशाली भाषणों और निष्ठा ने कई युवाओं को आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। सन 1930 में जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, ओमियो कुमार दास इसके असम में प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों का उल्लंघन किया और नमक कानून तोड़ने के आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की।
4: इस आंदोलन के दौरान उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और जेल की यातनाएं सहनी पड़ी, लेकिन जेल की कठोर परिस्थितियां भी उनके संकल्प को नहीं तोड़ सकी। जेल में रहते हुए भी वे अन्य कैदियों को प्रेरित करते रहे और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति उनकी निष्ठा बनाए रखते रहे। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा निर्णायक मोड़ था। ओमियो कुमार दास ने असम में इस आंदोलन को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, तो ओमियो कुमार दास ने इसे पूरी तरह से अपना लिया।
5: इस आंदोलन के दौरान गोपीनाथ बारडोली और सिद्धिनाथ शर्मा जैसे नेताओं के साथ ओमियो कुमार दास को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें असम के विभिन्न जेलों में कैद किया गया। उनकी गिरफ्तारी ने आंदोलन को और अधिक तीव्र कर दिया। पूरे असम में लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ओमियो कुमार दास को अनेक बार कारावास में डाला गया। उन्होंने कुल मिलाकर कई वर्ष जेल में बिताए, लेकिन उनका मनोबल कभी नहीं टूटा। उनकी अटूट देशभक्ति और निरंतर संघर्ष ने उन्हें असम के सबसे सम्मानित स्वतंत्रता सेनानियों में से एक बना दिया।
4: ओमियो कुमार दास की योग्यता और लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें 1937 में असम विधानसभा के लिए चुना गया। ये उनके राजनीतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। 1945 में उन्हें भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी चुना गया, जहां उन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में योगदान दिया। भारत की स्वतंत्रता के बाद ओमियो कुमार दास ने अपने राजनीतिक कार्य को जारी रखा। उन्होंने ढेकियाजुली विधानसभा क्षेत्र से लगातार 3 बार 1951, 1957 और 1962 में चुनाव जीता। इन वर्षों के दौरान उन्होंने असम सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्री पदों पर कार्य किया।
5: जब ओमियो कुमार दास असम के श्रम मंत्री थे, तब उन्होंने चाय बागान मजदूरों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। असम में चाय उद्योग एक प्रमुख आर्थिक स्तंभ था, लेकिन चाय बागान के मजदूर अत्यंत शोषणकारी परिस्थितियों में काम करते थे। ओमियो कुमार दास ने चाय बागान मजदूरों के लिए भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड की स्थापना की। ये पहल एशिया में अपनी तरह की पहली योजनाओं में से एक थी। इस योजना ने हजारों मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की और उनके जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4: उन्होंने मजदूर वर्ग को संगठित करने और उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलनों में भाग लिया, जहां उन्होंने भारतीय मजदूरों के अधिकारों की वकालत की। शिक्षा मंत्री के रूप में ओमियो कुमार दास ने असम में बुनियादी शिक्षा योजना को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये योजना महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित थी, जिसका उद्देश्य शिक्षा को व्यवहारिक और उपयोगी बनाना था।
5: उन्होंने असम में शिक्षा के प्रसार के लिए कई स्कूल और शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए। उनका मानना था कि शिक्षा ही समाज को सशक्त बनाने का सबसे प्रभावी साधन है। उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार पर ध्यान केंद्रित किया। ओमियो कुमार दास ने खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री के रूप में भी कार्य किया। इस दौरान उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि असम के सभी क्षेत्रों में खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं की उचित आपूर्ति हो। उन्होंने विशेष रूप से गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया।
4: ओमियो कुमार दास केवल एक राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे, बल्कि एक प्रतिभाशाली लेखक भी थे। उन्होंने असमिया भाषा में कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। ओमियो कुमार दास की सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक उपलब्धि महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, उसका असमिया भाषा में अनुवाद था। उन्होंने इसे मोर सत्य अनेश्वर काहिनी शीर्षक से अनुवादित किया।
5: ये अनुवाद असम के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसने उन्हें गांधी जी के जीवन और विचारों को उनकी अपनी भाषा में समझने का अवसर दिया। इस अनुवाद ने असम में गांधीवादी विचारों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओमियो कुमार दास ने महात्मा गांधी पर कई अन्य पुस्तकें भी लिखीं। गांधी जीर जीवनी अर्थात गांधी जी की जीवनी, ये पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। महात्मा गांधी आमी किदोर बुजिलू अर्थात महात्मा गांधी को मैंने कैसे समझा, इस पुस्तक में उन्होंने गांधी जी के विचारों और सिद्धांतों की अपनी व्याख्या प्रस्तुत की है।
4: असमोत महात्मा, असम में महात्मा, ये पुस्तक महात्मा गांधी की असम यात्रा और असम में उनके प्रभाव पर केंद्रित है। इन पुस्तकों ने असम के लोगों को गांधीवादी विचारधारा से परिचित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओमियो कुमार दास की लेखनी सरल और प्रभावी थी, जो आम लोगों तक आसानी से पहुंच सकती थी। ओमियो कुमार दास का जीवन केवल राजनीति तक सीमित नहीं था, वे एक समर्पित समाज सेवी थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज की सेवा में लगा दिया।
5: ओमियो कुमार दास कई गांधीवादी और सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए थे। ओमियो कुमार दास ने इस संगठन के माध्यम से असम में अस्पृश्यता के खिलाफ संघर्ष किया। भारतीय आदिम जाति सेवक संघ से भी वो जुड़े थे। इस संगठन के माध्यम से उन्होंने आदिवासी समुदायों के कल्याण के लिए कार्य किया। इसके साथ ही भारत सेवक समाज से भी उनका संबंध था। ये संगठन समाज सेवा के लिए समर्पित था और ओमियो कुमार दास इसके सक्रिय सदस्य थे।
4: गांधी स्मारक निधि, ये संगठन महात्मा गांधी की स्मृति में स्थापित किया गया था। ओमियो कुमार दास इससे सक्रिय रूप से जुड़े थे। कस्तूरबा स्मारक निधि, ये संगठन महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य करता था। असम सेवा समिति, ये असम का एक प्रमुख समाज सेवी संगठन था, जिसके संस्थापकों में ओमियो कुमार दास भी थे। ओमियो कुमार दास ने असम में नशा विरोधी अभियान चलाया। उस समय असम में विशेष रूप से चाय बागानों में शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन एक बड़ी समस्या था। उन्होंने लोगों को नशे की बुराइयों के बारे में जागरूक किया और नशा मुक्ति के लिए कार्यक्रम चलाए।
5: ओमियो कुमार दास ने कुष्ठ रोग और तपेदिक से पीड़ित रोगियों के पुनर्वास के लिए भी कार्य। उस समय ये रोग एक बड़ी सामाजिक समस्या थे और इन रोगों से पीड़ित लोगों को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। ओमियो कुमार दास ने इन रोगियों के लिए उपचार और पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्य किया। ओमियो कुमार दास एक सरल और विनम्र व्यक्ति थे। उनका जीवन गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित था। वे सत्य और अहिंसा में दृढ़ विश्वास रखते थे। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि लोग उन्हें लोक नायक कहकर पुकारा करते थे।
4: उनमें अद्भुत संगठन क्षमता थी। वे विभिन्न वर्गों के लोगों को एक साथ लाने और उन्हें एक साझा उद्देश्य के लिए संगठित करने में सक्षम थे। उनकी वाणी में जादू था। जब वे सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करते थे तो लोग मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनते थे। ओमियो कुमार दास एक निडर व्यक्ति थे। ब्रिटिश शासन के दौरान उन्होंने कई बार जेल की यातनाएं सही, लेकिन कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनका नेवर से डाई, कभी हार ना मानने वाला दृष्टिकोण उनके चरित्र का एक प्रमुख पहलू था।
5: श्रोताओं, वो एक आदर्श पारिवारिक व्यक्ति भी थे। उनकी पत्नी पुष्पलता दास भी एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेविका थीं। दोनों ने मिलकर समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के कार्य किए। उनकी बेटी ने भी पिता के आदर्शों का अनुसरण किया। ओमियो कुमार दास के समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के महान योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें सन 1963 में पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया था। ये भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये सम्मान उन्हें उनके जीवन भर के समर्पित कार्य के लिए दिया गया था।
4: भारतीय डाक विभाग इंडिया पोस्ट ने 15 मई 1998 को ओमियो कुमार दास के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। ये सम्मान उनके महान योगदान की स्वीकृति थी। 1995 में ओमियो कुमार दास की जन्म शताब्दी के अवसर पर गुवाहाटी में ओमियो कुमार दास सामाजिक परिवर्तन और विकास संस्थान की स्थापना की गई। ये संस्थान भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त संस्थान है। ये संस्थान सामाजिक शोध और विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। ढेकियाजुली में एक कॉलेज को लोकनायक ओमियो कुमार दास कॉलेज के नाम से नामित किया गया है। ये कॉलेज उनकी स्मृति में स्थापित किया गया है और असम में युवाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करता है।
5: ओमियो कुमार दास का निधन 23 जनवरी सन 1975 को हुआ। उस समय उनकी आयु लगभग 79-80 वर्ष थी। उनके निधन से असम और पूरे भारत ने एक महान नेता और समाज सेवी को खो दिया। उनकी मृत्यु पर असम में शोक की लहर दौड़ गई। उनके निधन के समय उनकी पत्नी पुष्पलता दास और उनकी बेटी जीवित थीं। पुष्पलता दास स्वयं एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और संसद सदस्य थीं। उनका निधन सन 2003 में हुआ।
4: ओमियो कुमार दास की विरासत आज भी असम में जीवित है। उनके द्वारा स्थापित संस्थाएं और उनके विचार आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। चाय बागान मजदूरों के लिए उनके द्वारा स्थापित भविष्य निधि योजना आज भी लाखों मजदूरों को लाभान्वित कर रही है। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें, उनके द्वारा किया गया गांधी की आत्मकथा का अनुवाद आज भी असम में व्यापक रूप से पढ़ा जाता है। ये पुस्तकें नई पीढ़ियों को गांधी जी के विचारों और स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से परिचित कराती हैं।
5: ओमियो कुमार दास ने असम के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने असम में शिक्षा के प्रसार के लिए कई संस्थान स्थापित किए और ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक जागरूकता फैलाने का कार्य किया। असम की अर्थव्यवस्था में चाय उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए उन्होंने चाय बागान मजदूरों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अथक प्रयास किए। उनकी पहल से चाय बागान मजदूरों को न केवल बेहतर वेतन मिला बल्कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त हुई।
4: उन्होंने असम की बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी विरासत को समझा और सभी समुदायों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने चाय बागान मजदूरों और अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रयास किए। ओमियो कुमार दास ने असम के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने किसानों की समस्याओं को समझा और उनके समाधान के लिए नीतियां बनाई। उन्होंने कृषि सहकारी समितियों की स्थापना में सहायता की जिससे किसानों को बेहतर बाजार और उचित मूल्य मिल सके। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास पर भी जोर दिया। उनका मानना था कि स्वस्थ समाज ही विकसित समाज हो सकता है।
5: ओमियो कुमार दास के जीवन का केंद्र गांधीवादी विचारधारा थी। उन्होंने महात्मा गांधी के तीन प्रमुख सिद्धांतों सत्य, अहिंसा और सर्वोदय को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाया। सत्य उनके जीवन का आधार था। वे हमेशा सत्य बोलते थे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हों, उन्होंने कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया। उनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा उनके चरित्र की पहचान थी।
4: ओमियो कुमार दास अहिंसा में दृढ़ विश्वास रखते थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी उन्होंने हमेशा अहिंसक तरीकों को अपनाया। वे मानते थे कि हिंसा से कभी भी स्थायी समाधान नहीं मिल सकता। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि अहिंसा के माध्यम से बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। सर्वोदय यानी सभी का उत्थान उनके जीवन का मूल मंत्र था। वे किसी एक वर्ग या समुदाय के विकास में विश्वास नहीं करते थे। उनका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों, विशेषकर सबसे पिछड़े और वंचित वर्गों का उत्थान करना था। उन्होंने अपने जीवन में इस आदर्श को साकार करने का प्रयास किया।
5: गांधी जी की तरह ओमियो कुमार दास भी खादी और स्वदेशी वस्तुओं के प्रबल समर्थक थे। वे हमेशा खादी के वस्त्र पहनते थे और लोगों को भी स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने असम में खादी उद्योग के विकास के लिए भी प्रयास किया। ओमियो कुमार दास महिला सशक्तिकरण के प्रबल समर्थक थे। उनकी पत्नी पुष्पलता दास स्वयं एक सशक्त महिला थीं, जो स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेती थीं। ओमियो कुमार दास ने महिलाओं को शिक्षा और समाज सेवा के कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।
4: उन्होंने कस्तूरबा स्मारक निधि के माध्यम से महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य किया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी और लड़कियों के लिए स्कूल स्थापित करने में सहायता की। ओमियो कुमार दास का मानना था कि समाज का वास्तविक विकास तभी संभव है जब महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। उन्होंने अपने जीवन में इस विचार को व्यवहारिक रूप दिया।
5: ओमियो कुमार दास युवाओं के लिए एक महान प्रेरणा स्रोत थे। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प और समर्पण से समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। ओमियो कुमार दास ने अपना संपूर्ण जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कभी व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं सोचा। उनका जीवन निस्वार्थ सेवा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
4: ओमियो कुमार दास अपने सिद्धांतों पर हमेशा अडिग रहे, चाहे जेल की यातनाएं सहनी पड़ी या अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। ओमियो कुमार दास शिक्षा को समाज के विकास का सबसे महत्वपूर्ण साधन मानते थे। उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा के प्रसार के अथक प्रयास किए। युवाओं को उनसे ये शिक्षा मिलती है कि शिक्षा ही जीवन में सफलता की कुंजी है।
5: ओमियो कुमार दास ने सभी वर्गों और समुदायों के बीच समरसता स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने जाति, धर्म और भाषा के आधार पर भेदभाव का विरोध किया। युवाओं को उनसे सामाजिक सद्भाव और एकता का पाठ मिलता है। ओमियो कुमार दास के जीवन में अनेक संघर्ष और चुनौतियां आईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्हें ब्रिटिश सरकार के कठोर दमन का सामना करना पड़ा। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और जेल में कठोर यातनाएं भी दी गईं। लेकिन इन यातनाओं ने उनके संकल्प को और अधिक मजबूत किया।
4: स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी के कारण ओमियो कुमार दास को आर्थिक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी आर्थिक लाभ के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। ओमियो कुमार दास ने अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष किया। उस समय समाज में ये प्रथाएं गहराई से जड़े जमाई हुई थीं। उन्हें इन रूढ़ियों को तोड़ने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अपने प्रयासों में सफल रहे।
5: ओमियो कुमार दास के समकालीन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कई महान नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध थे। महात्मा गांधी उनके आदर्श और प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने गांधी जी से व्यक्तिगत रूप से भी भेंट की और उनके मार्गदर्शन में काम किया। गांधी जी भी ओमियो कुमार दास के समर्पण और कार्य से प्रभावित थे। स्वतंत्र भारत में ओमियो कुमार दास का संबंध कई अन्य राष्ट्रीय नेताओं से भी था। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इन नेताओं के साथ काम किया।
4: असम के अन्य प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों जैसे गोपीनाथ बारडोली, तरुण राम फूकन और अन्य के साथ भी उनके घनिष्ठ संबंध थे। इन सभी नेताओं ने मिलकर असम में स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत बनाया। लोकनायक ओमियो कुमार दास का जीवन त्याग, तपस्या और समर्पण की अद्भुत गाथा है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश की स्वतंत्रता और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। वे केवल एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी नेता, कुशल प्रशासक, प्रभावी लेखक और समर्पित समाज सेवी भी थे।
5: उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प और समर्पण से समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। उन्होंने गांधीवादी सिद्धांतों को केवल सिद्धांत के रूप में नहीं बल्कि व्यवहार में अपनाया और इस प्रकार एक आदर्श जीवन जिया। आज भी असम और पूरे भारत में उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उनके द्वारा स्थापित संस्थाएं और उनके विचार आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। वे सच्चे अर्थों में लोकनायक थे। लोकनायक अर्थात जनता के नायक, जिन्होंने अपना जीवन जनता की सेवा में समर्पित कर दिया।
4: ओमियो कुमार दास की जीवनी युवा पीढ़ी के लिए एक महान प्रेरणा है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा और निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य ही जीवन को सार्थक बनाता है। उनकी स्मृति हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन देती रहेगी। लोकनायक ओमियो कुमार दास जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची महानता त्याग में है, सेवा में है, निस्वार्थ भाव में है। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प और समर्पण से पूरे समाज को बदल सकता है। सत्य, अहिंसा और सर्वोदय के मार्ग पर चलकर ही मानवता का वास्तविक विकास संभव है। दोस्तों, अब वक्त है आपसे विदा लेने का। कार्यक्रम भारत विभूति में हमने ढेर सारी बातें की लोक नायक ओमियो कुमार दास जी के बारे में। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन अखिलेश कुमार वर्मा और मैं था आपका दोस्त दीपक निमा
5: और मैं थी आपके साथ सुनीता सिंह।
4: तो दोस्तों, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: रानू खान, वो पहाड़ी विद्रोही जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को 10 साल तक छकाया। क्या आप जानते हैं कि एक दशक से अधिक समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ऐसे विद्रोही नेता द्वारा व्यवस्थित रूप से अपमानित किया गया जिसे वे उपहास में पहाड़ी कहते थे। ये रानू खान थे, चकमा लोगों के शानदार जनरल और दीवान, जिन्होंने 1776 और 1787 के बीच दुर्गम चटगांव हिल ट्रैक्ट्स को ब्रिटिश सैन्य प्रतिष्ठा के कब्रिस्तान में बदल दिया था। ये संघर्ष तब शुरू हुआ जब कंपनी ने राजस्व की अपनी अतृप्त भूख के कारण चकमा राजा की उन पैतृक जमीनों पर कर लगाने की कोशिश की जो पीढ़ियों से कर मुक्त थी। रानू खान ने केवल विरोध नहीं किया, उन्होंने प्रतीकात्मक चुनौती दी। जब कंपनी ने उन्हें नोटिस देने के लिए सिपाही भेजे तो उन्होंने सिपाहियों को पिटवाया और उनके आधिकारिक सरकारी वारंट परवाना को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। 1777 की शुरुआत में कंपनी ने इस अशांत विद्रोही को पकड़ने के लिए 50 नियमित सिपाहियों का एक दल भेजा। उन्हें त्वरित जीत की उम्मीद थी, लेकिन इसके बजाय उन पर जनजातीय सशस्त्र समूहों और भयंकर कुकी पहाड़ी लड़ाकों द्वारा घात लगाकर हमला किया गया। घने जंगलों ने ब्रिटिश सैन्य प्रशिक्षण को पूरी तरह बेअसर कर दिया। बड़ा और सुदृढ़ सैन्य दल इस हेतु तैनात किए जाने के बाद भी ब्रिटिश सेना रानू खान को नहीं पकड़ सकी। वो बस आंतरिक पहाड़ियों के उस अदृश्य क्षेत्र में गायब हो गए जहां कंपनी का अधिकार समाप्त हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि रानू खान कंपनी की नाक के नीचे अपना राज्य चलाने में कैसे सफल रहे? उन्होंने अपने निशान स्वतंत्रता के झंडे फहराए और स्थानीय जमींदारों को अंग्रेजों को भुगतान करने के बजाय उन्हें नजर यानी औपचारिक कर देने के लिए मजबूर किया। उन्होंने अपनी जमीनों पर काम करने के लिए कंपनी के रैयतों यानी किसानों को पकड़ लिया, जिससे प्रभावी रूप से ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता छीन ली गई। ब्रिटिश अधिकारियों के बीच व्याप्त छिपाने की संस्कृति ने इस अपमान को और बढ़ा दिया। चटगांव के स्थानीय प्रमुख फ्रांसिस लॉ ने महीनों तक एक शांत दर्शक के रूप में इस अराजकता को देखा। उन्हें डर था कि किसी हलचल की सूचना देने से वे कलकत्ता में अपने वरिष्ठों की नजर में अक्षम लगेंगे, इसलिए उन्होंने तब तक विद्रोह के पैमाने के बारे में झूठ बोला जब तक कि राजस्व का नुकसान इतना बड़ा नहीं हो गया कि उसे छिपाना असंभव हो गया। रानू खान जानते थे कि अंग्रेज केवल धोखा दे रहे हैं। उन्होंने बाद में कंपनी अधिकारियों से कहा कि वे उनकी लंबी निष्क्रियता को सरकार की कमजोरी के संकेत के रूप में देखते हैं। 10 वर्षों में कंपनी ने 3 अलग अलग सैन्य अभियान चलाए, लेकिन हर बार रानू खान ने पहाड़ियों की गतिशीलता का उपयोग करके उन्हें छकाया। अंततः अंग्रेज युद्ध के मैदान में इस पहाड़ी को हरा नहीं सके। उन्होंने राजनीतिक तोड़फोड़ का सहारा लिया। उन्होंने चकमा राजा जान बख्श खान को आश्वस्त किया कि रानू खान बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं और उनका सिंहासन छीन सकते हैं। 1787 में राजा ने अपने जनरल के पीठ पीछे कलकत्ता में एक गुप्त संधि पर हस्ताक्षर किए। रानू खान, वो व्यक्ति जिसने एक दशक तक ब्रिटिश वारंट फाड़े थे और उनके बेहतरीन सिपाहियों को पछाड़ा था, पहाड़ियों में ओझल हो गए।

भारत भवन में आयोजित 7 दिनों के सदानीरा समागम का मंगलवार को समापन हो गया। लोक संगीत, लोक नाट्य और जल संस्कृति के अलग अलग रंगों को लिए आखिरी शाम लोक गायिका शीला त्रिपाठी के बघेली गीतों में गूंजी। उनके गीतों में जल, नदी, प्रकृति और ग्रामीण जीवन की संवेदनाएं शामिल थीं। अंतरंग सभागार में जैसलमेर से आए बुंगर खान मंगणियार और उनके समूह ने मंगणियार गायन परंपरा को मनमोहक अंदाज में पेश किया। प्रस्तुति में नदियों के सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक महत्व पर आधारित लोक धुनों और गीत शामिल थे। कमायच्चा, खड़ताल, ढोलक और हारमोनियम की सुरमई संगीत संगति ने पूरे माहौल को लोकरस से भर दिया था। ध्रुपद संस्थान गुरुकुल में आयोजित 8 समर कैंप का समापन हो गया। 7 वर्ष से अधिक आयु के प्रतिभागियों के लिए आयोजित इस शिविर में बच्चों के साथ बड़ों ने भी संगीत की बारीकियां सीखी। प्रशिक्षण की शुरुआत स्वरों की पहचान, स्वर साधना और सरगम अभ्यास से हुई, जिससे प्रतिभागियों की श्रवण क्षमता और सुरों पर पकड़ मजबूत हो सके। इसके बाद अलंकार और विभिन्न स्वर पैटर्न का अभ्यास कराया गया। राग सीखने की शुरुआत राग यमन से कराई गई, जब क्योंकि इसकी संरचना सरल होने के साथ स्वर सौंदर्य को समझना आसान होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन मध्य प्रदेश की ओर से पचमढ़ी में स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम किया गया। प्राकृतिक वातावरण के बीच संस्थान के अधिकारियों कर्मचारियों को मोटिवेशनल स्पीकर ऋषि नंदा ने नेतृत्व विकास, सकारात्मक कार्य संस्कृति, प्रभाव संचार, व्यक्तिगत उत्कृष्टता और जैसे विषयों पर इंटेलेक्चुअल सेशन होस्ट किया। उन्होंने कहा, लगातार सीखने की प्रवृत्ति ही व्यक्ति संस्थान की प्रगति का आधार है। कार्यक्रम में रजिस्ट्रार भी उपस्थित रहे।

हिंदी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी भवन में पत्रकार की जिंदगी कलम और चाय पर केंद्रित सोलो ड्रामा खेला गया। पत्रकार की पीड़ा, संघर्ष और आत्मसम्मान को मंच पर जीवित कर देना ही इस प्रस्तुति का आयोजित कैलाश एंड प्रकाश राज वेलफेयर सोसाइटी की ओर से किया गया, जिसमें अभिनेता के रूप में मंच पर नजर आए वरिष्ठ रंगकर्मी भानु प्रकाश तिवारी। ये ड्रामा दिखाता है कि हम दूसरों का दर्द दिखाते रहे, अपना दर्द किसे दिखाएं। रात के आखिरी पहर में जब शहर सो जाता है, तब एक पत्रकार की आंखों में नींद नहीं, खबरें जागती हैं। कंधे पर कैमरा नहीं, जिम्मेदारी का बोझ होता है। हाथ में माइक नहीं, सच बोलने की अंतिम उम्मीद होती है। मेटाफर के माध्यम से बताया गया कि पत्रकार की जिंदगी कागज की नाव जैसी होती है।

हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हिंदी पत्रकारिता द्विशताब्दी महोत्सव आयोजित किया जाएगा आज। कार्यक्रम का आयोजन माधवराव सप्रेस प्रति समाचार पत्र संग्रहालय एवं शोध संस्थान में 10:30 से होगा। महोत्सव के तहत पुरखों को प्रणाम पोस्टर प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें हिंदी पत्रकारिता के इतिहास निर्माता पत्र पत्रिकाओं और युग निर्माता संपादकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस अवसर पर पीर पराई जानरे पुस्तक का विमोचन भी होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यपाल बंगूभाई पटेल, महापौर मालती राय के शामिल होने की पुष्टि की गई है। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ संपादक महेश श्रीवास्तव करेंगे। आयोजन समिति ने पत्रकारों, साहित्यकारों और नागरिकों को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। संस्कृति विभाग की मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा प्रख्यात शायर पद्मश्री बशीर बद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए गुरुवार को रविंद्र भवन के अगले अंजनी सभागार में संवाद एवं अखिल भारतीय मुशायरा आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम शाम 6 बजे शुरू होगा। प्रथम सत्र में बशीर बद्र के व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित संवाद होगा, जिसमें शायर प्रोफेसर वसीम बरेलवी, प्रख्यात फिल्म निर्देशक व संगीतकार विशाल भारद्वाज और गायिका रेखा भारद्वाज अपने विचार साझा करेंगे। इसके बाद शाम 7:30 से अखिल भारतीय मुशायरा सजेगा, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर वसीम बरेलवी करेंगे। इसमें देश के नामचीन शायर अपनी गजलों और नज्मों का पाठ करेंगे। उर्दू अकादमी की निदेशक डॉक्टर नुसरत मेहदी ने सभी साहित्य और कला प्रेमियों को इस गरिमामय कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दिया है।

विश्व पर्यावरण दिवस अभियान 2026 के तहत भोपाल रेल मंडल में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों की शुरुआत की गई है। इसी कड़ी में मंगलवार को भोपाल मंडल के विभिन्न रेलवे परिसर में विशेष स्वच्छता एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। अभियान के तहत पूर्वी रेलवे कॉलोनी में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें रेल कर्मचारियों और स्थानीय निवासियों ने मिलकर पूरे परिसर की व्यापक सफाई की।

हिप्पुल्स का रहस्य, ग्रीक नाविक और पुरानी नई दुनिया। पश्चिमी दुनिया की इतिहास की किताबों में हिप्पुल्स का नाम अक्सर कोलंबस या मैगेलन जैसी ही श्रद्धा के साथ दर्ज किया जाता है। ईसा पूर्व पहली शताब्दी के इस ग्रीक नाविक को एक ऐसी खोज का श्रेय दिया जाता है जिसने दुनिया बदल दी, मानसून की हवाओं का रहस्य। लेकिन यदि आप 2000 साल पीछे जा सकें और भारत या अरब के किसी बंदरगाह पर किसी नाविक के कान में उसका नाम फुसफुसाएं, तो वे शायद हंस पड़ेंगे, क्योंकि हिंद महासागर के लोगों के लिए हिप्पुल्स का यह रहस्य पिछली शताब्दियों से एक सामान्य जानकारी थी। लंबे समय तक भूमध्य सागरीय नाविक केवल तट के किनारे चलने वाले थे। वे गहरे खुले समुद्र से डरे हुए थे और हर समय तट रेखा को अपनी आंखों के सामने रखना पसंद करते थे, जिसे वे अरब प्रायद्वीप के किनारों पर धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ते थे। यह यात्रा लंबी, खतरनाक और समुद्री लुटेरों से भरी थी जो खाड़ियों में छिपे रहते थे। लेकिन फिर हिप्पुल्स आया। लगभग 100 ईसा पूर्व में उसने समुद्र की सांस के बारे में कुछ असाधारण महसूस किया। उसने देखा कि दुनिया के इस हिस्से में हवाएं बेतरतीब ढंग से नहीं चलती, वे एक पूर्वानु में मौसमी मशीन की तरह थीं। नवंबर से जनवरी तक उत्तर पूर्वी मानसून महाद्वीपीय एशिया से पूर्वी अफ्रीका की ओर शुष्क हवाएं चलाता है। अप्रैल से अगस्त तक यह प्रक्रिया उलट जाती है, क्योंकि दक्षिण पश्चिमी मानसून तेज हवाओं को वापस उत्तर की ओर धकेलता है। हिप्पुल्स की इस खोज ने ग्रीको रोमन जहाजों को तट से चिपके रहने के बजाय सीधे खुले अरब सागर के पार जाने की अनुमति दी। दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ अपने प्रस्थान का समय निर्धारित करके वे अपने जहाजों को लाल सागर से सीधे भारत के मसालों से समृद्ध बंदरगाहों जैसे मुजिरिस या बैरीगाजा तक पहुंचा सकते थे। इसने बैरेनिका बंदरगाह को एक फलते फूलते मरुस्थलीय एम्पोरियम में बदल दिया, जहां भारतीय काली मिर्च और रेशम के बदले रोमन सिक्कों का व्यापार होता था। इस समुद्री क्रांति को पहली शताब्दी ईस्वी के एक प्रसिद्ध दस्तावेज में दर्ज किया गया है, जिसे पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी कहा जाता है। एक अज्ञात यूनानी द्वारा लिखित यह दस्तावेज इस नए मार्ग के लिए एक व्यावहारिक नियमावली के रूप में कार्य करता है, जिसमें बंदरगाहों, सामानों और हवाओं के महत्वपूर्ण समय का विवरण दिया गया है। हिप्पुल्स का असली रहस्य परिप्रेक्ष्य का एक सबक है, जहां यूनानी इतिहासकारों ने उन्हें एक अग्रणी के रूप में सराहा, वहीं स्रोत बताते हैं कि हिंद महासागर के नाविकों ने यूनानियों के आने से कम 800 साल पहले ही इन मौसमी पैटर्नों में महारत हासिल कर ली थी। स्थानीय लोगों के लिए मानसून कोई खोज नहीं थी, वे ईश्वर की सांस थे जो जीवन, खेती और व्यापार की लय तय करते थे। हिप्पुल्स ने मानसून की खोज नहीं की, उसने बस उन लोगों की बात को अंततः सुना और समझा जो सहस्त्राब्दियों से उनका उपयोग कर रहे थे। उनकी कहानी उस क्षण का प्रतिनिधित्व करती है जब भूमध्य सागरीय दुनिया को आखिरकार एक विशाल, प्राचीन और अत्यधिक परिष्कृत एफ्रो एशियाई नेटवर्क को स्वीकार करने और उसमें शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो रोम के एक शहर बनने से बहुत पहले से फल फूल रहा था।

0: वामपम पवित्र प्रतीकों से लेकर साम्राज्य की मुद्रा तक। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में अमेरिकी पूर्वोत्तर के दलदली इलाकों और तटों पर एक अजीब गरीब बदलाव हो रहा था। यूरोपीय सिक्कों के आगमन से बहुत पहले इस क्षेत्र के मूल निवासी, जैसे मुंशी समूह क्वाहोग क्लैम के खोल से मोती बनाते थे। इन मोतियों को वामपम कहा जाता था। ये केवल सजावट की चीजें नहीं थीं, ये संधियों को दर्ज करने, कहानियां सुनाने और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए उपयोग की जाने वाली पवित्र वस्तुएं थीं। सबसे कीमती गहरे बैंगनी रंग के मोती होते थे, जिन्हें शंख के गहरे हिस्सों से तराशा जाता था। दिलचस्प बात यह है कि इन बैंगनी मोतियों का उत्पादन इंटरैक्टिव डोमेन्स यानी पारस्परिक प्रभुत्व का परिणाम था। पत्थर जैसे सख्त क्वाहोग हॉल को नाजुक बेलनाकार मोतियों में तराशने के लिए स्वदेशी कारीगरों को यूरोप से आपूर्ति किए गए धातु के ड्रिल की आवश्यकता थी, जो 1630 के दशक तक हडसन घाटी में आम नहीं हुए थे। इस तकनीकी संलयन ने लॉन्ग आइलैंड के तटीय क्षेत्रों को एक वास्तविक टकसाल में बदल दिया। 1640 के दशक तक डच और अंग्रेजी बसने वालों के लिए एक अजीब आर्थिक वास्तविकता बन गई थी। उपनिवेशों में सोने चांदी की कमी थी और फिर फर, जो कि पशुओं की खाल होती थी, का व्यापार धन का प्राथमिक इंजन था। बसने वालों और स्वदेशी समूहों के बीच व्यापार को सुगम बनाने के लिए वामपम पसंद की मुद्रा बन गया। ये वो पैसा था जिसने सीमावर्ती क्षेत्रों के व्यापार को गति दी, जिसका उपयोग वीवर की खाल से लेकर मक्के और यहाँ तक कि जमीन के विशाल टुकड़ों को खरीदने के लिए किया जाता था। हालांकि डच वेस्ट इंडिया कंपनी और स्वदेशी उत्पादक इस पैसे को दो पूरी तरह से अलग नजरियों से देखते थे। उनके लिए वामपम सामाजिक पारस्परिकता का हिस्सा था, एक उपहार जिसके बदले में दुनिया को संतुलन में रखने के लिए दूसरा उपहार दिया जाना चाहिए। उनके लिए ये वस्तु थी जिसे कर यानी टैक्स के दायरे में लाया और नियंत्रित किया जाना था। सितंबर 1639 में डच डायरेक्टर विलेम कीफ्ट ने नीति में एक कट्टरपंथी बदलाव का प्रयास किया। उन्होंने स्थानीय मुंशी समूहों पर सुरक्षा शुल्क लगा दिया और डच किलों की लागत वहन करने के लिए वामपम और वीवर की खाल के रूप में ट्रिब्यूट की मांग की। मुंशी इस बात से आक्रोशित थे। उन्होंने तर्क दिया कि उन्होंने डचों का स्वागत किया था, उनके संकट के समय उनकी देखभाल की थी और उन्हें अपनी जमीन पर मुफ्त में बसने की अनुमति दी थी। वामपम, जो संतुलन का प्रतीक था, उसे अनचाही सुरक्षा के लिए टैक्स के रूप में मांगना सामाजिक पारस्परिकता की विफलता थी। वामपम के आध्यात्मिक और राजनीतिक मूल्य की यही मौलिक गलतफहमी 1640 में प्रथम डच मुंशी युद्ध का प्राथमिक कारण बनी। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ा, लॉन्ग आइलैंड के वामपम उत्पादक एक दुखद बंधन में फंस गए। यूरोपीय बाजार अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से एकीकृत होने के कारण उन्हें केवल अपनी जमीन और मोती बनाने के लिए आवश्यक धातु के औजारों तक पहुंच बनाए रखने के लिए डचों को शांति और सैन्य सहायता का वचन देने के लिए मजबूर होना पड़ा। 17वीं शताब्दी के मध्य तक जंगल के वे आध्यात्मिक मोतीशाही अधीनता के हथियार बन चुके थे, जो उन लोगों की बेदखली का रास्ता तय कर रहे थे जिन्होंने उन्हें बनाया था। वामपम उस समय के एक डरावने अवशेष के रूप में आज भी मौजूद हैं, जब पवित्र प्रतीकों को साम्राज्य की ठंडी मुद्रा के रूप में पुनर्गठित किया गया था।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन महाकाव्यों का गुच्छा। इस गुच्छे में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा गुलदस्ता जिसकी हर पंखुड़ी चमकदार है, हर रंग सूर्य सा उजला है और हर सुगंध संघर्ष से भरी हुई है। श्रोताओं, पिछले अंश में हमने एक ऐसे क्षण को देखा जहां इतिहास जैसे थम सा गया था और समय स्वयं कर्ण की परीक्षा लेने को ठहर गया था। एक ओर राज्यसभा की मर्यादाएं थी, दूसरी ओर एक तेजस्वी आत्मा जो अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए उद्यत थी। जब कर्ण ने धनुष उठाया तो वो केवल एक वीर का साहस नहीं था, वो उस अग्नि का प्रज्वलन था जो वर्षों से उपेक्षा और अपमान की राख में दबकर धधक रही थी। उसकी टंकार में केवल रण की चुनौती नहीं थी बल्कि समाज के कठोर नियमों को प्रश्न करने का साहस भी था। परंतु श्रोताओं, ये कैसी विडंबना, जहां पराक्रम को प्रणाम होना चाहिए था वहां वंश का लेखा मांगा गया, जहां भुजबल की परीक्षा होनी थी वहां जन्म का तराजू रख दिया गया। कर्ण खड़ा था अडिग अचल, पर भीतर कहीं एक मौन वेदना लहरों की तरह उठ रही थी।
2: हाँ श्रोताओं, उस सभा में जो घटित हुआ वह केवल एक वीर का अपमान नहीं था, वह मानवीय गरिमा पर लगा हुआ प्रश्न चिन्ह था। जब कर्ण से उसकी जाति पूछी गई तब जैसे उसकी आत्मा क्षण भर के लिए कांप उठी, पर अगले ही पल वह सत्य बनकर मुखर हो गई। उसकी वाणी में ज्वाला थी, पर वह ज्वाला विनाश की नहीं स्वाभिमान की थी। उसने घोषणा की कि उसका परिचय उसके कर्म है, उसकी शक्ति है, उसका तेज है। पर सत्य का प्रकाश अक्सर आंखों को चुभता है और वही प्रकाश उस सभा को भी असहज कर गया। कर्ण उस समय केवल एक योद्धा नहीं था, वह हर उस हृदय की आवाज बन गया था जो उपेक्षा के अंधकार में भी अपने अस्तित्व की लौ जलाए रखता है।
1: और फिर जब अन्याय अपनी सीमा लांघ जाता है, जब मौन भी अपराध प्रतीत होने लगता है, तब कहीं से एक स्वर उठता है। ये स्वर केवल समर्थन का नहीं, ये नियति के नए अध्याय का उद्घोष है। यही वो क्षण है जहां कर्ण के जीवन की दिशा बदलने को है, जहां अपमान की अग्नि में तपकर उसका व्यक्तित्व और अधिक दीप्त होने वाला है। अब वो केवल अपनी पहचान नहीं खोजेगा बल्कि उसे संसार के समक्ष स्थापित करेगा।
2: श्रोताओं, कथा अब उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां संबंधों के बीज अंकुरित होते हैं, जहां मित्रता केवल भाव नहीं बल्कि इतिहास रचने वाली शक्ति बन जाती है, जहां एक हाथ बढ़ता है सम्मान देने के लिए और दूसरा हाथ उसे थाम लेता है अपने अस्तित्व को स्वीकारने के लिए। अब कथा में करुणा भी है, तेज भी है, संघर्ष भी है और एक नए भविष्य की आहट भी। तो आइए श्रोताओं, हम प्रवेश करते हैं उसी भाव संसार में जहां अपमान से जन्म लेता है स्वाभिमान और संघर्ष से उदित होता है उज्जवल व्यक्तित्व। आइए अब बढ़ते हैं रश्मि रथी के प्रथम सर्ग के भाग 5, 6 और 7 की ओर, जहां कर्ण का तेज और भी प्रखर होकर हमारे समक्ष आलोकित होता है। आइए सुनते हैं प्रथम सर्ग के भाग 5 का काव्य पाठ, जहां सुयोधन कह रहे हैं, करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ।
1: रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजा रंग भूमि में दुर्योधन का जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, बंधु हो शांत, मेरे इस शुद्रोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज यदि तुझको, अरे धन्य हो जाएं प्राण, तू ग्रहण करे यदि मुझको।
3: कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह। वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो देह। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, उरण भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम। कृपा करें दिन मान कि आऊं तेरे कोई काम, कृपा करें दिन मान कि आऊं तेरे कोई काम।
1: घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, होते ही हैं लोग शूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान।
2: श्रोताओं, यहीं से कुछ प्रश्न ऐसे जन्म लेते हैं जो केवल कथा से नहीं हमारी अंतरात्मा से पूछे जाते हैं। क्या सम्मान का ऋण कभी विवेक से बड़ा हो जाना चाहिए? क्या मित्रता सत्य से ऊपर हो सकती है? और क्या न्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस हम तभी दिखाते हैं जब उससे हमें कोई लाभ मिलने की संभावना हो? हमारे लोक में कहा गया है, सत्य सदा अकेला चलता है पर अंततः वही पथ बनाता है। रश्मिरथी हमें इसी सत्य के प्रति सचेत करती है। कर्ण आज भी जीवित है, कभी किसी दफ्तर के कोने में बैठा हुआ, कभी किसी गांव की धूल भरी पगडंडी पर संघर्ष करता हुआ, कभी किसी विश्वविद्यालय के दरवाजे पर अवसर की प्रतीक्षा में खड़ा हुआ। और दुर्योधन भी आज हमारे ही बीच में है, जो मान देता है, पहचान देता है और उस मान की कीमत भविष्य में चुकवाता है। तभी तो किसी कवि ने कहा है, उपकार जो बंधन बन जाए वह उपकार नहीं व्यापार है। श्रोताओं, हर प्रकाश अपने साथ एक छाया भी लेकर आता है। यह सम्मान जितना उज्ज्वल था उतना ही गहन उसके भीतर छिपा हुआ बंधन भी था। कर्ण की कृतज्ञता उस क्षण स्वाभाविक थी, पर यही कृतज्ञता आगे चलकर उसके निर्णयों की दिशा भी निर्धारित करेगी। यही वह बिंदु है जहां मनुष्य का हृदय और उसका विवेक एक सूक्ष्म द्वंद में प्रवेश करते हैं।
1: मनुष्य का हृदय बड़ा सरल होता है, जहां उसे पहली बार मान मिलता है वहां वो स्वयं को अर्पित कर देता है। कर्ण भी उसी सहज भाव में बह गया। उसने दुर्योधन को केवल मित्र नहीं अपना जीवन ऋण मान लिया। परंतु इतिहास गवाह है, कभी कभी उपकार का ये ऋण इतना गहरा हो जाता है कि वो मनुष्य के निर्णयों पर अधिकार कर लेता है। श्रोताओं, यही वो बिंदु है जहां रश्मिरथी हमें भीतर तक झकझोर देती है। वो पूछती है कि क्या हर उपकार निस्वार्थ होता है, क्या हर सम्मान स्वतंत्रता देता है, या कभी कभी वो एक अदृश्य बंधन भी बन जाता है। कर्ण आज भी हमारे बीच जीवित है, हर उस व्यक्ति में जिसे देर से ही सही पर उसका अधिकार मिला, हर उस हृदय में जो कृतज्ञता और सत्य के बीच संतुलन साधने का प्रयास करता है। और दुर्योधन भी हमारे समय में उपस्थित है, कभी अवसर बनकर, कभी सहारा बनकर, और कभी एक ऐसे संबंध के रूप में जिसकी कीमत समय के साथ समझ आती है।
2: इसी गहन द्वंद के साथ आइए अब हम रश्मिरथी के उस अगले पड़ाव की ओर अग्रसर होते हैं, जहां प्रत्येक चरण केवल गति नहीं नियति का स्पर्श है, जहां उठाया गया हर कदम काल के पटल पर अमिट रेखा बन जाता है और मनुष्य का निर्णय स्वयं इतिहास का विधान बनकर प्रतिष्ठित हो उठता है। ये यात्रा अब और गहरी होने वाली है, जहां मित्रता की ऊष्मा भी है और उसके भीतर छिपी हुई कसौटी भी, जहां सम्मान का उजाला है और उसके साथ चलती हुई एक लंबी छाया भी। आइए सुनते हैं प्रथम सर्ग के भाग 6 को।
1: लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंग भूमि भर गई चतुर्दिक पुलका कुल कल कल से। विनय पूर्ण प्रतिवंदन में जो झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके। है कि झाड़े पूछ आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा, भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का विष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्जवल चरित्र है नहीं वंश धन धान। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, तुम ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य ये खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सूझता सच है अपना भाल। कृपाचार्य आ पड़े बीच में, बोले छी ये क्या है, तुम लोगों में बची नाम को भी क्या नहीं हया है। चलो चले घर को, देखो होने को आई शाम, थके हुए होगे तुम सब, चाहिए तुम्हें आराम। रंग भूमि से चले सभी पुरवासी मोद मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरुद्रोण, कहते हुए पार्थ पहुंचा ये राहु नया फिर कौन।
2: दिनकर जी के शब्दों की चेतना में कर्ण से मानो स्वयं काव्य बोल उठता है। तुम सूर्य के अंश हो, इसलिए तुम्हारा तेज स्वभाव से तुम्हारे साथ है, पर यह तेज किसी एक छाया का पक्ष नहीं करता, वह सबको आलोकित करने के लिए है। सम्मान जब निशर्त मिले तब वह प्रसाद बनता है, और जब शर्तों के साथ आए तो वही सम्मान परीक्षा का रूप धर लेता है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर यहां ये स्मरण कराते हैं कि कर्ण से प्रश्न समाज नहीं स्वयं धर्म कर रहा है, कि वह अपने तेज से पथ रचेगा या किसी और की राह का दीप बनकर रह जाएगा। क्योंकि मित्रता मधुर हो सकती है, पर सत्य उससे भी अधिक गहन है, और अंततः वही मनुष्य का अपना होता है जो उसे सही दिशा देता है।
1: समय के रथ पर सवार कर्ण अपने जीवन के उस कठिन चक्र से गुजर रहा है जहां सम्मान और परीक्षा एक साथ सामने खड़ी हैं। ये केवल एक योद्धा की घड़ी नहीं, बल्कि एक मनुष्य की आत्म परीक्षा का क्षण है, जहां तेज विवेक से टकराता है और जहां हर चयन इतिहास में बदल जाने को आतुर है। आइए श्रोताओं, अब हम पहुंचते हैं रश्मिरथी के प्रथम सर्ग के अंतिम पड़ाव पर, जहां गुरु का भय, मित्रता का आलिंगन, सूर्य का स्नेह और मां की मौन वेदना सब समाहित है, जहां भविष्य की रेखाएं और गहरी हो जाती हैं। आइए सुनते हैं प्रथम सर्ग के भाग सात का काव्य पाठ। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एक लव्य से लिया अंगूठा कढ़ी नमुक से आह, रखा चाहता हूं निष्कंटक बेटा तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक ये युद्ध भट भट बाल, अर्जुन तेरे लिए कभी यह हो सकता है काल। सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा, इस प्रचंडतम धूम केतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा ना कर्ण को ये निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का पर तू भी है तात। रंग भूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज बनाते। कंचन के युग शैल शिखर सम सुगठित सुघर सुवर्ण, गलबाही दे चले परस्पर दुर्योधन औकर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से, चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर, गति को छोड़ विमान। और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकला मसोस्ती मन को। उजड़ गए हो स्वप्न के जैसे, हार गई हो दांव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव।
2: श्रोताओं, अब कथा उस संध्या क्षण में प्रवेश करती है जहां दिन का उजास धीरे धीरे ढल रहा है, पर घटनाओं का ताप और भी प्रखर होता जा रहा है। आचार्य द्रोण के मन में उठता हुआ यह संशय केवल एक गुरु की चिंता नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की घबराहट है जो अपने स्थापित संतुलन को टूटता हुआ देख रही है। अर्जुन, जिसे अब तक अद्वितीय माना गया, जिसकी राह को निष्कंटक बनाने के लिए एकलव्य का अंगूठा तक ले लिया गया, आज पहली बार एक ऐसे प्रतिद्वंदी के सम्मुख खड़ा है जो न केवल उसके समकक्ष है बल्कि कहीं ना कहीं उससे आगे निकलने की क्षमता भी रखता है।
1: कर्ण अब केवल एक नाम नहीं रहा, वो एक संभावना बन चुका है, एक ऐसा धूमकेतु जिसकी आभा को देखकर स्वयं गुरुओं का धैर्य डगमगाने लगता है। ये वही क्षण है जहां प्रतिभा और व्यवस्था के बीच एक अदृश्य संघर्ष प्रारंभ होता है, एक ऐसा संघर्ष जो आगे चलकर इतिहास की दिशा को मोड़ देगा।
2: कर्ण और दुर्योधन, दो शरीर पर एक संकल्प गलबाही डाले जिस प्रकार रंगभूमि से निकलते हैं, वह केवल मित्रता का दृश्य नहीं बल्कि एक ऐसे संबंध का आरंभ है जो समय की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला है। परंतु हर उत्सव के पीछे एक मौन पीड़ा भी छिपी होती है। जब समस्त सभा आनंद में डूबी हो, तब एक हृदय ऐसा भी है जो इस दृश्य को देखकर भीतर ही भीतर कहीं टूट रहा है, और वो है कुंती का हृदय।
1: ये मौन केवल एक स्त्री का मौन नहीं, ये उस सत्य का मौन है जो समय से पहले उजागर नहीं हो सकता। ये उस पीड़ा का मौन है जिसमें स्वप्न बिखर जाते हैं और हृदय स्वयं को ही समझाने में असमर्थ हो जाता है। सूर्य भी जैसे इस दृश्य का साक्षी बनकर ठहर जाता है, अपने पुत्र को स्नेहिल किरणों से स्पर्श करता हुआ मानो उसे आशीष दे रहा हो। प्रकृति भी इस क्षण में सहभागी है, क्योंकि ये केवल एक घटना नहीं, ये नियति का गहन संकेत है।
2: आने वाले क्षणों में यह तेजस्वी पुरुष केवल रणभूमि में ही नहीं, अपने भीतर भी अनेक युद्ध लड़ेगा, जहां दानवीरता उसकी पहचान होगी और दुविधा उसकी परीक्षा। प्रथम सर्ग की समाप्ति पर दिनकर जी के शब्दों को शीश नवाकर प्रतीत होता है कि कर्ण का रथ अब पूर्ण वेग से काल की दिशा में बढ़ चला है। अपमान की धधकती भट्टी में तपकर उसका पुरुषार्थ कुंदन हुआ है, और मित्रता की सौगंध ने उसके जीवन को रण पथ से बांध दिया है। आगे जो आने वाला है वह केवल युद्ध नहीं, वह धर्म, दुविधा और दानवीरता का महासंग्राम है। सूर्यपुत्र कर्ण अब कथा नहीं रहा, वह इतिहास की छाती पर उगता हुआ वह तेज है जो रक्त से लिखे भविष्य को और भी उजास देना चाहता है।
1: दोस्तों, अब समय है आप सभी से अनुमति लेने का। रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर जी का वो विराट काव्य वृक्ष है जिसकी जड़ें भारतीय चेतना में गहराई तक फैली हैं और जिसकी प्रत्येक शाखा मनुष्य, धर्म और वीरता के किसी नए सत्य को प्रकट करती है। प्रथम सर्ग उस वृक्ष की केवल एक सशक्त शाखा है, आगे द्वितीय सर्ग में ये काव्य और भी गहन छाया और भी प्रखर तेज के साथ हमारे सामने उपस्थित होगा। उसी आशा और प्रतीक्षा के साथ हम पुनः काव्य पाठ लेकर आपके बीच लौटेंगे।
2: इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित गुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, रेडियो प्रस्तुति लेखन दीपक नेमा का। इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा यहीं पर विराम लेती है। आपके साथ हम थे, मैं भगवती सक्सेना,
1: मैं संदीप शर्मा,
3: मैं दीपक नेमा।
2: तो श्रोताओं, इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा यहीं पर विराम लेती है। फिर मिलेंगे एक नए अंक में, तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा, नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM, देश का चैनल देश के लिए। नमस्कार, मैं हूं वर्षा सिंह।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक।
0: प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक।
1: दोस्तों, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपके लिए लेकर आता है उन महान व्यक्तित्वों की कहानियां जिन्होंने भारत का नाम विश्व में रोशन किया। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे महान गणितज्ञ की अद्भुत जीवन गाथा जिन्होंने गणित के सबसे कठिन क्षेत्रों में अपना परचम लहराया। आज हम बात करेंगे प्रोफेसर श्रीराम शंकर अभ्यंकर की, एक ऐसे व्यक्ति की जिनका नाम बीजगणितीय ज्यामिति के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है।
0: ये कहानी है समर्पण की, कठिन परिश्रम की और अपनी जड़ों से जुड़े रहने की। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने अमेरिका में रहते हुए भी अपनी भारतीयता को कभी नहीं भुलाया। तो आइए शुरू करते हैं ये यात्रा बचपन से लेकर उनके जीवन के अंतिम क्षणों तक, और साथ में जानेंगे उनके परिवार, उनके छात्रों और उनके सहयोगियों के अनुभव।
1: तारीख थी 22 जुलाई 1930, ग्रीष्मकाल की एक गर्म सुबह, मध्य प्रदेश का प्राचीन शहर उज्जैन, वही पवित्र नगरी जहां महाकवि कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी। उज्जैन जो सदियों से भारतीय गणित, ज्योतिष और विज्ञान का केंद्र रहा है, यहीं एक साधारण परिवार में जन्म हुआ एक असाधारण प्रतिभा का, श्री राम शंकर अभ्यंकर। उनके पिता शंकर केशव अभ्यंकर एक सरकारी सेवक थे, माता एक पारंपरिक भारतीय गृहिणी थी जो संस्कार, शिक्षा और धर्म में गहरी आस्था रखती थीं।
0: घर का वातावरण बहुत शिक्षा प्रद था। शाम को संस्कृत के श्लोक, सुबह वेदों का पाठ और बच्चों के लिए शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता, यही वो माहौल था जिसमें श्रीराम का पालन पोषण हुआ। बचपन से ही श्रीराम में कुछ अलग था। जब गली के अन्य बच्चे गुल्ली डंडा खेलने में व्यस्त रहते, तब छोटा श्रीराम घर के एक कोने में बैठा संख्याओं के साथ खेल रहा होता। उनकी माता को याद था कि जब श्रीराम महज 5-6 साल के थे, तब वे रेत पर अंक बनाते और उन्हें जोड़ते घटाते रहते। ये कोई साधारण बच्चा नहीं था।
1: उज्जैन के स्थानीय विद्यालय में जब श्रीराम ने प्रवेश लिया तो शिक्षकों ने बहुत जल्दी उनकी असाधारण प्रतिभा को पहचान लिया। उनके गणित के शिक्षक पंडित

0: मनोहर देसाई ने बाद में याद करते हुए कहा था, श्री राम हमेशा से अलग था। जब हम क्रिकेट खेलते तो वो किताबों में खोया रहता, लेकिन वो कभी यह नहीं दिखाता कि वो हमसे ज्यादा होशियार है। बहुत विनम्र था। विनम्रता ये गुण उनके साथ जीवन भर रहा। चाहे वे कितने भी बड़े गणितज्ञ बन गए, लेकिन उनमें घमंड का लेश भी नहीं था। श्री राम की शिक्षा में संस्कृत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। उनके पिता चाहते थे कि बच्चे अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहें।
1: हर शाम खाना खाने के बाद परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठते और संस्कृत के श्लोक पढ़ते। पाणिनि का व्याकरण, वेदों के मंत्र, ये सब श्री राम के जीवन का हिस्सा था और यहीं से शुरू हुआ उनका संस्कृत से गहरा प्रेम। उन्होंने पाणिनि के व्याकरण में एक गणितीय संरचना देखी। बाद में जब वे विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ बन गए, तब भी वे कहते थे, संस्कृत गणित की भाषा है। इसकी संरचना पूरी तरह तार्किक और गणितीय है। यह दृष्टिकोण उन्हें अन्य गणितज्ञों से अलग बनाता था। वे प्राचीन भारतीय ज्ञान को आधुनिक गणित से जोड़ने में विश्वास रखते थे।
0: 1940 के दशक का भारत, देश स्वतंत्रता संग्राम से गुजर रहा था। गांधी जी का नाम हर घर में गूंज रहा था, लेकिन किशोर श्रीराम का मन किसी और दुनिया में था, गणित की दुनिया में। उनके कमरे में यूक्लिड, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त की किताबें सजी रहती। उनके पिता चाहते थे कि श्रीराम आईएएस बने, सरकारी सेवा में जाएं। ये उस समय का सबसे प्रतिष्ठित करियर था, लेकिन श्रीराम के सपने अलग थे। एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं गणितज्ञ बनना चाहता हूँ, मुझे संख्याओं और समीकरणों से प्यार है, मैं इसी में अपना जीवन लगाना चाहता हूँ। पिता पहले तो चिंतित हुए, गणित में क्या भविष्य है, लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे की आंखों में जुनून देखा तो वे समझ गए कि ये साधारण इच्छा नहीं है।
1: और इस तरह एक पिता ने अपने बेटे के सपने को पंख दिया। ये निर्णय श्री राम के जीवन को बदल देने वाला था। 1947 वो साल जब भारत आजाद हुआ, और वही साल था जब 17 वर्षीय श्री राम ने उज्जैन छोड़ा और बॉम्बे यानी कि मुंबई की ओर रुख किया। बॉम्बे सपनों का शहर, अवसरों का शहर। बॉम्बे विश्वविद्यालय में उनका दाखिला हो गया था। पहली बार घर से दूर एक नए शहर में, नए लोगों के बीच, लेकिन श्री राम डरे नहीं। उनके साथ था उनका जुनून, गणित का जुनून। बॉम्बे विश्वविद्यालय में उन्हें मिले कुछ उत्कृष्ट प्राध्यापक, प्रोफेसर वी नरलिकर, प्रोफेसर डी कोसंबी, ये वो नाम थे जिन्होंने श्री राम की प्रतिभा को और निखारा।
0: कॉलेज के दिनों में श्री राम का एक ही रूटीन था, सुबह कक्षाएं, दोपहर को पुस्तकालय, शाम को समस्याएं हल करना और रात को अध्ययन। उनके सहपाठी अक्सर मजाक में कहते थे, श्री राम तुम मनुष्य हो या मशीन, कभी तो आराम करो। और उनका जवाब था, गणित करना ही मेरा आराम है, जब मैं समीकरण हल करता हूँ तो मुझे शांति मिलती है। और ये सच था, गणित उनके लिए बोझ नहीं बल्कि आनंद था। यही जुनून उन्हें महानता की ओर ले जा रहा था। 1951 श्री राम ने बॉम्बे विश्वविद्यालय से गणित में बीएससी की डिग्री प्राप्त की, और वो भी प्रथम श्रेणी में सर्वोच्च अंकों के साथ। उनके प्राध्यापक उनकी प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे। प्रोफेसर नीलिकर ने उन्हें बुलाया और कहा, श्रीराम तुम्हारी प्रतिभा भारत में सीमित नहीं रह सकती, तुम्हें विदेश जाना चाहिए, वहां के महान गणितज्ञों से सीखना चाहिए।
1: विदेश, ये शब्द सुनते ही श्री राम के मन में हजारों सवाल उठे। क्या वे भारत छोड़ सकते हैं? क्या वे अपने परिवार से दूर रह सकते हैं? लेकिन फिर उन्होंने सोचा, ये भागना नहीं है, ये सीखने जाना है, ताकि एक दिन वे भारत लौट सकें और यहां के युवाओं को प्रेरित कर सकें। और इस तरह शुरू हुई अमेरिका जाने की तैयारी। परीक्षाएं, आवेदन पत्र, छात्रवृत्ति के लिए प्रयास, सब कुछ एक साथ। और फिर एक दिन वो पत्र आया, हॉवर्ड विश्वविद्यालय से स्वीकृति पत्र। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक, श्री राम और उनके परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन साथ ही एक दुख भी था, अलग होने का दुख। प्रस्थान का दिन आ गया। 1951 की एक सर्द सुबह घर में सन्नाटा था, लेकिन हर किसी की आंखों में आंसू थे। मां ने श्री राम के माथे पर तिलक लगाया, उनके सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया, बेटा जा, जाकर नाम कमा, लेकिन कभी अपनी जड़ों को मत भूलना, तू भारत का बेटा है, ये हमेशा याद रखना। श्री राम ने मां के पैर छुए, पिता ने उन्हें गले लगाया और फिर वे निकल पड़े एक नई दुनिया की ओर, नए सपनों की ओर। जहाज में बैठकर जब उन्होंने भारत की तरफ आखिरी बार देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में दृढ़ संकल्प था, मैं वापस लौटूंगा, लेकिन एक महान गणितज्ञ बनकर मैं अपने देश का नाम रोशन करूंगा। बोस्टन हवाई अड्डा, ठंडी हवा, अजनबी चेहरे, अलग भाषा, श्री राम के लिए सब कुछ नया था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय, दुनिया का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, विशाल इमारतें, विशाल पुस्तकालय और हर तरफ विद्वानों का जमघट। पहले दिन जब श्री राम गणित विभाग पहुंचे तो उनका परिचय हुआ प्रोफेसर ऑस्कर जारेंस्की से, बीजगणितीय ज्यामिति के पितामह। प्रोफेसर जारेंस्की ने श्री राम को देखा, उनकी आंखों में झांका और मुस्कुराते हुए कहा, सो यू आर फ्रॉम इंडिया, द लैंड ऑफ रामानुजन, लेट्स सी व्हाट यू कैन डू।
0: ये चुनौती थी और श्री राम ने इसे स्वीकार किया। उन्होंने ठान लिया कि वे रामानुजन की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। हार्वर्ड में जीवन आसान नहीं था, अलग देश, अलग संस्कृति, कड़ाके की ठंड, सब कुछ चुनौतीपूर्ण था। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी गणित का वो स्तर जो यहाँ अपेक्षित था। हार्वर्ड में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ छात्र आते थे, लेकिन श्रीराम ने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत, पुस्तकालय में घंटों अध्ययन और प्रोफेसर जोरिस्की के कठिन प्रश्नों का सामना। प्रोफेसर जोरिस्की और श्रीराम के बीच एक विशेष रिश्ता विकसित हुआ। ये सिर्फ शिक्षक छात्र का रिश्ता नहीं था, बल्कि गुरु शिष्य की प्राचीन भारतीय परंपरा थी। जोरिस्की ने श्रीराम की प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने देखा कि ये युवा भारतीय कुछ अलग है, उनकी सोच मौलिक है, उनका दृष्टिकोण नवीन है। एक दिन जोरिस्की ने श्रीराम को अपने कार्यालय में बुलाया और कहा, श्रीराम, आई हैव अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम फॉर यू, इट्स अबाउट रेजोल्यूशन ऑफ सिंगुलरिटीज, मैनी हैव ट्राइड, मैनी हैव फेल्ड, डू यू वांट टू ट्राई। श्रीराम ने कहा, प्रोफेसर, आई एम रेडी, इवन इफ आई फेल आई विल लर्न समथिंग।
1: और इस तरह शुरू हुआ उनका शोध कार्य, एक ऐसी समस्या पर जो गणित जगत को दशकों से परेशान कर रही थी। अगले 3 साल श्री राम ने दिन रात इसी समस्या पर काम किया। कई बार असफल हुए, कई बार निराश हुए, लेकिन हर बार जारेंस्की उन्हें प्रोत्साहित करते, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, ग्रेट डिस्कवरीज कम आफ्टर ग्रेट फेलियर्स। ये सबक श्री राम ने जीवन भर याद रखा और बाद में अपने छात्रों को भी यही सिखाया। 1955 की वसंत ऋतु, श्री राम ने अपना शोध प्रबंध पूरा किया, लोकल यूनिफॉर्माइजेशन ऑन अलजेब्रिक सरफेसेस ओवर मॉड्यूलर फील्ड्स। ये कोई साधारण शोध नहीं था, ये बीजगणितीय ज्यामिति में एक महत्वपूर्ण योगदान था। जब उन्होंने अपने शोध प्रबंध की रक्षा की तो कमरे में उपस्थित सभी प्रोफेसर आश्चर्यचकित रह गए। परीक्षक समिति के एक सदस्य ने कहा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट डिसर्टेशन आई हैव सीन इन माय 30 years एट हार्वर्ड, यंग मैन, यू हैव अ ग्रेट फ्यूचर अहेड।
0: प्रोफेसर जारेस्की की आंखों में गर्व के आंसू थे, उनका शिष्य सफल हो गया था और इस तरह मात्र 25 वर्ष की आयु में श्री राम शंकर अभ्यंकर ने हार्वर्ड से PhD की उपाधि प्राप्त की। वो सिर्फ एक डिग्री नहीं थी, ये एक भारतीय युवा की विश्व मंच पर पहली विजय थी। और अब शुरू होती है एक प्रेम कहानी। 1955 की गर्मियों में एक शैक्षणिक सम्मेलन में श्रीराम की मुलाकात हुई यवोन से। यवोन एक बुद्धिमान और शिक्षित युवती थी। गणित में उनकी रुचि नहीं थी, लेकिन विज्ञान और साहित्य में गहरी रुचि थी। पहली मुलाकात में ही दोनों को एहसास हो गया कि ये कुछ खास है। श्रीराम को यवोन की बुद्धिमत्ता आकर्षित करती थी और यवोन को श्रीराम का समर्पण और विनम्रता। बाद में यवोन ने एक साक्षात्कार में बताया था, When I was first met श्रीराम, I was struck by his intensity. He talked about mathematics with such passion as if it was poetry. I had never met anyone like him. कुछ महीनों की मुलाकात के बाद श्रीराम ने यवोन से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने ईमानदारी से कहा, यवोन, I must be honest with you. Mathematics is my first love. If you marry me, you will have to share me with mathematics. यवोन ने कहा, I know श्रीराम and I am ready for that. I have never seen anyone love their work as much as you do. It's beautiful.
1: 1956 में श्रीराम और यवोन ने विवाह कर लिया। एक साधारण लेकिन सुंदर समारोह, कुछ मित्र, कुछ सहकर्मी और ढेर सारा प्यार। भारत से श्री राम के माता पिता नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने आशीर्वाद भेजा। माँ ने एक पत्र लिखा था, बेटा बहुत खुशी हुई तेरे विवाह का समाचार सुनकर। यवोन को हमारा आशीर्वाद, उसे बता देना कि भारतीय परिवार में बहू का बहुत सम्मान होता है। यवोन ने भारतीय संस्कृति को खुले दिल से अपनाया। उन्होंने हिंदी सीखने की कोशिश की, भारतीय खाना बनाना सीखा। विवाह के बाद जीवन एक नई दिशा में मुड़ गया। श्रीराम अब कॉर्नेल विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे। घर की जिम्मेदारियां, पढ़ाने की जिम्मेदारियां और शोध का काम, सब कुछ एक साथ। लेकिन यवोन ने पूरा साथ दिया। यवोन ने बाद में एक साक्षात्कार में कहा था, मैंने बहुत जल्द समझ लिया था कि श्रीराम के काम में बाधा बनना संभव नहीं है, इसलिए मैंने उनका सहयोगी बनने का निर्णय लिया। मैं उनके पेपर टाइप करती थी, उनके छात्रों के लिए घर पर चाय कॉफी की व्यवस्था करती थी।
0: 1958 में उनकी पहली संतान हुई, बेटी किरण। श्रीराम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पहली बार जब उन्होंने अपनी बेटी को गोद में लिया तो उनकी आंखों में आंसू थे। उस दिन मैंने श्रीराम को पहली बार इतना भावुक देखा। वे किरण को गोद में लेकर घंटों बैठे रहे। उन्होंने कहा, अब मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। फिर 1960 में बेटे केतन का जन्म हुआ और 1963 में छोटे बेटे अरुण का। घर अब बच्चों की किलकारियों से गूंजने लगा था, लेकिन श्रीराम का शेड्यूल नहीं बदला। सुबह जल्दी उठना, फिर विश्वविद्यालय जाना, शाम को वापस आकर बच्चे के साथ थोड़ा समय और फिर रात को शोध का काम। किरण अभ्यंकर, जो अब एक सफल पेशेवर हैं, याद करती हैं, पिताजी के साथ बड़े होना एक अनोखा अनुभव था। हमारा घर एक साधारण घर नहीं था। हमारे कमरे में किताबें थीं, दीवारों पर गणितीय सूत्र लिखे होते थे। पिताजी का अध्ययन कक्ष हमारे लिए एक रहस्यमय जगह थी।
1: 1963 श्री राम के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़। विस्कॉन्सिन मेडिसन विश्वविद्यालय से उन्हें प्रोफेसर बनने का प्रस्ताव मिला। यह कोई साधारण प्रस्ताव नहीं था। विस्कॉन्सिन का गणित विभाग अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ विभागों में से एक था। परिवार के साथ मेडिसन शहर पहुंचे। सुंदर झीलों वाला शहर, शांत वातावरण और एक जीवंत विश्वविद्यालय। यहीं श्री राम ने अपना सबसे महत्वपूर्ण काम किया। यहीं वे एक महान शिक्षक बने और यहीं उन्होंने जीवन के अंतिम दिन बिताए। विस्कॉन्सिन में उनके पहले दिन विभाग के अध्यक्ष ने कहा था, प्रोफेसर अभ्यंकर, वी आर ऑनर्ड टू हैव यू हियर। योर वर्क ऑन रेजोल्यूशन ऑफ सिंगुलरिटीज इज ऑलरेडी लीजेंडरी। वी लुक फॉरवर्ड टू योर कॉन्ट्रीब्यूशन। और श्री राम ने निराश नहीं किया। अगले 50 वर्षों में उन्होंने विस्कॉन्सिन को बीजगणितीय ज्यामिति का एक वैश्विक केंद्र बना दिया।
0: 1965 में श्रीराम के पास उनका पहला पीएचडी छात्र आया, बाल्टिक करासलर, एक युवा प्रतिभाशाली लेकिन डरा हुआ छात्र। बाल्टिक याद करते हैं वो पहली मुलाकात, मैं बहुत घबराया हुआ था, प्रोफेसर अभ्यंकर की प्रतिष्ठा पहले ही बहुत थी। जब मैं उनके कार्यालय में गया तो वे एक बोर्ड पर समीकरण लिख रहे थे। उन्होंने मुड़कर देखा और पूछा, क्या तुम वाकई में गणितज्ञ बनना चाहते हो या सिर्फ डिग्री चाहिए? मैं सकते में आ गया। मैंने कहा कि मैं वाकई गणितज्ञ बनना चाहता हूँ। तो फिर तैयार रहो, ये यात्रा आसान नहीं होगी, तुम्हें कई बार असफल होना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम डटे रहे तो तुम सफल होगे। ये था प्रोफेसर अभ्यंकर का तरीका, बिल्कुल ईमानदार, बिल्कुल सीधा, कोई झूठी उम्मीदें नहीं, सिर्फ कड़ी मेहनत का वादा।
1: एक अन्य छात्रा ने कहा, पहले दिन मैं सोच रही थी कि मैंने गलत कक्षा में दाखिला ले लिया है, प्रोफेसर अभ्यंकर ने जो समीकरण बोर्ड पर लिखे वे मेरी समझ से परे थे, लेकिन धीरे धीरे समझ आने लगा। प्रोफेसर अभ्यंकर कभी नहीं बैठते थे, 3 घंटे की कक्षा में वे लगातार खड़े रहते, चलते फिरते, बोलते और लिखते रहते। उनके हाथ में हमेशा चौक होता और जूते हमेशा चौक की धूल से सफेद, कभी कभी उनके कपड़ों पर चौक के निशान होते। लेकिन जो छात्र बने रहते उन्हें एक अनमोल खजाना मिलता, गणित की गहरी समझ। प्रोफेसर अभ्यंकर की कक्षा में सवाल पूछना एक कला थी। डॉक्टर विलियम हाइंजर, जो अब स्वयं प्रोफेसर हैं, बताते हैं, एक बार मैंने एक बहुत बुनियादी सवाल पूछ लिया। प्रोफेसर अभ्यंकर रुके, मुड़े और मेरी ओर देखा, फिर बोले, तुमने पिछली रात पढ़ा नहीं, ये तो मैंने कल ही समझाया था, ध्यान कहां था तुम्हारा? मैं शर्मिंदा हो गया, लेकिन फिर उन्होंने पूरी कक्षा को संबोधित करते हुए कहा, देखो गणित में हर चीज महत्वपूर्ण है, अगर तुम बुनियादी बातें नहीं समझोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? कल रात की पढ़ाई दोहराओ, सब दोहराओ।
0: लेकिन जब कोई गहरा और विचारशील सवाल पूछता तो प्रोफेसर अभ्यंकर की आंखें चमक उठती। एक छात्रा डॉक्टर जेसिका मिलर बताती हैं, एक बार मैंने सवाल पूछा जो थोड़ा अलग दृष्टिकोण से भरा था। प्रोफेसर अभ्यंकर तुरंत रुके और बोले, अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल, आओ इस पर चर्चा करते हैं। और फिर अगले 45 मिनट तक हमने उसी सवाल पर चर्चा की। पूरी कक्षा ने साथ में सीखा। उस दिन मुझे समझ आया कि अच्छे सवाल पूछना भी एक कला है। प्रोफेसर अभ्यंकर अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़े रखना चाहते थे। अरुण अभ्यंकर सबसे छोटे बेटे, बताते हैं हर रविवार की सुबह पिताजी हमें संस्कृत के श्लोक सिखाते थे। पहले तो हम बोर हो जाते थे, लेकिन धीरे धीरे समझ आने लगा। अरुण याद करते हैं कि एक बार उन्होंने पूछा, पिताजी हम अमेरिका में रहते हैं, संस्कृत क्यों सीखें?
1: प्रोफेसर अभ्यंकर ने प्यार से समझाया, बेटे तुम भले ही अमेरिका में रहते हो, लेकिन तुम्हारी जड़ें भारत में हैं। संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं है, ये एक विचारधारा है, एक दर्शन है, और सबसे महत्वपूर्ण ये गणित की भाषा है। फिर उन्होंने मुझे दिखाया कि कैसे पाणिनि के व्याकरण में गणितीय पैटर्न हैं। उस दिन से संस्कृत मेरे लिए रोचक हो गई। दिवाली और होली पर अभ्यंकर परिवार का घर रोशनी और रंगों से भर जाता था। यवोन ने भारतीय व्यंजन बनाना सीख लिया था, समोसे, जलेबी, पूड़ी, सब्जी, सब कुछ घर में बनता था। दिवाली पर पिताजी सबसे ज्यादा उत्साहित होते थे, वे कहते थे कि ये अंधकार पर प्रकाश की जीत है, ठीक वैसे ही जैसे गणित में ज्ञान अज्ञानता पर विजय पाता है। सन 1998 में भारत सरकार ने प्रोफेसर अभ्यंकर को पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा की। ये खबर सुनकर प्रोफेसर अभ्यंकर बहुत भावुक हो गए। केतन बताते हैं, जब पिताजी को ये खबर मिली तो वे अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद मम्मी ने मुझे बुलाया, पिताजी रो रहे थे। मैंने पूछा, पिताजी क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? उन्होंने कहा, बेटे ये सम्मान मेरी मातृभूमि से है, फील्ड मेडल से भी बड़ा है मेरे लिए। भारत ने मुझे याद रखा। सम्मान समारोह के लिए पूरा परिवार भारत गया। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में समारोह था। जब राष्ट्रपति ने उन्हें पद्मश्री प्रदान किया तो प्रोफेसर अभ्यंकर ने अपने संक्षिप्त भाषण में कहा, मैं आज यहां एक गणितज्ञ के रूप में नहीं बल्कि भारत के एक बेटे के रूप में खड़ा हूं। यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं बल्कि उन सभी भारतीय विद्वानों का है जो विश्व मंच पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
0: सम्मान समारोह के बाद प्रोफेसर अभ्यंकर परिवार के साथ उज्जैन गए। अपनी जन्मभूमि किरण याद करती हैं। जब हम उज्जैन पहुंचे तो पिताजी का चेहरा देखने लायक था। वे बच्चे की तरह उत्साहित थे। प्रोफेसर अभ्यंकर अपने बचपन के घर गए, वो घर जहां उन्होंने गणित के सपने देखे थे। यहीं इसी आंगन में मैं बैठकर गणित की किताबें पढ़ता था। यहीं मेरे सपने शुरू हुए थे। उन्होंने अपने पुराने स्कूल का दौरा किया, वहां के छात्रों से मिले। एक युवा छात्र ने पूछा, सर आप इतने बड़े गणितज्ञ कैसे बने? उन्होंने जवाब दिया, बेटे मैं कोई बड़ा गणितज्ञ नहीं हूँ, मैं बस एक व्यक्ति हूँ जो गणित से प्यार करता है। तुम भी अपने पैशन को फॉलो करो, मेहनत करो, सफलता मिलेगी।
1: 2012 शरद ऋतु का समय। प्रोफेसर अभ्यंकर का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। परिवार चिंतित था। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें आराम की जरूरत है, लेकिन प्रोफेसर अभ्यंकर काम करना नहीं छोड़ना चाहते थे। केतन बताते हैं, अक्टूबर 2012 में पिताजी की तबीयत खराब हो गई। हमने उन्हें अस्पताल ले जाना चाहा, लेकिन वे मना कर रहे थे। नहीं बेटे, मुझे अभी एक प्रमाण पूरा करना है, अस्पताल बाद में चलेंगे। अंततः परिवार के आग्रह पर वे अस्पताल गए, लेकिन वहां भी उनके बिस्तर के पास गणित की किताबें और कागज रखे रहते थे। एक नर्स ने बाद में बताया, मैंने ऐसा मरीज कभी नहीं देखा। वे अस्पताल के बिस्तर पर भी समीकरण लिख रहे थे। उनका समर्पण अद्भुत था।
0: 6 नवंबर 2012 प्रोफेसर अभ्यंकर के जीवन का आखिरी दिन। परिवार उनके पास था। यवोन, केतन, किरण, अरुण सबके सब भावुक होकर याद करते हैं। पिताजी बहुत कमजोर हो गए थे, लेकिन उनका मन अभी भी चल रहा था। वे धीमी आवाज में कुछ कह रहे थे। यवोन ने कान पास किया। वे कह रहे थे, वह प्रमाण P47, वहां एक गलती है, उसे ठीक करना होगा। जीवन के अंतिम क्षण तक प्रोफेसर अभ्यंकर गणित के बारे में सोच रहे थे। फिर उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, केतन बेटे गणित को आगे बढ़ाना है। और फिर शांति। उस महान आत्मा ने अपनी अंतिम यात्रा शुरू कर दी। 6 नवंबर 2012 5:30 प्रोफेसर श्री राम शंकर अभ्यंकर ने इस दुनिया को अलविदा कहा।
1: विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय ने तुरंत एक बयान जारी किया। गणित विभाग और पूरा विश्वविद्यालय प्रोफेसर श्री राम शंकर अभ्यंकर के निधन से गहरे शोक में है। हमने एक महान गणितज्ञ, एक समर्पित शिक्षक और एक अद्भुत इंसान खो दिया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय, MIT, प्रिंसटन सभी प्रमुख संस्थानों ने शोक संदेश भेजे। भारत में भी गहरा शोक था। TIFR मुंबई ने कहा, प्रोफेसर अभ्यंकर ने विश्व को दिखाया कि भारतीय गणित की महान परंपरा अभी भी जीवित है। रामानुजन के बाद वे सबसे प्रभावशाली भारतीय गणितज्ञ थे। भारत में भी प्रोफेसर अभ्यंकर को याद रखा जाता है। TIFR मुंबई में एक वार्षिक व्याख्यान उनके नाम पर है। IIT और IISc में छात्रवृत्तियां उनके नाम पर स्थापित की गई हैं। उज्जैन में उनके जन्म स्थान के पास एक स्मारक बनाने की योजना है। स्थानीय विद्यालय में अभ्यंकर गणित क्लब भी है।
0: प्रोफेसर अभ्यंकर के जीवन से हमें अनेक पाठ मिलते हैं। आइए उन्हें याद करें। पहला पाठ समर्पण। उन्होंने अपना पूरा जीवन गणित को समर्पित कर दिया। ये समर्पण ही उन्हें महान बनाया। दूसरा पाठ अपनी जड़ों से जुड़े रहना। अमेरिका में 60 साल रहने के बाद भी वे भारतीय बने रहे। उन्होंने अपनी संस्कृति को कभी नहीं भुलाया। तीसरा पाठ कठिन परिश्रम और कोई शॉर्टकट नहीं, कोई आसान रास्ता नहीं, बस मेहनत मेहनत और मेहनत। चौथा पाठ ज्ञान को बांटना। उन्होंने अपना ज्ञान अपने छात्रों के साथ उदारता से साझा किया। यही असली शिक्षक का लक्षण है। पांचवा पाठ विनम्रता। इतने बड़े गणितज्ञ होने के बावजूद वे सदा विनम्र रहे। घमंड ने उन्हें कभी छुआ तक नहीं। छठा पाठ परिवार का महत्व। काम के प्रति समर्पण होने के साथ साथ उन्होंने अपने परिवार की परवाह की।
1: उन्होंने एक बार कहा था, गणित में जल्दबाजी नहीं होती, सिर्फ सही या गलत होता है। समय लो लेकिन सही करो। एक अन्य अवसर पर उन्होंने कहा, यदि समस्या आसान लगे तो तुमने इसे ठीक से समझा नहीं। असली गणित हमेशा चैलेंजिंग होता है। और युवा भारतीय गणितज्ञों से उन्होंने कहा था, तुम एक महान परंपरा से आते हो, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, रामानुजन, ये तुम्हारी विरासत है, इसे आगे बढ़ाओ, इसे गौरवान्वित करो। और उनका सबसे प्रसिद्ध कथन संस्कृत गणित की भाषा है, जो इसे समझता है

एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने उज्जैन की गलियों से शुरुआत की और हार्वर्ड विस्कॉन्सिन के मंचों पर भारत का नाम रोशन किया। एक ऐसे भारतीय की जिन्होंने अपनी जड़ों को कभी नहीं भुलाया। आज 2025 में जब हम उन्हें याद करते हैं तो हमें ये समझ आता है कि महानता का मतलब सिर्फ उपलब्धियां नहीं है, महानता का मतलब है अपने पैशन को फॉलो करना, कठिन परिश्रम करना और अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटना। तो आइए उन्हें श्रद्धांजलि दें, उनके जीवन से सीखें और उनकी विरासत को आगे बढ़ाएं, क्योंकि यही होगी उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि, उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना।

0: तो साथियों, आज कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक में हमने बातचीत की श्री राम शंकर अभ्यंकर के जीवन के बारे में। तो अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का, तो दीजिए विदा अपनी मित्र वर्षा को
1: और दीपक नेमा को। दोस्तों, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन अखिलेश कुमार वर्मा।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद का महाप्रयाण हुआ, परंतु क्या वो सचमुच का ही चले जाना चिर निर्वाण था? क्या ये सही है कि हम भारतवासियों के साथ चिर विच्छेद था? नहीं, स्वामी जी प्रत्यक्ष रूप में हमारे बीच नहीं है, परंतु उनके संदेश, उनका जीवन दर्शन, उनका प्यार हमारे साथ है और चिरकाल रहेगा। एक समय उन्होंने कहा था,
1: संभव है कि मैं शरीर को एक जीर्ण वस्त्र के समान छोड़कर चला जाऊं, परंतु मैं कार्य करता रहूंगा। जब तक संपूर्ण जगत ईश्वर के साथ एकत्व की अनुभूति नहीं कर लेता, मैं सर्वत्र मानव मात्र के मन में प्रेरणा जगाता रहूंगा।
2: कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर ने फ्रांस के नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार रोमा रोला को एक पत्र में लिखा था,
3: यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो विवेकानंद का अध्ययन कीजिए। उनमें सब कुछ सकारात्मक है, नकारात्मक कुछ भी नहीं।
2: कितनी विलक्षण एवं अद्भुत वाणी है। इन दो वाक्यों के माध्यम से ही गुरुदेव ने स्वामी जी के व्यक्तित्व एवं आधुनिक भारत के निर्माण में उनकी प्रासंगिकता की घोषणा कर दी है।
0: यदि नव भारत का निर्माण करना है तो पहले हमें भारत के शाश्वत सनातन रूप को, उसके विगत 5000 सालों से चलता आ रहा चैतन्य स्वरूप को जानना होगा, और यदि हम भारत का सही परिचय पाना चाहते हैं तो निश्चय ही हमें विवेकानंद द्वारा दिखाए गए पथ पर चलना होगा, सुनना होगा, जानना होगा।
2: अर्थात उन्हें जाने बिना भारत के मूल स्वरूप को जाना ही नहीं जा सकता, क्योंकि अपने ही शब्दों में विवेकानंद स्वयं एक घनीभूत भारत थे।
0: स्वामी विवेकानंद का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था, किंतु उनके ज्वलंत विचारों ने 20वीं शताब्दी के भारत और विश्व की चेतना को झकझोर दिया था। हमारे सभी प्रमुख जननायकों, महात्मा गांधी, तिलक, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू आदि ने स्वामी जी से प्रेरणा प्राप्त कर देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था, और उन्हीं के विचारों से प्रकाशित होकर भारत को प्रगति के पथ पर ले गए थे।
2: आज हम 21वीं सदी के प्रारंभ में खड़े हैं। इस नई शताब्दी में, नए भारत के निर्माण में हमें जिस प्रकाश स्तंभ की आवश्यकता है, वो स्वामी जी के विचारों में ही निहित है। उनकी संज्ञा विवेकानंद ही है। वे आज प्रत्यक्ष रूप में हमारे बीच नहीं है, परंतु उनके गंभीर, मनोरम, मोहक, तर्कसंगत और व्यावहारिक संदेश की आज भारत को बेहद जरूरत है। उनकी प्रासंगिकता हम आज भी महसूस करते हैं।
0: इसी प्रसंग में रूस के प्रख्यात भाषाविद एवं विवेकानंद साहित्य को आत्मसात करने वाले श्री चेलीशेव ने स्वामी जी के बारे में लिखा था,
3: वे केवल धर्मनायक ही नहीं, इससे कहीं अधिक हैं। वे शांति, मेल और मातृत्व के मसीहा हैं। उनका संदेश केवल भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए प्रासंगिक था। आज की दुनिया में समकालीन भारत एवं विश्व के लिए वो और भी ज्यादा प्रासंगिक बन गए हैं।
2: चेलीशेव के इस कथन में किसी कवि की भावुकता नहीं, वरन एक चिंतनशील मनीषी की युक्तिपूर्ण भावना ही व्यक्त हुई है।
0: स्वामी विवेकानंद के विषय में उनकी योग्यतम शिष्या भगिनी निवेदिता ने कहा था,
4: स्वामी विवेकानंद महान देशप्रेमी थे। मातृभूमि की आराधना को ही वे सर्वोपरि मानते थे।
0: वस्तुतः स्वामी जी के प्रति ये एक सही समझ है। स्वामी जी के पूर्व भी भारत ने अनेक रत्न महात्मा उत्पन्न किए, किंतु उन सब ने व्यक्तिगत मोक्ष का ही संदेश दिया था। विवेकानंद ही पहले ऐसे सन्यासी थे जिन्होंने धर्म को जीवन से जोड़ा, समाज और राष्ट्र से जोड़ा। उन्होंने धर्म को पहाड़ और गुफाओं से उतार कर हमारे रोजमर्रा के जीवन में ढालने का वंदनीय कार्य किया है।
2: हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि प्रत्येक जीव ब्रह्म है, वही स्त्री है, वही पुरुष है, वही युवक युवती है, और लाठी टेक कर चलने वाला वृद्ध भी वही है, परंतु व्यावहारिक जीवन में हमने इस बात को नकार दिया और हर तरह के भेदभाव हमारे समाज में छा गए। स्वामी जी ने कहा था,
1: हमें प्रतिदिन के व्यावहारिक जीवन में शुद्ध अद्वैत की सत्यता को प्रमाणित करना होगा। श्री शंकर इस अद्वैतवाद को जंगलों और पहाड़ों में रख गए हैं। मैं इसे अब वहां से लाकर संसार और समाज में प्रचारित करने आया हूं। जो मंदिर में शिव की उपासना करते हैं उनकी पूजा प्रारंभिक है, और जो जीव को शिव मानकर उनकी सेवा करते हैं उनसे शिव अधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यही असली पूजा है, यही सच्ची उपासना का सार है।
0: स्वामी विवेकानंद एक घुमंतू सन्यासी या परिव्राजक थे। उन्होंने सारे भारत की यात्रा कर देश की जनता की दुरावस्था को देखा था। जनता की दुर्दशा देख उनका मन रो पड़ता था। उन्हें लगा था कि जब तक गरीबों की व्यवस्था में सुधार नहीं होता तब तक भारत के नव निर्माण की आशा नहीं की जा सकती।
2: लोगों को लगता था नव निर्माण क्यों, क्या जरूरत है। स्वामी जी समझते थे कि भारत सनातन है, परंतु उस पर रूढ़ियों की काई जम गई है। उसे जब तक मिटाया नहीं जाता तब तक भारत अपने वास्तविक रूप में प्रतिष्ठित नहीं हो सकेगा। उन्होंने घोषणा की,
1: मैं समझता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा पाप राष्ट्रीय पाप है आम जनता की उपेक्षा करना, और वही हमारे पतन का कारण है। भारत में दो बड़ी बुरी बातें हैं, स्त्रियों का तिरस्कार और गरीबों को जाति भेद द्वारा पीसना।
0: निम्न जाति के लोगों पर हो रहे अत्याचार से दुखी होकर उन्होंने खेद प्रकट करते हुए कहा था,
1: पृथ्वी पर दूसरा कोई ऐसा धर्म नहीं जो हिंदू धर्म के समान इतने उच्च स्तर से मानवता के गौरव का उपदेश करता हो, और पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्म नहीं जो हिंदू धर्म के समान गरीबों और निम्न जाति वालों का गला ऐसी क्रूरता से घूंटता हो। क्या हम मनुष्य हैं? हे भगवान, कब मनुष्य एक दूसरे से भाईचारे का बर्ताव करना सीखेंगे?
2: तो फिर भारत के नवनिर्माण का उपाय क्या है?
1: हमने राष्ट्र की हैसियत से अपना व्यक्तित्व खो दिया है। हमें राष्ट्र के खोए व्यक्तित्व को वापस लाना है और आम जनता को उठाना है। भारत को उठाना होगा, गरीबों को भोजन देना होगा, शिक्षा का विस्तार करना होगा और पुरोहितों तथा मठाधीशों के प्रपंच की बुराइयों का निराकरण करना होगा।
2: उन्होंने इसी विषय पर और भी कहा था,
1: धर्म की बात सुनना हो तो पहले इस देश के लोगों के पेट की चिंता को दूर करना होगा। पहले रोटी और तब धर्म चाहिए। गरीब बेचारे भूखे मर रहे हैं और हम उन्हें जरूरत से ज्यादा धर्मोपदेश दे रहे हैं, क्या मजाक है।
0: स्वामी जी ने किसी भी प्रकार के शोषण से मुक्त और विशेषाधिकार से रहित भारतीय समाज की कल्पना की थी। उनकी दृष्टि में विशेष सुविधा, योग करने की धारणा मानव जीवन के लिए कलंक स्वरूप है। शारीरिक, आर्थिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक सुविधाओं में से सर्वाधिक बुरा है आध्यात्मिक सुविधाओं का विशेषाधिकार। स्वामी जी की धारणा थी कि ये चारों प्रकार के शोषण मनुष्य के विकास में सबसे बड़े बाधक तत्व हैं, अतः इनका निराकरण होना चाहिए। वे कहते थे,
1: यदि ऐसे राज्य की स्थापना संभव हो जिसमें ब्राह्मण काल का ज्ञान, क्षत्रिय काल की सभ्यता, वैश्य काल का प्रचार भाव और शूद्र काल की समानता रखी जा सके, उनके गुण दोषों को त्याग कर, तो वो आदर्श राज्य होगा।

0: भारत की समस्त दुर्दशाओं के मूल में स्वामी जी ने शिक्षा के अभाव को देखा है। उनका कथन है,
1: यूरोप के बहुतेरे नगरों में घूम घूम कर वहाँ के गरीबों को भी अमन चैन और विद्या को देखकर मुझे अपने देश के गरीबों की बात याद आती थी और मैं आंसू बहाता था। यह अंतर क्यों हुआ? जवाब मिला, शिक्षा। शिक्षा से आत्मविश्वास आता है और आत्मविश्वास से मन में ब्रह्म भाव जाग उठता है, परंतु हमारा वो ब्रह्म भाव क्रमशः संकुचित और खत्म होता जा रहा है।
0: स्वामी जी ने शिक्षा के बारे में और बहुत कुछ कहा है।
1: भारत में हम गरीबों को, पतितों को क्या समझते हैं? हीन, तुच्छ और दयनीय। राक्षस जैसा क्रूर समाज उन पर जो लगातार चोटें कर रहा है, उसका अनुभव तो वे खूब कर रहे हैं, पर वे जानते नहीं कि वे भी मनुष्य हैं। समाज की ये दशा दूर करनी होगी।
0: अतः हमें यदि आधुनिक भारत का निर्माण करना है तो हमें स्वामी जी के कहे अनुसार भारतवासियों में सही शिक्षा का प्रसार करना होगा, उनमें मनुष्यत्व का भाव भरना होगा, उनके व्यक्तित्व का विकास करना होगा, उनकी दिव्यता को जागृत करना होगा। एक शोषण मुक्त स्वाधीन समाज के लिए मुक्त समाज और राष्ट्र के लिए ये अनिवार्य शर्तें हैं। इनके अभाव में अभिनव भारत नहीं गढ़ा जा सकता।
2: स्वामी जी ने हमें बताया कि चरित्र, सेवा, त्याग और प्रेम के द्वारा ही हम भारत का विकास कर सकते हैं। जब स्वामी जी अमेरिका से लौटे तो कई लोगों ने उनसे कहा कि वे भारत की पराधीनता को दूर कर दें। जवाब देते हुए स्वामी जी ने कहा था,
1: ठीक है, मान लो कि मैं कल भारत को स्वतंत्र कर देता हूँ, तो क्या तुम उस स्वतंत्रता की रक्षा कर पाओगे? सारे देश में ऐसे लोग कहाँ हैं जो ऐसा कर सके?
0: इस तरह उन्होंने हमें बता दिया कि जब तक हमारे पास चरित्रवान मनुष्य नहीं होंगे, तब तक ना कुछ किया जा सकता और न ही कुछ पाया जा सकता है।
2: स्वामी जी ने देश के नव निर्माण के लिए सेवा का आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा,
1: यदि तुम मेरी बात सुनो तो तुम्हें पहले अपनी कोठरी के द्वार खुले रखने होंगे। तुम्हारे घर के पास, बस्ती के पास जितने अभावग्रस्त लोग रहते हैं, उनकी तुम्हें यथार्थ सेवा करनी होगी। जो पीड़ित हैं, उसके लिए औषधि और पथ्य का प्रबंध करो। जो भूखा है, उसके लिए खाने का प्रबंध करो। जो ज्ञानी है, उसे वाणी द्वारा जहां तक हो सके समझाओ।
0: स्वामी जी का दृढ़ विश्वास था कि भारत तभी जगेगा जब विशाल हृदय वाले सैकड़ों स्त्री पुरुष भोग विलास और सुख की सभी इच्छाओं को विसर्जित कर मन, वचन और तन से उन करोड़ों भारतवासियों के लिए सचेष्ट होंगे जो निरंतर दरिद्रता और अज्ञानता के अगाध सागर में डूबते जा रहे हैं।
2: ये सेवा अहंकार भाव से नहीं, उपासना के भाव से होनी चाहिए। स्वामी जी का कहना था कि जब आप ईश्वर का ध्यान करते हैं तो ये एक प्रकार की उपासना है, और जब आप मानवता की सहायता के लिए निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करते हैं तो ये उपासना का दूसरा प्रकार हो जाता है, क्योंकि जीव वस्तुतः शिव ही है। वे कहते थे,
1: हम मंदिरों में जाकर पाषाण मूर्ति में देवता की जो उपासना करते हैं, उसके लिए हमें प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, जबकि मनुष्य में देवता की प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। वो तो चलता फिरता मंदिर है और उसमें देवता स्वयं ही विराजित हो गए हैं। अतः ऐसे पीड़ित और असहाय मनुष्यों की सेवा रूपी उपासना से हमें ईश्वर का ही साक्षात्कार होगा।
0: आज हमारे सामने शायद ही कोई ऐसी समस्या है जिस पर स्वामी जी की तीव्र और पैनी दृष्टि न पड़ी हो और उन्होंने उसका समाधान प्रस्तुत न किया हो। जरूरत केवल इस बात की है कि हम उन समाधानों की ओर गहराई से ध्यान दें, उन पर चिंतन, मनन और अमल करें।

0: ये सच है कि देश आज अनेक कुरीतियों के अंधकार में आ फंसा है, लेकिन बुराइयों का रोना रोने मात्र से ही तो काम नहीं चलेगा, हमें अच्छाइयों की ओर जाना ही होगा। स्वामी जी ने बड़े प्रेरक शब्दों में एक मंत्र दिया था।
1: मैंने भारतवासियों से बारंबार कहा है और अब भी कह रहा हूं कि कमरे में यदि सैकड़ों वर्षों से अंधकार फैला हुआ है तो क्या घोर अंधकार, भयंकर अंधकार कहकर चिल्लाने से अंधकार दूर हो जाएगा? नहीं, रोशनी जला दो, फिर देखो कि अंधेरा आप दूर हो जाता है या नहीं। मनुष्य के सुधार का, उसके संस्कार का यही रहस्य है। उसके समक्ष उच्चतर बातें, उच्चतर प्रेरणाएं रखो। पहले मनुष्य में, उसकी मनुष्यता में विश्वास रखो। लोगों से ये भी कहने की जरूरत नहीं कि तुम लोग जो कुछ कर रहे हो वो ठीक नहीं है, खराब है। जो कुछ अच्छा है उसे उनके सामने रख दो, फिर देखो कि वे कितने आग्रह के साथ उसे ग्रहण करते हैं।
2: उन्होंने देशवासियों के सामने गुरु गोविंद सिंह का उदाहरण रखकर कहा था,
1: हमें केवल देश की दुर्दशा और दुरावस्था की चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा करके हम केवल अपना मनोरंजन करते हैं। मेरी बात पर ध्यान दो, यदि तुम देश की भलाई करना चाहते हो तो तुम में से प्रत्येक को गुरु गोविंद सिंह बनना पड़ेगा। तुम्हें अपने देशवासियों में भले ही हजारों दोष दिखाई दें, पर तुम उनकी रग रग में बहने वाले हिंदू रक्त की ओर ध्यान दो। पहले तुम्हें इन स्वजातीय नर रूपी देवताओं की पूजा करनी होगी, भले ही वे तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए खास चेष्टा करें। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति यदि तुम पर अभिशाप और निंदा की बौछार करे तो भी तुम इनके प्रति प्रेम पूर्ण वाणी का प्रयोग करो। यदि ये तुम्हें त्याग दें, पैरों से ठुकरा दें, तो तुम उन्हीं वीर केसरी गोविंद सिंह की भांति समाज से दूर जाकर नीरव भाव से मौत की राह देखो। हमें अपने सामने सदा इसी प्रकार का आदर्श रखना होगा, पारस्परिक विरोध भाव को भूलकर चारों ओर प्रेम का प्रवाह बहाना होगा।
0: विदेश से लौटकर चेन्नई में स्वामी जी एक सभा को संबोधित कर रहे थे। वे समाज सुधार के बारे में बोल रहे थे। उन्होंने कहा था,
1: हे मेरे देशवासियों, मेरे मित्रों, मेरे बच्चों, यदि हमारे समाज में, इस राष्ट्रीय जीवन रूपी जहाज में छेद है तो हम तो उसकी संतान हैं। जाओ, चलो उन छेदों को बंद कर दें, उसके लिए हंसते हंसते अपने हृदय का रक्त बहा दें। और यदि हम ऐसा ना कर सकें तो हमें मर जाना ही उचित है। हम अपना भेजा निकालकर उसकी डाट बनाएंगे और जहाज के उन छेदों में भर देंगे। उसकी भर्त्सना ना करें, इस समाज के विरुद्ध एक भी कड़ा शब्द मत निकालो।
2: स्वामी जी सर्वधर्म संभाव के सिद्धांत के पक्षधर थे। इस संदर्भ में भी उनके विचार अनुकरणीय हैं। भारतीय संविधान धर्म निरपेक्षता, धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात करता है, किंतु स्वामी जी अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता नहीं, स्वीकृति की शिक्षा देते हैं। सहिष्णुता और स्वीकृति में अंतर है। उनका कहना था,
1: चूंकि एक ही सत्य सभी धर्मों के मूल में है, अतः हमें अन्य धर्मों की सत्यता को भी स्वीकार करना चाहिए।
2: वे कहते थे,
1: मैं सभी प्राचीन धर्मों को स्वीकार करता हूँ और उनके साथ सम्मिलित होकर उपासना करूंगा। वे जिस किसी रूप में ईश्वर की पूजा करें, मैं उनसे प्रत्येक के साथ उस रूप में भगवान की आराधना करूंगा। मैं मुसलमानों के साथ मस्जिद में जाऊंगा, ईसाइयों के साथ गिरजे में जाकर क्रूसित ईसा के सामने घुटने टेकूंगा। मैं बौद्धों के मंदिर में प्रवेश कर बुद्ध और उनके धम्म की शरण लूंगा और वन में जाकर उस हिंदू के साथ ध्यानस्थ होकर बैठूंगा जो सबके हृदय को प्रभावित करने वाली ज्योति के दर्शन करना चाहता है।
0: स्वामी जी के गुरुदेव श्री रामकृष्ण देव द्वारा अपने जीवन में प्रदर्शित जितने मत उतने पथ का निर्देश ही स्वामी जी के इस धार्मिक सिद्धांत के मूल में निहित है। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है,
3: भारतवर्ष की धार्मिक समस्या का जो समाधान रामकृष्ण ने दिया है, उससे बड़ा और अधिक उपयोगी समाधान और कोई नहीं कर सकता। ये एक बड़ा सत्य है। नव भारत के निर्माण में हमें इस तथ्य को सदैव स्मरण रखना होगा। स्वामी जी ने इस देश के लिए इस्लामी शरीर तथा वेदांती बुद्धि के समन्वय पर जोर दिया था, अर्थात इस्लाम की समानता के आधार पर हमारे समाज की संरचना हो और हमारे मस्तिष्क में जन जन के प्रति अद्वैत की अभेद बुद्धि हो, तभी हमारा राष्ट्र सुसंगठित रह सकेगा और हमारी भावनात्मक एकता तथा अखंडता की रक्षा हो सकेगी।

0: भारत में आज जातिगत विषमता और ऊंच नीच, अगला पिछड़ा वर्गों की जटिलता बढ़ती जा रही है। स्वामी जी इन बातों से घृणा करते थे। वे दुखी होकर कहा करते थे,
1: मुझे विशेष दुख इस बात पर होता है कि वर्तमान समय में भी जातियों के बीच इतना मतभेद चलता रहता है। इसका अंत होना चाहिए। ये दोनों ही पक्षों के लिए व्यर्थ है, खासकर ब्राह्मणों के लिए, क्योंकि इस तरह के एकाधिकार और विशेष दावों के दिन लद गए। प्रत्येक अभिजात्य वर्ग का कर्तव्य है कि अपने कुलीन तंत्र की कब्र वो स्वयं ही खोदे, और जितना शीघ्र से कर सके उतना ही अच्छा होगा। वो जितनी देर करेगा वो उतनी ही सड़ेगी और उसकी मृत्यु भी उतनी ही भयंकर होगी। अतः ये ब्राह्मण जाति का कर्तव्य है कि भारत की दूसरी सब जातियों की उद्धार की चेष्टा करे।
2: दूसरी ओर वे पिछड़े वर्ग के लोगों से कहा करते थे कि
1: ए पिछड़ी जाति के लोगो, मैं तुम्हें बतलाता हूँ कि तुम्हारे बचाव का, तुम्हारी अपनी दशा को उन्नत करने का एकमात्र उपाय संस्कृत पढ़ना है, और ये लड़ना झगड़ना और उच्च वर्णों की विरोध में लेख लिखना व्यर्थ है। जातियों में समता लाने का एकमात्र उपाय उस संस्कार और शिक्षा का अर्जन करना है जो उच्च वर्गों का बल और गौरव है। यदि ये तुम कर सको तो जो कुछ तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा।
0: स्वामी जी ये मानते थे कि प्रकृति ने सबको समान नहीं बनाया, पर वे सबके लिए समानता के पक्षधर थे। वे कहते थे,
1: अगर किसी को ज्यादा अवसर देना है तो वो निर्बलों को देना चाहिए। निर्बलों को सबल से अधिक अवसर देना उचित है। दूसरे शब्दों में, ब्राह्मणों को शिक्षा की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी पिछड़ों को। यदि ब्राह्मण के लड़के को एक शिक्षक चाहिए तो पिछड़े लड़के को 10, क्योंकि अधिकतर सहायता उसे मिलनी चाहिए जिसे प्रकृति ने जन्म से कुशाग्र बुद्धि नहीं दी है।
2: स्वामी जी भारत में एक उन्नत और स्वस्थ समाज की कल्पना करते थे। वे सपना देखते थे कि
1: लाखों नर नारी पवित्रता के भाव से उद्दीप्त होकर, ईश्वर के प्रति अटल विश्वास से शक्तिमान बनकर, तथा गरीबों पतितों एवं पद दलितों के प्रति सहानुभूति से सिंह के समान साहसी बनकर, इस संकीर्ण भारत में उद्धार एवं समानता के संदेश का प्रचार करते हुए विचरण करेंगे।
0: स्वामी जी हमेशा मनुष्यों की सेवा, दलितों के उद्धार की बातें सोचते रहते थे। वे कहते थे,
1: नियम या संविधान से बड़ा है मनुष्य। कोई भी देश इस बात से महान नहीं बनता कि उसके संसद में कैसे कैसे कानून बनते हैं, बल्कि इस बात से कि उसके पास मनुष्य कैसे हैं, क्योंकि मनुष्य ही नियमों को बनाता है। नियम मनुष्य को नहीं बनाते, मनुष्य रुपए पैदा करता है, रुपए मनुष्य को पैदा नहीं करते। मनुष्य कीर्ति और नाम पैदा करता है, कीर्ति और नाम मनुष्य को पैदा नहीं करते।
0: अतः वे कहते थे,
1: मेरे मित्रों, पहले मनुष्य बनो, तब देखोगे कि बाकी सारी चीजें स्वयं तुम्हारा अनुसरण करेंगी। केवल मनुष्यों की आवश्यकता है, बाकी सब कुछ स्वयं हो जाएगा।
2: उनकी एक विख्यात उक्ति है,
1: जब तक करोड़ों भूखे और अशिक्षित रहेंगे तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को विश्वासघाती समझूंगा जो उनके खर्च पर शिक्षित हुआ है, परंतु जो उन पर तनिक भी ध्यान नहीं देता।
0: आधुनिक भारत के निर्माण के लिए लोगों को हृदयवान होना ही होगा। वे वज्र घोष के साथ कहते हैं,
1: मेरे भावी संस्कारकों, मेरे भावी देशभक्तों, तुम हृदयवान बनो। क्या तुम हृदय से अनुभव करते हो कि देव और ऋषियों की करोड़ों संतानें पशु तुल्य हो गई हैं? क्या तुम कभी इससे अनिद्रित हुए हो? यदि हो तो जानो कि तुमने स्वदेश भक्ति की प्रथम सीढ़ी पर पैर रखा है। पहले कूर्म अवतार की पूजा करनी चाहिए। पेट की चिंता से भारत बेचैन है। पहले रोटी और तब धर्म चाहिए।
2: इस नव भारत के निर्माण के लिए स्वामी जी ने युवकों का, चरित्रवान युवकों का आह्वान किया। उनका विचार था,
1: भारत को कम से कम अपने सहस्त्र मनुष्यों की बलि की आवश्यकता है, पर ध्यान दो, मनुष्यों की, पशुओं की नहीं। भारत तभी जागेगा जब इसके विशाल हृदय वाले सैकड़ों नर नारी भोग विलास और सुख की सभी इच्छाओं को विसर्जित कर उन भारतीयों के कल्याण के लिए सचेष्ट होंगे जो निरंतर दरिद्रता तथा ज्ञान के सागर में डूबते जा रहे हैं।
0: उन्होंने एक नए अभिनव भारत की कल्पना की थी, जिस भारत में सभी लोग अपने अपने स्तरों पर कार्य करने में जुट जाएंगे।
1: एक नवीन भारत निकल पड़े, निकले हल पकड़कर, किसानों की कुटी भेदकर, निकल पड़े बनियों की दुकानों से, कारखानों से, हाट से और बाजार से, निकले झोपड़ियों, जंगलों, पहाड़ों, पर्वतों से।
2: अंत में विवेकानंद के बारे में रामधारी सिंह दिनकर की उक्ति ही सटीक प्रतीत होती है।
3: अभिनव भारत को जो कुछ कहना था वो विवेकानंद के मुख से उद्गीर्ण हुआ। अभिनव भारत को जिस दिशा की ओर जाना था उसका स्पष्ट संदेश विवेकानंद ने दिया। विवेकानंद वो सेतु है जिस पर प्राचीन और नवीन भारत परस्पर आलिंगन करते हैं। विवेकानंद वो समुद्र है जिसमें धर्म और राजनीति, राष्ट्रीयता और अंतरराष्ट्रीयता तथा उपनिषद और विज्ञान सबके सब समाहित होते हैं।
2: भारत के नव निर्माण के लिए स्वामी जी का दिया हुआ मंत्र हमें हमेशा याद रखना होगा।
1: उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति किए बिना विश्राम मत लो।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

तो ये था कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। आपने ट्यून किया अपने रेडियो सेट पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नाइन्टी पॉइंट एट मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में सारंगी और वायलिन वादन की जुगलबंदी सुनिएगा, जिसे पेश कर रहे हैं अब्दुल हमीद लतीफ और जावेद लतीफ खां, और इसके बाद प्रस्तुति होगी सुगंध देवी गंधर्व के गायन की। तो सबसे पहले पेश है सारंगी और वायलिन वादन की जुगलबंदी, जिसे पेश कर रहे हैं अब्दुल हमीद लतीफ और जावेद लतीफ खां।

तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल

0: और मुस्कुराए बिना ना रह सकें। तो प्रस्तुत है हमारे हास्य नाटक एलपीजी का सातवां सिलेंडर। श्रोताओं, दुनिया में सात अजूबे हैं, धरती पर सात समंदर हैं। शादी के समय सात फेरे लिए जाते हैं, पति और पत्नी एक दूसरे को सात वचन देते हैं, सरगम के सुर भी साथ होते हैं, यहां तक कि इंद्रधनुष के रोशनी के रंग भी साथ हैं। और तो और, हमारा भोपाल भी सात पहाड़ियों पर बसा है। पर हमें समझ में नहीं आता कि सब्सिडी वाले रसोई गैस के सिलेंडरों की संख्या छह क्यों है। सरकार को न जाने क्या सूझी कि उसने किचन के सिलेंडरों का कोटा साल भर में छह फिक्स कर दिया। अरे ज्यादा नहीं, कम से कम सात के आंकड़े का तो ख्याल रखा होता। तो लीजिए, हाजिर है सिलेंडरों की इसी कश्मकश से गुजरते हुए एक परिवार की राम कहानी।
1: ओफ यार, ये जूते कहाँ रख दिए? ये जूते मिल जाए तो फिर चश्मे। अरे सुनती हो क्या यार, ये लोग फोन मोबाइल कहाँ रखा है मेरा यार?
2: सुनिए जी, टिफिन। अरे सुन रहे हैं?
1: हाँ?
2: आज ऑफिस के टिफिन में आपको ब्रेड बटर दे रही हूँ, कहिए तो थोड़ा सा सॉस भी रख दूं।
1: ओफ, क्या कह रही हो, ब्रेड बटर?
2: हाँ।
1: अरे यार, तुम तो जानती हो कि ब्रेड मेरे पेट में चिपकती है। गोंद की बाप है ये चिपकोपन में। सुबह फ्रेश होना मुश्किल हो जाता है। चाय पर चाय पीते जाओ पर जोड़ है कि टूटते ही।
3: अरे मम्मी, पापा को भुने चने दे दीजिए, लहसुन मिर्ची की चटनी के साथ। पापा कहते हैं भुना चना पेट साफ रखता है।
1: क्या बकवास किए जा रहे हो तुम लोग, कुछ ढंग का टिफिन नहीं दे सकते तुम मुझे? ब्रेड बटर भुना चना, मानो अग्नि देव हड़ताल पर चले गए हो।
2: चले गए नहीं है, पर जाने की धमकी जरूर दे रहे हैं।
1: क्या मतलब
2: भाई? 5 महीने बाकी हैं अभी साल पूरा होने में,
1: और नोटिस दे दिए हैं कि अब काम पे नहीं आएंगे वो। यही कहना है ना तुम्हें?
2: हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए बस। पिछले 7 महीनों में हमने 4 सिलेंडर चट कर दिए हैं। अब बचे हैं कोटे के खाली 2 सिलेंडर।
1: क्या?
2: और महीने बचे हैं 5। यानी 1 सिलेंडर अब हमें 2.5 महीने चलाना है, जबकि जिस हिसाब से चल रहे हैं ना हम, हमारा 1 सिलेंडर 2 महीने भी तो चलता नहीं। अब कुकिंग में कटौती भी करनी पड़ेगी।
1: कटौती माय फट, अब क्या पेट पर पट्टी बांधकर नौकरी करूंगा मैं? हार तोड़ खटो ऑफिस में और इसके बाद खाना भी नहीं मांगो? कमाल है भाई, कमाल है। एक सुबह गरम पराठा ना दो तो तुम्हारी बाई भी भाग जाए काम छोड़कर, और मैं?
2: देखो देखो जी, बाई से अपनी बराबरी मत करो, कह देती हूँ मैं। हाँ भाई, तुम मुंह फुला लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा मेरा?
1: है?
2: मगर बाई, बाप रे बाप, दूसरा पति तो मिल जाएगा।
1: क्या?
2: पर दूसरी बाई नहीं मिलने वाली भाई। उसके नाश्ते में कटौती का तो सवाल ही नहीं उठता, बाकी चाहे जो हो। अरे देख तो मंजू, लगता है कांता बाई आ गई। क्यों रे कांता, ये कोई टाइम है आने का? पहले तो तू कभी कभार ऐसा करती थी, पर अब तो तेरा रोज रोज।
4: अरे क्या करूं भाई साहब, सरकार ने सिलेंडरों में आग लगा के रखी है ना, अब जलते सिलेंडर से आग तो लग सकती है, पर खाना बनने से रहा। सुबह सवेरे सवेरे लकड़ी बीनने ना जाऊं ना तो लकड़ी भी ना मिले। एक अनार 100 बीमार वाला हाल है। एक टाइम लकड़ी के टुकड़ों पर खाना पकता है और एक टाइम गैस सिलेंडर पर। अब देर तो होगी ना भाई, आखिर नौकरी भी तो पापी पेट की खातिर ही कर रही हूँ ना।
1: हाँ, तू ही कर रही है अपने पापी पेट की खातिर, और हम तो ऐसे ही कर रहे हैं।
2: अरे सुनिए तो, टिफिन तो ले जाइए। अरे कुछ एकदम खाली पेट रहेंगे क्या?
4: साहब नाराज हो गए क्या भाई साहब?
2: अब छोड़ ना, तू नाश्ता कर ले।
4: भाई साहब नाश्ता तो कर लूंगी, पर आज है ना वो ना पराठे के साथ है ना चाय भी मिल जाती तो। थोड़ा सा क्या है, ठंड है ना।
2: अच्छा, बनाती हूँ अभी।
4: हाँ हाँ, तो कई दिन भी हो गए सुबह की चाय नहीं मिली ना भाई साहब। पहले तो ठेले पर वो 2 रुपए कट मिल जाती थी, पर अब अरे अब तो उनके भी रेट सिलेंडर की तरह भबक रहे ना।
2: ये ले चाय। अब मेरा माथा खराब ना कर कांता,

0: देखा ना तूने कैसे लड़कर गए हैं अभी। तू चाय पी, तुझे तो गरम पराठे दे रही हूँ और वे भुने चने लेकर चले गए। तुझे क्या मालूम कि वो कैसे कैसे
1: मालूम है भाई साहब, रो मत, रो नको, मालूम है मेरे को, सब मालूम है। अरे आग की जरूरत तो मेरी रसोई में भी पड़ती है ना। वो चाय वाले भी बोलते हैं कि सरकारी रेट 2 गुना होता है ना, तो ब्लैक वालों का रेट 4 गुना हो जाता है। हाँ
0: मैं क्या कर लूं, सरकार तो कुछ भी बोल देती है, बस अब मैं कैसे घर चलाती हूँ ना, मैं ही जाती हूँ।
1: रो,
0: हो गई ना तेरी चाय, अब जा बाकी काम कर।
1: हाँ,
0: झाड़ू पोछा पड़ा है सुबह से।
1: हाँ, करती।

0: मंजू।
1: हाँ मम्मी।
0: जरा टीवी की आवाज कम कर दे बेटा।
1: हाँ मम्मी करती हूँ।
0: सुनो ना, सॉरी सुबह मेरी वजह से आपका मूड ऑफ हो गया, पर मैं क्या करूं बताओ। मेरे हाथ में तनख्वाह देखकर तो तुम निश्चिंत हो जाते हो, घर तो मुझे चलाना पड़ता है ना।
2: नहीं रचना, गलती मेरी भी है। अरे यार, मैं तो एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, बॉस तक की बीवी ने राशनिंग का हुक्म सुना दिया।
0: क्या?
2: बेचारा सुबह का नाश्ता अंकुरित चने से करता है। दांत साथ नहीं देते उस उम्र में, पर करे क्या, किसी तरह टेबलेट समझ कर कटक लेते।
0: अच्छा सुनो, क्यों ना हम एक काम करें।
2: हाँ बोलो।
0: एक सोलर कुकर खरीद लें, दाल चावल तो उबल ही जाएगा ना उसमें। हाँ, हाँ, हाँ। सूरज भगवान की सब्सिडी और सरकारी सब्सिडी, इन दोनों को मिलाकर हमारा काम किसी तरह चल ही जाएगा।
2: क्या बात है भाई, क्या बात है। हमारी मेहनत आप तो बहुत समझदार हो गई है। अब जाके हमें समझ में आया कि वैदिक काल में लोग अग्नि की इतनी पूजा क्यों करते थे। सच सच, ज्ञान पढ़ने से नहीं आता, ज्ञान आता है भोगने से।
0: अब देखिए जी, 5 महीने हमें 2 सिलेंडरों के सहारे निकालने हैं।
2: बिल्कुल।
0: ओके, तो अब सोलर कुकर ने 1/3 लोड भी ले लिया।
2: हाँ, हाँ।
0: तो गाड़ी धक ही जाएगी किसी तरह। फिर आपको भी टिफिन में ब्रेड चने नहीं खाने होंगे, हॉट केस में रखे गरम गरम दाल चावल की खुशबू से आप ऑफिस में अपना करवा चौथ खोलिएगा।
1: और मम्मी, फिर मैं भी गर्मा गर्म पोहे खाऊंगी रोज सुबह।
0: हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं भाई, अब तो सोलर कुकर देव का ही सहारा है, वे ही इस संकट से छुटकारा दिला सकते हैं अब।
2: वाह वाह, संकट
0: सोलर
2: मोचक।
0: कुकर देव की जय।
2: अरे यार रचना, ऑफिस के लिए देर हो रही है मुझे, कहाँ मेरा लंच बॉक्स है, ला।
0: माफ करना जी,
2: क्या
0: लगता है दोपहर के पहले नहीं पकने वाला है ये दाल चावल, ये सोलर कुकर में डाला है ना। और आज सूर्यदेव भी नरम पड़े हुए, लगता है उन्होंने भी सब्सिडी घटाने का मन बना लिया है।
2: ए भगवान, दुबले को दो आषाढ़। यार एक काम करो, अब पका ही भर दो तुम टिफिन में यार, है? पेट की आग से ही पक जाएगा अब तो खाना। आखिर आदि मानव भी तो कच्चा मांस ही खाता था, और कितना आटा कट्टा होता था।
0: ओहो, मुझे क्यों सुना रहे हो, अब सूरज देव ठंडे पड़ते जा रहे, तो मैं क्या कर लूं?
2: क्या करूं?
0: उनके आगे मोर्चा तो लेकर नहीं जा सकती ना। सारी मुसीबत मेरी, जैसी सरकार वैसे ही भगवान, आम आदमी के तो सबके सब दुश्मन है।
2: यार, अरे यार रचना, एक आइडिया आया है दिमाग।
0: हटो जी,
2: एकदम सुपर हिट है। एक काम करो, एक काम करो, जिस हाल में भी है दाल चावल तुम उठा लाओ उसे, जल्दी लाओ, लाओ तो।
0: अरे अरे अरे अरे, क्या हो गया जी आपको, क्या आप सचमुच ही आदि मानव तो नहीं है? हे भगवान, सिलेंडरों की समस्या ने अब आपके दिमाग पर कोई असर तो नहीं डाल दिया?
2: अरे चुप रहे भाई, चुप रहे, मैं तुझे पागल दिखता हूँ। अरे लेके आओ यार सही अपना कच्चा पक्का खाना, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि आगे क्या करना है।
0: सच, सच,
2: लाओ लाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। हाँ,
0: ये लीजिए।
2: हाँ,
0: ये हाँ। बताइए अब क्या करूँ इस कच्चे पक्के खाने का।
2: अरे करना क्या है यार, ये सोलर कुकर के डब्बों को अब असली कुकर में डाल दो और उसको फिर गैस पर चढ़ा दो।
0: हाँ, अब फिर क्या फायदा हुआ?
2: ओफ, यही तो फर्क है तुम्हारी और हमारी अकल में। अरे अब खाना पकाने में आधा गैस खर्च होगा कि नहीं होगा, हैं? आधा गैस।
0: वाओ, मान गए आपको, वो क्या कहते हैं ना जी, दिनेश, मतलब दिनेश।
2: हाँ, मतलब हम दिनेश।
3: रचना और दिनेश ने न जाने क्या क्या तरीके अपनाए, पर सिलेंडर देव की आयु 2.25 महीने के ऊपर न जा सकी। एक बार फिर घर की दीवारों पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। 7वें सिलेंडर की कल्पना ही डरावनी है। भारत में आम आदमी का कलेजा अभी इतना मजबूत नहीं हुआ है कि वह 1000 रुपए का सिलेंडर खरीद करके अपना रसोई का चूल्हा जला सके। पति पत्नी की 2 सदस्यीय कमेटी इस कठिन समस्या का हल तलाशने के लिए बैठ गई।
0: सुनो सुनो जी, एक काम करते हैं, घर में आलू आज से पूरी तरह बंद।
2: उससे क्या होगा, क्या बाकी सब्जियां कच्ची खाई जाएंगी?
0: अरे नहीं जी, सब्जियों का बिहेवियर आप क्या जानोगे दिनेश बाबू, ये तो हम गृह स्वामिनियां ही समझ सकती है।
2: क्या मतलब?
0: मतलब ये देखो, अब हमें पत्ते वाली सब्जियां खानी चाहिए, हाफ फ्राइड, पोषक तत्व भी भरपूर और गैस की बचत भी। वो डॉक्टर्स कहते हैं ना कि सब्जियों को ज्यादा पकाने से उनके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, नष्ट नष्ट नष्ट,
2: और मेरा वेट भी कंट्रोल में रहेगा, है ना?
0: वाओ, क्या बात कही है आपने, तो मेरे मुंह की बात छीन ली, वेट कंट्रोल, तो समझिए सब बीमारियां कंट्रोल।
2: अरे भाड़ में जाए तुम्हारे पोषक तत्व और वेट कंट्रोल, जान ही दे देते हैं ना बाप अपनी, है? न रहेगा वेट और न रहेगा कंट्रोल, और न करना होगा ऐसे कंट्रोल में, गैस सिलेंडर की जरूरत भी खत्म।
0: अरे क्यों नाराज होते हैं जी मेरे भोले पतिदेव, भाई आपकी तनख्वाह से तो काम चल नहीं रहा है, आपकी पेंशन से कैसे काम चलेगा?
2: क्या,
0: हमारा गोलू अभी छोटा है, अभी उसे बाप की जरूरत है जी।
2: जरूरत है तो नहीं होगा आलू बंद, मेरा पेट ही नहीं भरता आलू के बिना। अरे आने दो सातवां सिलेंडर 1000 रुपए में, पर आलू पर कैंची कभी नहीं चलेगी।
0: ये भी आ गए सातवें सिलेंडर के दूध बनकर, करीबी में आटा गीला, गैस का 6 दिन का कोटा अब 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा। पहले का जमाना ही अच्छा था, जंगल से लकड़ियां काट कर लाओ, मजे से चूल्हा जलाओ, कम से कम मेहमानों से डर तो नहीं लगता था।
2: क्या भुनर भुनर कर रही हो जी तुम, है? तुम औरतों की यही आदत मुझे बुरी लगती है, खुलकर नहीं बोलती, ऐसा लगता है जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। क्या हुआ?
0: घर में मेहमान है, गैस का हिसाब किताब तो पहले ही गड़बड़ाया हुआ था, पर अब तो पूरा गड़बड़ छाला हो चुका है, कोई प्रधानमंत्री राहत कोष भी तो नहीं होता ऐसे मामलों के लिए।
2: अरे ठीक कहती हो तुम, एक प्रधानमंत्री गैस कोष जरूर होना चाहिए, जिससे उन लोगों की मदद हो सके जिनके यहाँ मेहमान वगैरह आ जाएं। इन लोगों ने सिलेंडर का कोटा फिक्स करते हुए ये नहीं सोचा कि मेहमान भी आएंगे घर में। अरे कभी ठंडे खाने को गर्म भी करना पड़ेगा, कभी त्योहार भी पड़ेंगे, बस फ्लैट ऑर्डर पास कर दिया कि साल भर में 6 सिलेंडर। त्योहारों को गुड बाई बोल दो, मेहमानों को पहचानने से इनकार कर दो, खाना ठंडा हो जाए तो उसे वैसे ही निगल लो। पता चला बाहर की गैस बचाने के चक्कर में पेट के भीतर गैस भंडार बन गया।
0: सुनो सुनो सुनो सुनो सुनो, क्या खूब बात कही है,
2: क्या
0: बातों ही बातों में समस्या का अच्छा समाधान बता दिया।
2: अच्छा
0: अगर कोई टेक्नोलॉजी इजाद हो सके कि इस गैस भंडार को सिलेंडरों में पैक कर ली जाए,
2: क्या
0: तो सारी समस्या ही खत्म। तब तो गैस कंपनियां कहेंगी जो साल में 6 से ज्यादा सिलेंडर इस्तेमाल करेगा उसे 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा।
2: और फिर भी कोई खरीदार नहीं मिलेगा, आखिर मुफ्त की चीज कोई डिस्काउंट में भी क्यों खरीदे।

0: वाह वाह वाह वाह
1: यार, खाने में कुछ मजा नहीं आ रहा आजकल।
0: हाँ, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हो यार आलोक भाई?
1: क्या बताएं यार,
0: क्या हुआ
1: यार दिनेश? हाँ। सरकार इतनी बेरहम कैसे हो सकती भैये?
0: क्या हो गया? क्या
1: अरे मतलब? यही सिलेंडरों का कोटा।
0: हाँ।
1: कहते हैं साल में 6 से ज्यादा नहीं देंगे।
0: हाँ।
1: अरे भैया, जब हम छोटे थे 60 रुपए का आने वाला सिलेंडर अब 500 रुपए का हो चुका है। कोटा करण अलग से, ऊपर से तुर्रा ये कि देश की आर्थिक तरक्की हो रही है। वाह,
0: सही कह रहा है यार तू आलोक। आर्थिक तरक्की तो तभी होगी ना जब हम लोग आधा पेट खाएंगे।
1: सही कहते हो, सही
0: पेट भर खाना खा लेंगे तो देश की तरक्की के लिए पैसा ही नहीं बचेगा।
1: हाँ, ये भी तुमने ठीक कहा। और करनी और करमगत ऐसे भैया के घर में जो हमारे कुकिंग मिनिस्टर बैठी है ना, अब वो खाने का कोटा फिक्स कर रही है। कहती है सुबह 1 से ज्यादा चाय नहीं मिल सकती।
0: जी, जी, जी, जी।
1: टिफिन भी खाना है तो कच्चा माल खाओ, शाम की चाय बाजार में जाकर पियाओ। और कभी कभी तो ये कहती है कच्चा खाना खा करके जलते तवे पर बैठ जाओ।
0: अरे भाई क्या क्या बात कही है आपने, मेरे घर में भी यही सब चल रहा है। 6ठा सिलेंडर खुल चुका है। हाँ। और मेहमानों को भी इसी वक्त आना था। बड़ी मुश्किल से विदा हुए हैं, लगता है उनके घर में भी सिलेंडरों का कोटा खत्म हो रहा था। सोचा कुछ दिन दिनेश भाई के यहाँ चलो।
1: भैया दिनेश, मुझे तो अब मेहमानों से डर लगने लगा है। सोचता हूँ घर में आए मेहमान तो उन्हें होटल अलाउंस दे दूं बिल्कुल कैश, और कहूं भैया ये लो पकड़ो और होटल में जाकर खाना खा पी लो बस।
0: हाँ बॉस, हमारी संस्कृति में कहते हैं अतिथि देवो भव। लेकिन सरकार की वजह से अब मेहमान भगवान नहीं जानी दुश्मन लगते हैं, जो आधे सिलेंडर गैस अपने संग उड़ा ले जाते हैं।
1: यार दिनेश, एक आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में।
0: वो क्या आ रहा है भाई, सुनाओ।
1: देख, क्यों ना हम सब मिलकर एक सिलेंडर इमरजेंसी फंड बनाए। किसी के घर में अगर 6ठा सिलेंडर समय से पहले खत्म हो जाए तो इस फंड से उसकी मदद की जा सके।
0: हाँ। यार मगर इस फंड में सिलेंडर आएंगे कहां से?
1: देख, हमारे यहाँ कई बार लोग छुट्टी पर बाहर जाते हैं ना।
0: जी, जी।
1: कभी कोई काम से बाहर चला गया, कोई अपने गांव चला गया, या अन्य किसी वजह से अगर किसी का कोटे वाला एकाध सिलेंडर बच जाए तो वो इसे हमारे फंड में दान कर दे।
0: वाह।
1: बदले में हम उसका सम्मान समारोह करेंगे, अखबारों में फोटो सहित न्यूज छपवाएंगे और लोगों को बताएंगे कि भैया आज के वक्त में ये है सिलेंडर दानी, यानी सिलेंडर दान महादान।
0: वाह यार, आइडिया तो दास हुए। चल जाए तो सुपर हिट, कम से कम बिना तड़के की दाल खाने से तो छुटकारा मिलेगा।
1: क्यों भैये?
0: हाँ।
1: तुम्हें सिलेंडर दान नहीं करना है क्या?
0: है?
1: अरे दान त्याग मांगता है त्याग, भोग के बूते पर भी कभी कोई दान होता है।
0: जी अरे भाई, हमारी गिनती तो दान लेने वालों में ही रखो यार, तुम्हें देने वालों में तो तुम अपना नाम भले लिखवा लो।
1: देखो भैये दिनेश, सिलेंडर दान महादान।
2: दिनेश और रचना की सारी हिकमतें मिलकर भी 6ठे सिलेंडर की आयु को दीर्घायु न कर सकी। अभी साल पूरा होने में 1 महीना बाकी था, पर अचानक एक रात गैस का बर्नर भभक कर बुझ गया। समझ गए वे दोनों कि पंछी उड़ चुका है। सिलेंडर के भीतर रहने वाली गैस रूपी आत्मा महाप्रायण कर चुकी है। अब यह जो लाल रंग का लोहा बचा है, यह तो नश्वर शरीर है।
3: ओफो, अब क्या करूं? सब्जी अभी कच्ची है, गोलू का दूध भी गर्म नहीं हुआ, सुबह की ओफो, क्या मुसीबत है। अजी सुन रहे हो? सुनना जरा।
0: हाँ, हाँ,
3: देखो ना, गैस खत्म हो गई, पूरा काम पड़ा हुआ है, अब मैं क्या करूं बताओ। इसी बात का डर।
0: एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। सुन लो, लुढ़का कर देखते हैं, लुढ़का कर देखते हैं सिलेंडर को। शायद थोड़ी सांसें बची हो अभी, 5-10 मिनट और जी जाए किसी तरह।
3: संभल के
0: जलाओ।
3: चल गया, जल जल चल गया।
0: आ, आ, आ, आ,
3: ये देखो, ये देखो लॉन

0: ये क्या कर रही हो रचना? आज रद्दी वाले को बुलाया क्या तुमने?
1: रद्दी वाले को नहीं बुलाया है, ये तो चाय बनाने का इंतजाम चल रहा है पति देव जी।
0: यानी अब रद्दी के कागजों से रसोई पकेगी?
1: नहीं, ये केवल सुबह का इंतजाम है।
0: तो
1: इसके बाद अगर कोई रसोई जलानी है तो जाकर कबाड़ी के यहाँ से एक आध क्विंटल रद्दी कागज खरीद कर ले आओ।
0: एक क्विंटल रद्दी कागज?
1: हाँ,
0: यानी 1000 रुपए का बिल। लग रहा है गैस खत्म नहीं हुई है रचना, बल्कि तुम्हारे दिमाग में चढ़ गई है। इतने में तो बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर ही आ जाएगा।
1: वही तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ।
0: क्या?
1: अब सब्सिडी का मोह छोड़िए, क्या पता कल को इन 6 सिलेंडरों पर भी सब्सिडी खत्म हो जाए। तो अभी से हमें आदत डालते रहना चाहिए, वही अच्छा है।
0: पर रचना, हमारे बजट का क्या होगा तब? ये एक्स्ट्रा खर्च कहाँ से आएगा भाई? किसकी जेब काट कर हम अपना घर चलाएंगे है? अब तो कर्मचारी संगठनों को सरकार से कुकिंग अलाउंस भी मांगना चाहिए। भाई खाना खाए बगैर तो कर्मचारी काम कर ही नहीं सकता। तनख्वाह से अनाज तो खरीद सकते हैं पर पका नहीं सकते उसे। पकाने के लिए अलाउंस का हक तो बनता है।
1: चिंता ना करिए पति देव जी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ तो आपकी चिंताएं भी साझा करूंगी। अब सोच लिया है मैंने कि बजट को कैसे बैलेंस करना है।
0: कैसे बैलेंस करना है?
1: तो लीजिए, पेश है। कल से दूध का 1 पैकेट कम आएगा घर में
0: जी।
1: साल भर
0: है?
1: भविष्य के लिए अपने आप को तैयार रखना है। आज नहीं तो कल सब्सिडी वाले सिलेंडर बंद होने ही है। पूरा दूध कच्चा पीने से अच्छा है कि आधा दूध उबाल कर पियो। पका खाना बोनस होगा।
0: पर काम कैसे चलेगा? 2 पैकेट में तो पूरा पड़ता नहीं है, 1 पैकेट में क्या होगा?
1: अरे पढ़ने का क्या है, 4 में भी ना पड़े और छोटी थैली में भी काम चल जाए। आखिर हमें उतने ही पांव पसारने चाहिए जी जितनी हमारी चादर है। कर्ज लेकर घी पीने की फिलॉसफी तो सही नहीं है ना। चाय में दूध थोड़ा कम पड़ेगा, फुल के बजाय कट चाय पी जाएगी
0: जी।
1: गोलू के दूध में भी थोड़ी राशनिंग हो जाएगी, इससे चीनी भी बचेगा और डायबिटीज का खतरा भी खत्म।
0: वाह वाह,
1: बीमार होने का रिस्क कम, यानी दवा दारू का खर्च भी बचा।
0: बहुत खूब,
1: बस हो गया बजट बैलेंस। बजट क्या, सरप्लस कहिए साहब, सरप्लस।
0: क्या बात है।
2: अब घर में 7वां सिलेंडर आ चुका है। पैसे जरूर दुगने से ज्यादा लग गए, पर रसोई तो गर्म हो गई, कुकर की सीटी बज उठी है, चाय उबल रही है, जीवन की ऊष्मा सोंधी सोंधी महक रही है।
1: ये क्या है जी आपके हाथ में?
0: बूझो तो जानू।
1: अब बूझना क्या है, ये तो गैस का चूल्हा है, साफ समझ में आ रहा है। अब ये क्या फितूर सूझी आपको, एक नया खर्च बेवजह। भाई हमारा चूल्हा अच्छा भला तो काम कर रहा है अभी।
0: अच्छा भला नहीं काम कर रहा है धर्म पत्नी जी। अपना चूल्हा कभी ध्यान से देखा है आपने? पुरानी टेक्नोलॉजी का है तुम्हारी तरह ये चूल्हा।
1: तो क्या हुआ, मेरी तरह जलता भी तो है ये चूल्हा।
0: मगर गैस जरूरत से ज्यादा खाता है। पुरानी फिएट कार की तरह ये, जो चलती कम और धुआं ज्यादा देती है। तुमने ध्यान से देखा है कभी इसे? देखा है कभी इसे?
1: क्या
0: बर्तन की पेंदी कितनी काली हो जाती है इससे है?
1: और इस नए चूल्हे में?
0: तुम खुद ही खोल कर देखो इसे, सब समझ में आ जाएगा तुम्हें।
1: अरे इसमें तो लिखा है हाई थर्मल एफिशिएंसी अप टू 75%।
0: और तुम्हारे पुराने चूल्हे में क्या लिखा है ये भी देख लो लगे हाथ।
1: अब इसमें इसमें तो कुछ भी लिखा नजर नहीं आ रहा जी।
0: नहीं आ रहा ना?
1: नहीं
0: आएगा भी नहीं।
1: क्यों?
0: क्योंकि कुछ लिखने लायक होगा तब ना लिखा जाएगा।
1: अरे
0: मुझे भी नहीं मालूम था। वो तो जब से सिलेंडरों की राशनिंग हुई है, चारों ओर रिसर्च शुरू हो गई है कि गैस कैसे बचाई जाए। कंपनियां भी अब स्टार रेटेड चूल्हे बाजार में ला रही हैं जो कम गैस खाते हैं। कई बुकलेट पब्लिश हुए हैं जिनमें बताया जा रहा है कि खाना कैसे पकाया जाए।
1: जिस
0: हाँ जिससे गैस की बचत हो। एक फ्री बुकलेट इस चीलों के साथ भी है, देख लो।
1: यही है ना बुकलेट?
0: हाँ यही है। क्या लिखा है बोलो?
1: लिखा है हाउ टू सेव कुकिंग गैस इन किचन।
0: हाँ, अब इसे जरा पूरा खोल कर पढ़ो तो। हाँ, पढ़ो।
1: देखो ना, गैस बचाने के टिप्स।
0: जी।
1: नंबर एक, गैस का चूल्हा ऑन करने के पहले पकाने की सामग्री अपने पास रख लें।
0: जी।
1: इससे चीजें ढूंढने के दौरान आपकी गैस फालतू बर्बाद नहीं होगी।
0: जी।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है।
0: हाँ।
1: अच्छा, नंबर दो, सेपरेटर की मदद से एक ही प्रेशर कुकर में अनेक चीजें एक बार में ही पकाएं।
0: जी, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
1: वाव।
0: हाँ, आगे बढ़ो।
1: नंबर तीन, चीजें कम पानी में पकाएं। ज्यादा पानी को भाप में बदलने के लिए ज्यादा गैस की बापरे। नंबर चार, बर्तन में रखा पदार्थ जैसे ही उबलना शुरू करे आँच धीमी कर दो।
0: जी जी,
1: सिंपल। ओके, एक और है, एक और। दाल चावल को पकाने के पहले थोड़ी देर भिगो कर रखे।
0: मुझे तो, मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे तो।
1: अच्छा अच्छा, चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। सिक्स्थ वाला,
0: जहाँ तक हो सके छोटा बर्नर इस्तेमाल करें।
1: अच्छा।
0: और बर्नर की समय समय पर यानी वक्त वक्त पर सफाई करें, खास करके तब जब बर्नर की लौ पीली, नारंगी व एक जैसी ना हो।
1: अच्छा।
0: समझी?
1: हाँ।
0: अच्छी लौ की एक पहचान ये है कि इसे नीली, चमकदार व एक जैसी होना चाहिए। एक
1: जैसी, अच्छा,
0: वो नीली। और फ्रिज से निकाली गई चीजों को गैस पर चढ़ाने के पहले कमरे के ताप पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर आ जाने दें।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: इससे गैस की बचत होगी। और अगर इन सभी नियमों का पालन करोगे तो आपका गैस सिलेंडर दीर्घायु होगा, दीर्घायु।
1: नहीं, मजाक नहीं। अरे, इनमें से आधी बातें तो हम पहले से ही जानते हैं।
0: हाँ।
1: पर हम इन्हें करते क्यों नहीं हैं?
0: हाँ, लेकिन अब करना है धर्म पत्नी।
1: हाँ,
0: जी
1: जरूर, जरूर।
0: नहीं तो पता चला अभी दूध आधा हुआ है।
1: हाँ।
0: और चाय आधी हुई है, आगे चलकर कौन भरोसा है कि रोटी भी आधी हो जाए?
1: नहीं नहीं।
0: हाँ, आगे चलकर कौन भरोसा है कि रोटी भी आधी हो जाए?
1: नहीं नहीं।
0: मेहमानों को आने से पहले सैंक्शन लेनी पड़े।
1: क्या?
0: संख्या बतानी पड़े कि कितने लोग आ रहे हैं और कितने दिन के लिए आ रहे हैं, कितने दिन बाद जाएंगे। पहले वीजा लें, फिर टेक ऑफ करें, नहीं तो घर में लैंड करने की
1: इजाजत नहीं मिलेगी।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एलपीजी का सातवां सिलेंडर। इस हास्य नाटिका में भाग लेने वाले कलाकार थे राकेश जमनी, स्वास्तिका चक्रवर्ती, रंजना तिवारी और इरफान सौरभ। लेखक श्रीमती पूनम जायसवाल। ध्वनांकन एवं संपादन अमित कुंदानी और

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सितार वादन, जिसे प्रस्तुत करेंगे शिव पालक तिवारी और विपिन तिवारी। उसके बाद सुगम संगीत सुनिएगा, जिसके अंतर्गत श्री रंग संगीत के कलाकार प्रस्तुति देंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं सितार वादन शिव पालक तिवारी और विपिन तिवारी का।

वेदना का ये भाव जिसका आस्वादन आपने किया। और अब आवाहन करते हैं वाणी और कला की देवी माँ सरस्वती का, उन सच्चे सुरों को हम नमन करते हैं। किसी भी कला के साथ अगर मनुष्य का सरोकार होता है तो वास्तव में उस पर विधाता की विशेष कृपा होती है कि जिस हृदय में कला बसती है वो हृदय स्वच्छ होता है, स्वच्छंद होता है। और प्रभु की कृपा के बगैर साधक तो क्या आस्वादक भी नहीं बन सकते हम। और माँ सरस्वती का आवाहन, उसकी अभ्यर्थना कर रहे हैं इस मंच पर दोनों युवा कलाकार।

दादरे के रूप में प्रस्तुत है। सांवरे आई जाई हो, जमुना किनारे मेरा गांव, जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, मैं हूं ब्रज की नार नवेली। प्रस्तुत कर रही हैं प्रोफेसर रंजना टोनपे आपके समक्ष।

बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपके सामने ब्रज की एक खूबसूरत रचना आपके समक्ष रखी, एक बहुत ही संजीदा साज इस मंच पर उपलब्ध है और उतना ही संजीदा कलाकार, वरिष्ठ कलाकार मंच पर है और बहुत ही नाजुक साज सितार, और सितार को बजा रहे हैं प्रख्यात संगीत साधक पंडित श्रीराम उमड़ेकर। तो प्रस्तुत है बुंदेली लोक धुन पर एक बहुत ही छोटी सी धुन। ये हमारा गौरव है कि इतना बड़ा कलाकार हमारे साथ इस मंच पर उपलब्ध है, तो उनका अभिनंदन स्वागत। तो प्रस्तुत है दादरा बुंदेली लोक धुन के साथ।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए, सुबह सुबह का समय है, आप नींद में हैं, कोई सुंदर सा सपना देख रहे हैं और अचानक कोई आए और धड़धड़ा कर आपको उठा दे। अजी उठा क्या दे, साथ में एक गिलास फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी आपके मुंह पर भी डाल दे तो कितना गुस्सा आएगा ना आपको। ऐसा ही कुछ वाक्य हुआ हमारे नाटक के मुख्य पात्र उमेश के साथ भी, क्योंकि उनका बढ़ता वजन और उनकी बढ़ती खुराक के कारण उनकी सेहत उनके लिए मुसीबत बन गई थी। क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या एक्सरसाइज करें, इस कश्मकश पर आधारित है हमारा हास्य नाटक सेहत बनी मुसीबत। आइए सुनते हैं।
2: अरे ओ कुंभकर्ण के मामा, पूरी दुनिया जाग गई है और तुम हो कि घर्राटे ही भरे जा रहे हो, जैसे कि सोने के लिए ही दुनिया में आए हो।
3: अच्छा, जैसे सुन ही नहीं रहे हो। मैं भी देखती हूँ आज कैसे नहीं उठते तुम।
4: ये क्या भगवान, तुम योगे पिछले जन्म के दुश्मन, ये भी कोई तरीका है जगाने का? इतनी ठंड में बर्फ जैसा पानी डाल दिया, हड्डियां तक फ्रीज हो गई हैं।
2: तुमने कोई रास्ता छोड़ा भी था मेरे पास? सुबह से 5 बार आकर उठा चुकी हूँ तुम्हें, करके फिर सो जाते। साउंड प्रूफ रजाई में आवाज भी तो नहीं जाती होगी ठीक से, पर ये वाटर प्रूफ नहीं है जी, भले मानस की तरह। अब उड़ जाओ तुम तो।
4: तो किसी की नींद न खुले तो कटार भोंक दोगे उसे? भला ये भी कोई शराफत हुई?
2: शराफत शरीफों के साथ की जाती है। और सुनो ये मिस्टर, मैंने जल डाला है आपके ऊपर, कोई कटार वटार नहीं चलाई है।
4: जल? बर्फ की धार को तुम जल कहती हो? कल को उबलता पानी डाल दो मेरे ऊपर और कहो कि जल डाला है, उफनती नदी में ढकेल दो और कहो जल ही में तो ढकेला है, तेल में तल दो इंसान को और कहो कि ऑयल ही तो है। तुम्हारी परिभाषा चलने लगे ना कोर्टों में तो सबके सब हत्यारे साफ बच निकले। अरे छुरी से सब्जी भी कटती है और बकरी भी और इंसान भी, लेकिन क्या इनमें कोई फर्क नहीं दिखता तुम्हें?
2: ए मिस्टर, अपना ये लॉजिक अपने पास ही रखो, हर बात को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से साबित करने पर तुले रहते हो
4: है?
2: और सुनो, जल्दी से फ्रेश होकर जॉगिंग पर निकलो, नहीं तो चाय भी नसीब नहीं होने वाली।
4: क्या?
2: हाँ, 100 आलसी मरे थे ना, तब पैदा हुए थे ये जीव। बस बहस करवा लो इनसे, इसी में फुर्ती दिखती है इनकी, मगर हाथ पाँव हिलाने को मत कहो। अरे कभी ध्यान से अपने आप को शीशे में देखा है? तुम्हारी ये सेहत ही तुम्हारी मुसीबत बनी हुई है।
4: हे भगवान, कैसी हिटलरी बीवी दी है, हाथ में चाबुक लिए घूमती है, ये ना करो वो ना करो, दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो, ऐसा लगता है जैसे परेड कमांडर है ये और मैं एक अदना सा सिपाही। अब तो चाय मिलेगी ना श्रीमती जी, सर्द हवाओं से लड़कर आ रहा हूँ। एक कण चाय का तो बनता है अब।
2: इतनी जल्दी? हाय राम, अभी तो 10 मिनट भी नहीं हुए तुम्हें गए और चले आए चाय मांगने। तुम क्या कोई घोड़ा वोड़ा हो जो 10 मिनट में 3 मील दौड़ाए? अरे कहा था ना तुमसे कि 3 मील से कम नहीं, और ये पेट देखा है अपना, लगता है 14 महीने का है।
4: अरे श्रीमती जी, इतना तो करेक्टर न लूज कीजिए मेरा, मुझ पर अप्राकृतिक आरोप लगाते हुए कुछ तो लजाइए, किसी ने सुन लिया तो दुनिया में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा।
2: हाँ हाँ, लजाती ही तो हूँ मैं आपके बढ़ते हुए वजन से, ये गालों पर लटकती हुई चर्बी के थैलों से। शरीर देखा है कभी अपना? ऐसा लगता है जैसे बरैया काटे से फूल गया हो, कोई फिटनेस ही नहीं है।
3: चलते हो तो लगता है कोई मांस का पहाड़ मटर गश्ती करने निकला है। और बाकी सब पति लोग कितने चुस्त दुरुस्त रहते हैं, स्मार्ट दिखते हैं, जिम जाते हैं, डाइटिंग करते हैं, और एक आप हैं, केवल ईटिंग करते हैं और हमेशा रेस्टिंग ईटिंग रेस्टिंग। भर पेट खाने के बाद भी अगर चार गुलाब जामुन खिला दो ना तो सटका लोगे फटाफट। हाथ पांव नहीं हिलाते और बस मुंह ही चलाते रहते।
5: तो क्या चाहती हैं आप? हवा पीऊं, अखाड़े में जाकर कुश्ती लड़ूं और अपने हाथ पांव तोड़वा लूं?
3: अरे नहीं नहीं, हाथ पांव ही टूट जाएंगे तो जॉगिंग कौन करेगा। पर एक बात तो तय है, खाने में आपके कटौती जरूर होगी। अब पानी भी सर से ऊपर गुजर चुका है। बाप रे।
4: एक फुलका तो और दे दो जी।
5: और हाँ, थोड़ा सा घी भी डाल देना उस पर। सूखी रोटी अलग से नीचे नहीं उतरती जी।
3: घी? और तुम्हें? अरे इतनी चर्बी है तुम्हारे बदन में, अगर इससे घी निकाला जाए ना तो एक कनस्तर तो जमा हो ही जाएगा कम से कम। ऊपर से घी खाना है तुम्हें? अरे ये कहो, मक्के की रोटी और लहसुन की चटनी नहीं परोस रही हूँ तुम्हें? और अगर यही हाल रहा ना तुम्हारा तो उस दिन के लिए भी तैयार रहना तुम। और हाँ सुनो, 5 रोटियां हो चुकी है पूरी तुम्हारी। ये जो लिस्ट टंगी है ना दीवार में, इसी के हिसाब से खाना मिलेगा अब तुम्हें। साथ चलते हो तो सब कहते हैं ये देखो बकरी के साथ गेंडा चला जा रहा है।
4: मुझे गेंडा कहा तुमने? मेरी तुलना तुम उस प्राणी से कर रही हो। अरे हाथी भी कहती ना तो बुरा ना लगता मुझे, कम से कम साफ सुथरा तो जानवर है वो, पर गेंडा इतना भद्दा नाम। मेरा खाया पिया शरीर इतना करता है तुम्हें गेंडा?
3: हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाथी ही सही, जो तुम्हें पसंद हो वही नाम रख लो, पर खाने के मामले में तो नो कम्प्रोमाइज। तुम्हारी फिगर मुझे अब ठीक करनी ही पड़ेगी, शुरू में चेत गई होती ना तो ये नौबत ही ना आती। पर खैर कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा है।
5: कम से कम एक चम्मच चावल तो दे दीजिए श्रीमती जी, पेट का गोडाउन पूरा खाली पड़ा है, भाई भाई चिल्ला रहा है वो, उसकी करुण पुकार कुछ तो सुनिए अन्नपूर्णा जी।
3: मुझे मस्का लगाने की कोशिश न करो जी, मैं अब बिल्कुल पिघलने वाली नहीं। अन्नपूर्णा कहो या महालक्ष्मी, पर मुझसे वरदान की उम्मीद मत पालो, चावल का एक दाना भी नहीं दे सकती अब मैं तुम्हें। और सुनो, तुम चाहो तो 8-10 गिलास पानी जरूर पी सकते हो, तुम्हारा ये गोडाउन फुल हो जाएगा, भाई भाई नहीं करेगा तब वो, मजे से हिलोरे लेना खुश।
4: हाँ खुश, जल प्रलय करने का इरादा है क्या पेट में? हे प्रभु कहाँ हो तुम? कहते हैं जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं, पर ऐसी जोड़ी क्यों बनाई तुमने? इस गाड़ी में एक पहिया बुलडोजर का और दूसरा साइकिल का क्यों लगा दिया? भर पेट खाने को नहीं, नींद भर सोने को नहीं, ऐसी जिंदगी से क्या फायदा भगवान? कुछ तो पुकार सुनो इस दुखियारे की, अगर दुनिया में हो तुम तो प्रकट हो और मेरी मदद करो भगवान।
6: कहो क्या कष्ट है वत्स?
4: कौन कौन?
6: वही जिसे तुम इतनी देर से पुकार रहे थे। मुझसे तुम्हारा कष्ट नहीं देखा गया पुत्र।
4: भगवान क्या सच मुझा?
6: हाँ बेटा उमेश, जब बच्चे दिल से पुकारते हैं तो भगवान को आना ही पड़ता है। कहो क्या कष्ट है तुम्हें?
4: अरे भगवान, अरे प्रभु, कुछ ऐसा कर दीजिए कि मुझे खाने की इच्छा ही ना हो और ना ही जरूरत। ये खाना मेरा दुश्मन बन चुका है प्रभु, बहुत जल्लत उठानी पड़ती है इसके कारण मुझे। ये सेहत मेरे लिए मुसीबत बन गई है। मुझे इस पापी पेट से छुटकारा दिलाइए प्रभु। न खाऊंगा मैं और ना ही मेरा वजन बढ़ेगा। वो भी खुश और मैं भी खुश।
6: ये प्रकृति के विरुद्ध है वत्स। इस संसार में हर एक प्राणी को भोजन करना ही पड़ता है। ये प्रकृति का विधान है। इसे कोई भी नहीं बदल सकता, मैं भी नहीं।
4: अरे तो आपके आने से क्या फायदा हुआ भगवान? मेरी समस्या तो ज्यों की त्यों बनी हुई है।
6: सोचने दो वत्स, मुझे सोचने दो। हाँ ठीक, एक काम हो सकता है।
4: क्या?
6: इससे तुम्हें भोजन भी मिलता रहेगा और तुम्हारी पत्नी को खबर भी ना होगी।
4: अरे जल्दी बताइए प्रभु, जल्दी बताइए, सस्पेंस ना क्रिएट कीजिए।
6: वत्स, तुम्हारी ओर से भोजन ग्रहण करने का काम किसी और को दिया जा सकता है।
4: क्या?
6: वो शख्स भोजन ग्रहण करेगा और तृप्ति तुम्हें मिलेगी।
4: अरे
6: समझो, मिर्ची के बड़े वो खाएगा और मजा तुम लोगे।
4: अरे
6: उसका स्वाद तुम्हें मिलेगा और तुम्हारी भारिया सोचेगी तुम तो भूखे ही हो, पर वास्तव में तुम 56 भोग का आनंद ले रहे होगे। ये सिस्टम वैसा ही है जैसे खाना माँ खाती है पर तृप्ति उसके पेट के बच्चे को मिलती है। सिस्टम नया नहीं है हमारे लिए, बस इसका सॉफ्टवेयर नया डाला है। पहले ये इंटरनल होता था, अब एक्सटर्नल हो गया है।
4: वाह प्रभु, ये तो बिना भोजन के रहने से भी ज्यादा धांसू आइडिया। अगर ऐसा है तो मेरी ओर से ये काम आप दो लोगों को दे दीजिए। वो क्या है ना कि दो लोग होंगे ना, इसलिए एक के बूते मेरा पेट नहीं भरने वाला।
6: नहीं नहीं, एक से ज्यादा की अनुमति नहीं दी जा सकती।
4: क्यों?
6: वन फॉर वन। बच्चे की ओर से भी भोजन एक ही माँ ग्रहण करती है। हाँ, तुम चाहो तो इस काम के लिए कोई बड़े साइज वाला पेट चुन लो। वो तुम्हारी भाषा में कहते हैं ना, जंबो साइज। जैसे एक टिकट पर केवल एक ही मुसाफिर सफर कर सकता है, चाहे उसका साइज कुछ भी हो, उसी तरह तुम अपने लिए भी केवल एक ही खाऊ वीर चुन सकते हो। साइज अपनी मर्जी से देख लेना।
4: पर एक समस्या है भगवान, मेरा वजन भी तो बढ़ेगा था।
6: सो तो होगा ही।
4: हाँ।
6: ये तो प्रकृति का नियम है वत्स। अन्न शरीर में जाकर रक्त व मांस तो बनेगा ही, हाँ चर्बी फैट भी।
4: अरे फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी भगवान, मेरी बीवी तो दौड़ा दौड़ा कर मेरा दम निकाल देगी। सचमुच वो आदमी से मुझे घोड़ा बना देगी, अश्व योनि में डाल देगी मुझे।
6: एक उपाय है इसके लिए।
4: वो क्या है प्रभु?
6: तुम अपने लिए एक व्यायाम वीर भी रख लो। खाओ वीर की तरह। व्यायाम वो करेगा, फायदा तुम्हें मिलेगा। इस तरह तुम्हारे भोजन और फिटनेस दोनों का ही काम दूसरे लोग संभालेंगे, फायदा तुम उठाना।
4: विलम्ब नहीं कीजिए स्वामी, जल्दी से एवमस्तु बोल दीजिए प्रभु।
6: ओके ओके, एवमस्तु एवमस्तु।
4: ये डबल क्लिक क्यों प्रभु? बाकी मामलों में तो आप एक ही बार एवमस्तु का कमांड देते हैं।
6: वत्स, वरदान भी तो दो हैं, फिर कमांड भी तो दो बार ही देना पड़ेगा।
1: वरदान देकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। उमेश खुश था, उसने एक बड़े पेट वाला ब्राह्मण अपनी ओर से भोजन ग्रहण करने के लिए और एक हट्टा कट्टा व्यक्ति अपनी ओर से व्यायाम करने के लिए रख लिया। पत्नी को झूठ बोल दिया कि सपने में भगवान आए थे और आदेश देकर गए हैं कि किसी ब्राह्मण को भोजन कराओ नियमित रूप से, इससे धन धान्य में और स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। व्यायाम पुरुष के बारे में कह दिया कि यह घर का काम करने के लिए नौकर है। पत्नी बहुत प्रसन्न हुई, ब्राह्मण देवता की सेवा करने का उसे मौका मिलेगा और घर के कामकाज से छुट्टी भी। भला और क्या चाहिए था उसे। और अब सुनिए आगे की कहानी।
2: सुनो जी, सुनो तो।
7: क्या है?
2: कुछ नहीं तो कम से कम दूध ही पी लो ना। देख रही हूँ खाना पीना तुमने बिल्कुल ही छोड़ दिया है, मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही है।
5: हाँ, मैं आपको बताना भूल गया था धर्मपत्नी जी, भगवान ने कहा था कि मुझे 2 माह निर्जला व्रत भी करना है।
2: क्या पागल हो गए हो तुम? एक दिन के निर्जला व्रत में तो जान निकल जाती है आदमी की, और तुम कहते हो कि 2 महीने?
5: अरे मुझे कुछ नहीं होगा श्रीमती जी, जब भगवान का आशीर्वाद है साथ में तो फिर चिंता क्या। हाँ, ब्राह्मण देव के खाने पीने में जरूर कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझ लो ब्राह्मण नहीं साक्षात भगवान ही है वो।
2: अरे नहीं होगी जी, नहीं होगी, ब्राह्मण देव तो वैसे भी हमारी संस्कृति में भगवान ही माने जाते हैं।
5: और हाँ, उन्हें सुबह सुबह शुद्ध घी का बेसन का हलवा खिलाना, साथ में मेवे का दूध और काजू की नमकीन। दोपहर के खाने में विशेष ख्याल रखना, दाल चावल, 7-8 रोटी, 1 कटोरी रायता, 2 स्वीट डिश, 3-4 पापड़, खट्टी और मीठी दोनों तरह की चटनी।
2: एक मिनट रुको, ये सब तो तुम अपनी पसंद बता रहे हो।
5: अरे तुमने पढ़ा नहीं है शास्त्रों में, दान उसी चीज का करना चाहिए जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। ये नहीं कि बासी रोटी बच गई है इसे कोई नहीं खा रहा है तो भिखारी को डाल दो, दाल खट्टी हो गई है तो गाय को डाल दो, चीनी जमीन पर गिरकर गंदी हो गई तो चींटी को डाल दो। ये दान नहीं, ना दान है, ना और दान यानी कोई दान।
2: बस बस बस, समझ गई बाबा, सब समझ गई। तुम्हें तो एक सिरा मिल जाए ना किसी भी बात का, बस पकड़ कर हवाई यात्रा पर चल पड़ते हो फुल टैंक के साथ, नॉन स्टॉप। ये बिना कुछ खाए पिए तुम्हें डकार कहाँ से आ रही है जी? और फ्रेश भी रेगुलरली हो रहे हो तुम, ऐसा चंभा न देखा है न कभी सुना।
5: सब भगवान की माया है धर्मपत्नी जी, वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता। अरे वो राई को पहाड़ बना सकता है, वो बर्फ पर घास उगा सकता है। तुमने कबीर का दोहा नहीं सुना है, कमल जो फूले सरह बिन, यानी बिना तालाब के ही कमल खिल रहा है। अरे यहाँ तक कहते हैं कि बिनु पग चलाई सुनई बिनु काना, यानी वो बिना पैरों के चलता है बिना कान के सुनता है। और फिर
2: बस बस बस बस, मेरे तो कान पक गए, सच ही कह रहे हो तुम, मैं भी देख रही हूँ कि बिनु दिमाग के बकैल लड़े बिनु जुबाना।
5: अरे वाह, अरे वाह श्रीमती जी, विद्वानों की सोबत का असर तो आप पर अब होने लगा है। अच्छा एक बात तो बताइए, आपने रात में सब्जी में इतनी मिर्ची क्यों डाली थी? बुरा हाल हो गया मेरा।
2: तुम तो सरप्राइज पर सरप्राइज दिए चले जा रहे हो जी, और भगवान वाली कहावत मनुष्य योनि में साकार भी कर रहे हो। बिना खाए डकार लेते हो, बिना चखे सब्जी का स्वाद बताते हो, अल्लाहुद्दीन का जिन पाल रखा है क्या तुमने?
5: अरे नहीं, सब भगवान की माया है। तुमने श्लोक नहीं सुना है संस्कृत का, मूकम करोति वाचालम पंगु लंघ्यते गिरम। अरे वही कि गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा पहाड़ लांग जाता है, जिस पर भगवान की कृपा हो जाए वो भला क्या नहीं कर सकता।
2: पता नहीं क्या हो रहा है ये सब, मुझे तो तुम भी अब बड़े अजीब लग रहे हो, ऐसा लगता है जैसे कोई भूत प्रेत पाल रखा है तुमने।
5: अरे ब्राह्मण देव, जरा तीखी मिर्ची कम खाया करो यार। अरे तुम इंसान हो के तोता, हरी मिर्ची कचर कचर चबाते हो, हालत खराब करके रख दी है मेरी। नहीं यार, ये आदत तो छोड़नी होगी तुम्हें।
8: अरे जजमान,
7: अगर इतना ही प्रतिबंध लगाना है तो आप कोई दूसरा ब्राह्मण ढूंढ लीजिए। हाँ बताई देते हैं हम, खाने की कमी नहीं है हमें, खाना तो हम अपनी पसंद का ही खाऊंगा ना कि आपकी पसंद का। मर्जियों खिलाइए, नहीं मर्जियों मत खिलाइए, मैं ये चला।
5: अरे अरे नहीं नहीं ब्राह्मण देव, आप तो नाराज होने लगे। मैं तो विनती कर रहा हूँ आपसे कि जो कुछ भी आप खाते हैं उसका असर मुझ पर होता है। आखिर माँ भी तो अपने पेट के बच्चे का ख्याल रखती है ना खाने पीने में।
7: अच्छा अब समझ गया मैं, तो जजमान आप मेरे पेट के बच्चे हैं। कल को माई माई करते हुए आ जाना मेरे पास और बोलेंगे तुम जननी मैं तेरा बालक। अरे पलीता लगा देंगे आप तो मुझे, महीने भर खिलाएंगे और जीवन भर खुद खाएंगे। वाह रे वाह।
5: अरे मैं तो मिसाल दे रहा हूँ ब्राह्मण देव, आप निश्चिंत रहें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं।
7: बाप रे बड़ी खतरनाक मिसाल है आपकी, त्राही माम प्रभु। इस सीधे साधे ब्राह्मण को आपने किस संकट में डाल दिया, बचाइए प्रभु इससे।
4: क्या चल रहा है पहलवान, वर्जिश मर्जिश ठीक से चल रही है कि नहीं?
8: सब ठीक चल रहा है बॉस, बस भाई साहब टाइम पे खाना नहीं देती हैं और मेरी सेहत का ख्याल ही नहीं रखती हैं। जानते हैं आप, सब तर माल उस ब्राह्मण को खिलाती हैं और मेरे सामने यूं ही कुछ रूखा सूखा डाल देती हैं। सोचती हैं घर का नौकर है, आराम से चुपचाप बैठ के खा लेगा।
4: उसकी चिंता तू क्यों करता है भाई, टेबल के नीचे से मनी सरकाता हूं ना मैं तुझे। हाँ। बाजार जाकर तबीयत से खा पी लिया कर, मगर वर्जिश से कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सुबह की जॉगिंग सूरज निकलने के पहले ही खत्म हो जानी चाहिए, हाथ की मछली निकलनी चाहिए मेरी।
8: हाँ।
4: समझे?
8: हाँ।
4: पेट की चर्बी छटनी चाहिए मेरी। आखिर मेरे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न तो चाहिए ना मुझे।
8: अरे जान लगाकर तो मेहनत करता हूँ बॉस मैं, अब तबीयत कभी गरम नरम रहती है तो आराम तो करना ही पड़ेगा। आखिर मशीन भी गरम होने के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाती
4: बस,
8: है।
4: बस बस कर बस कर, मुझे लेक्चर नहीं रिजल्ट चाहिए, नहीं तो समझ ले कि नौकरी से बाहर तू।
8: नहीं
1: उमेश के दोनों ही कर्मचारी बेवफा निकले। ब्राह्मण देव दिल खोल करके भोग लगाते और पेट दुखता इस गरीब का। तीखा खाना वे खाते और एसिडिटी होती उमेश को, क्योंकि उनका पेट अब दूसरों के हाथ में था जो उन्हीं की दया पर निर्भर था। दूसरी ओर पहलवान भी अव्वल दर्जे का कामचोर था, केवल बातों की तनख्वाह ले रहा था और ज्यादातर घोड़े बेच करके सोता रहता। उमेश का वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा था। ये तो वही वाली मिसाल हुई कि काम के ना काज के और दुश्मन अनाज के। कई बार तो ऐसी हद हो जाती कि उमेश के लिए परेशानी खड़ी हो जाती। सुनिए आगे की कहानी।
9: पेट में जैसे भूचाल आया हुआ है। अरे एक गिलास गरम पानी के साथ आजमाइन दे दो जी।
2: अरे बाप रे बाप, मेरा हार रहने पर तुम्हारा ये हाल है? मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। सुनो कहीं चोरी छिपे तुम?
9: क्या बात करती है धर्मपत्नी जी, अरे जब कोई बंदिश हो तो चोरी करना समझ में भी आती है, पर मैं तो अपनी मर्जी से व्रत कर रहा हूँ। तुमने कहाँ रोका है मेरा खाना?
2: सब कुछ बड़ा अजीब चल रहा है जी, मेरी तो बुद्धि गुम हो गई है।
9: अरे बुद्धि फिर जगा लेना भाई, अभी मेरे पेट के दर्द से तो मुक्ति दिलाओ मुझे, बम के गोले फूट रहे हैं इसमें।
2: हाँ हाँ ठीक है ठहरो, बस एक मिनट में लाती हूँ।
9: अरे कोई किसी का नहीं होता दुनिया में, सब मतलब के यार हैं। इतना मनाया साले ब्राह्मण को, मस्का लगाया कि भाई मेरा ख्याल रखना, मगर तरमाल देखकर आपा खो बैठता है। 24 घंटे ठूसने पर तो ये हाल है इसका, ऐसे टूटता है जैसे 7 जन्म का भूखा हो, और भुगतना मुझे पड़ता है।
2: क्या बड़बड़ कर रहे हो जी, तबीयत ज्यादा खराब लग रही है क्या? ये लो गरम पानी और ये पकड़ो अजवाइन, थाक कर पानी पी लो जल्दी से, अभी आराम हो जाएगा ना।
9: गुड़गुड़ाहट शुरू हो गई है पेट, अभी गल जाएगा सब माल।
2: क्या गल जाएगा?
9: माल।
2: कौन सा माल छुपा रखा है तुमने अपने पेट में? सुनो एक काम करो, डॉक्टर को दिखा दो ना, समझ में तो आए कि रोग क्या है।
9: डॉक्टर? अरे नहीं नहीं, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर नहीं।
2: क्या डॉक्टर?

0: नहीं, डॉक्टर नहीं।
1: अब पेट न रहा, मेरा शरीर अब मेरा शरीर न रहा, सब गड़बड़ भगवान का किया हुआ है।
0: सुनो सुनो सुनो, एक काम करती हूँ, इन दोनों मुस्टंडों को घर से निकाल बाहर करती हूँ। जब से ये दोनों घर में आए हैं ना, तब से गड़बड़ ही गड़बड़ हो रही है। तुम खाते कुछ हो नहीं, पर वजन बढ़ता जा रहा है तुम्हारा, जैसे हवा से ही पोषक तत्व खींच रहे हो तुम।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा न करना, ऐसा न करना, भगवान का मामला है, सरकारी मामला होता तो थोड़ी चीटिंग वीटिंग भी चल जाती, पर तुम तो जानती हो कि
0: तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, हमारे पल्ले तो नहीं पड़ती तुम्हारी ये सब बातें। मैं तो चल घर के काम के लिए।
2: पहलवान, अपनी ड्यूटी के साथ दगा कर रहे हो तुम, घर से दौड़ने के बहाने निकलते हो और बागीचे में जाकर आंखें सेकने बैठ जाते हो, सारी रिपोर्ट है मुझे।
3: बिल्कुल गलत है बॉस, भरोसा ना हो तो मेरे साथ आप भी निकला करिए सवेरे सवेरे, खुद ही तसल्ली कर लिया करिए ना, मैं जॉगिंग करता हूँ या तो।
2: चुप चुप रह, चुप रह, ऐसा ही दौड़ने वाला होता मैं तो तुझे क्यों ड्यूटी पर रखता। जानता है ना कि बॉस आलसी है, उठ नहीं सकता सुबह सुबह, उंगली तक हिलाने के पहले 100 बार सोचता है ये, इसीलिए ना मुझे फटके दे रहा है तू। पर मैं सब समझता हूँ, सब समझता हूँ मैं, पहले भी कहा था मैंने कि रिजल्ट ओरिएंटेड है तेरा अपॉइंटमेंट। पेट देख रहा है मेरा?
3: हाँ,
2: देख,
3: देख रहा हूँ।
2: तेरे आने के बाद वजन 90 किलो की सुई छोड़कर 110 टच कर रहा है, अब तो कमजोर कांटे पर खड़ा होने में भी डर लगता है। साली गाड़ी तक का एवरेज डाउन हो गया अब तो इस बॉडी के कारण।
3: तो मैं क्या कर सकता हूँ बॉस, मेहनत और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी तो कर रहा हूँ, आपकी बॉडी ही फैट टैंक है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ।
2: ड्यूटी करता है तू, ड्यूटी करता है तू, अरे ये क्लोज सर्किट कैमरा लगा दूं ना तेरे पीछे तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब से मैं लगता हूँ तेरे साथ, देखता हूँ कैसे काम चोरी करता है। चलो उठा डंबल, उठा डंबल और भांज तेल लगाकर।
3: हाँ हाँ, मैं भी साबित कर दूंगा मैं ईमानदारी से ड्यूटी करता हूँ, अब देखो मेरा कमाल। ध्यान से देखना बॉस।
2: हाँ हाँ हाँ हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, बक बक मत कर, काम कर। चल चल चल, अरे और
3: देख लेना बॉस।
2: हाँ हाँ ठीक है,
3: ईमानदार हूँ मैं। बस बस थक गए मैं, अब और नहीं, जान निकल गई मेरी।
2: चालू रे नॉन स्टॉप, बहुत तड़ी मारी है अब तक तूने, अगर रेगुलर एक्सरसाइज करता होता ना तू तो इतनी जल्दी हवा खराब होती तेरी, 500 के नीचे सांस नहीं लेने दूंगा तुझे।
3: बॉस मैंने कर रहा आपकी नौकरी, मैंने कर रहा आपकी नौकरी वोकरी, पेट पालने के लिए आया हूँ यहाँ पर, जान देने के लिए नहीं आया। मेरा हिसाब कर दीजिए आप।
2: हिसाब? कैसा हिसाब? वजन बढ़ाने का हिसाब, चर्बी चढ़ाने का हिसाब, अरे जवान इंसान को बुढ़ा बनाने का हिसाब, अरे अपना काम तो दिखा पहले तू।
3: अच्छा, ये ठीक नहीं कर रहे हैं बॉस आप, गरीब का पैसा मारना ठीक बात नहीं।
2: अच्छा,
3: अरे इतना भागा होता ना मैं तो आर्मी में भर्ती हो गया होता और ये दिन देखने की नौबत ही नहीं आती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं भाई साहब को सच बताऊंगा, फिर वो ही करेंगे आपका हिसाब।
2: अरे अरे अरे भाई साहब की धमकी क्यों देता है भाई? देख जब देख मेरी कमजोर नस पकड़ लेता है तू, सारी पोल पा गया है तू मेरी। खर बोल, कितने पैसे निकलते हैं तेरे? बोल।
3: अब आए ना लाइन पे।
2: बोल।
3: पैसा खाने चले थे मेरा। आज का लेकर ये हो गया 4,600। और ये अभी जो डंबल उठाए और ये भांजी और ये तेल लगाकर
2: ठीक। ये पकड़ 1,000 के 5 नोट। बच्चे पैसे तेरे मुंह बंद रखने की फीस है, और अब जान छोड़ मेरी।
3: अरे अभी छोड़े देते हैं बॉस, ये लीजिए। बाय बॉस, थैंक यू।
1: अरे भगवान, मैं थक गया आपके वरदान का बोझ उठाते उठाते। अरे ऐसा तो शाप भी ना मिले किसी को। प्रकट हो प्रभु और इस संकट से उबारो, मुझे उबारो भगवान। भगवान
4: वत्स, तुमने मुझे पुकारा वत्स। अब क्या समस्या है तुम्हारी? भोजन और आराम सब तो मिल रहा है तुम्हें, भला और क्या चाहिए तुम्हें?
1: अरे प्रभु, आप क्या समझो मेरी विपदा, मेरा पेट उठाकर आपने गैर के हवाले कर दिया। अरे हराम का पेट जैसा बुरा इस्तेमाल हो सकता है, वैसा कर रहा है वो बामन देव। खुद तो तरमाल अंटी करता है और दर्द मुझसे भगवाता है, और पहलवान अरे चोरी और सीना जोरी दोनों कर रहा है। ये सेहत मुसीबत बन गई है मेरे लिए प्रभु। नहीं प्रभु नहीं, अब तो अपना वरदान वापस ले लो आप।
4: वापस?
1: हाँ।
4: क्या तुम भगवान का सिस्टम भी इंसानों जैसा समझते हो कि पसंद ना आने पर माल वापस? हमारे यहाँ ट्रायल वर्जन और डेमो का कोई रिवाज नहीं है। हम भगवान हैं, जो देते हैं सो फाइनली देते हैं, और बिका हुआ माल वापस नहीं देते।
1: और फिर तो आप मुझे उठा लो प्रभु, मुझे उठा लो, क्योंकि आपके वरदान ने मेरी जिंदगी जहन्नुम कर रखी है। ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी भैया।
4: ये भी नहीं हो सकता वत्स, निर्धारित आयु के पहले तो यमराज भी किसी को नहीं उठा सकते। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी भले ना हो, पर रूल ऑफ तो है ही। ब्रह्मा विष्णु महेश सब इसका पालन करते हैं, रूल यानी रूल।
1: कोई एक्सेप्शन निकालिए प्रभु, कोई एक्सेप्शन। आखिर सावित्री के मामले में तो ऐसा किया ही था ना आपने, उससे मुश्किल केस है मेरा।
4: तुमने तो धर्म संकट में डाल दिया पुत्र, ऐसी नजीर रख दी मेरे सामने कि कोर्ट कचहरी वाले आदमी हो ना। गलती मेरी ही है, मुझे पहले ही सतर्क रहना चाहिए था तुमसे। खैर सोचता हूँ कुछ। हाँ ये हो सकता है।
1: जी जी,
4: तुम बंदा बदल सकते हो।
1: क्या?
4: एक काम करता हूँ।
1: हाँ हाँ।
4: ब्राह्मण का रोल तुम्हारी पत्नी को दे देता हूँ।
1: अरे ऐसा गजब ना ढाइए प्रभु, ऐसा गजब ना ढाइए प्रभु, वो तो मुझे भूखे ही मार डालेगी। साल भर में आधे दिन तो वो व्रत रखती है, सावन के 16 सोमवार, एकादशी, चतुर्थी, पूर्णिमा, शिवरात्रि, रामनवमी, नवरात्रि, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार, रविवार को भला। मुझे उम्र के पहले उठाना है क्या आपको?
4: तो क्या किसी और को?
1: नहीं नहीं प्रभु, इस मुसीबत से बचाइए। अरे पता चला सांपनाथ से तो बचे और नागनाथ के हत्ते चढ़ गए। दारू वो पिएगा, मुंह से बदबू मेरे आएगी, मटन वो खाएगा, हजामत में ही उतरेगी। नहीं प्रभु नहीं। नहीं नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। अब मुझे मेरी आजादी लौटा दो प्रभु। मैं अपनी डाइट व वेट खुद ही कंट्रोल कर लूंगा प्रभु। रहम करो भगवान मुझ पर।
4: तथास्तु तथास्तु।
5: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हास्य नाटक सेहत बनी मुसीबत, प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष, जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूं कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
2: ये मेरा इंडिया।
1: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। संध्या के ठीक 5 बजे हैं। हमारी सांध्यकालीन सभा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस सभा में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का सिलसिला आरंभ हो इसके पहले आइए मैं आपको बता रही हूं कि आज शाम को आप रेडियो आजाद हिंद से कौन कौन से कार्यक्रम सुनने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ हमारे कार्यक्रम अक्षय निधि में। भक्ति संगीत का आनंद लीजिएगा आप मेरे साथ, यानी आपकी अपनी पूर्वा के साथ। शाम 6 बजे का वक्त होगा कार्यक्रम वतन का राग का। श्रोताओं, आज बाल कृष्ण भट्ट जी की जयंती है तो उन्हीं पर आधारित होगा हमारा कार्यक्रम वतन का राग। 6:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। आज इस कार्यक्रम में बातें होंगी रानी दुर्गावती के गौंड राज्य के इतिहास की। टेक गुरु, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 7 बजे। आज का विषय है गूगल सुपर सर्चर। शाम 7:30 बजे सुनिएगा हमारा कार्यक्रम भारत विभूति। आज की भारत विभूति हैं अमीय कुमार दास। रात 8:30 बजे सुनिएगा हमारा कार्यक्रम काव्य गुंजन। आज काव्य गुंजन में आप सुनेंगे रश्मि रथी का भाग 2। रात 9:00 बजे सुनिएगा हमारा कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक। आज के वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर श्री राम शंकर अभयंकर। रात्रि 9:30 बजे का वक्त होगा कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद का। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रेडियो आजाद दिन से आज सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले हमारे कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद को, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए, आइए सुनते हैं कार्यक्रम अक्षय निधि।
0: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 132वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं परुच्छेप देवोदासी, देवता हैं इंद्र, पर्वत और शेष, छंद है अत्यष्टि।
2: त्वया वयम् मघवन् पूर्वे धन इन्द्रत्वोताः सासह्याम प्रतन्यतो वनुयाम वनुष्यतः नेदिष्ठे अस्मिन्न हन्यधिवोचा नु सुन्वते अस्मिन्यज्ञे वीचयेमा भरे कृतम् वाजयन्तो भरे कृतम्। हे ऐश्वर्यवान इंद्रदेव, आपके संरक्षण में हम लोग प्रथम संग्राम में ही आक्रमणकारियों पर विजय प्राप्त करें। आप हिंसक वृत्ति के दुष्टों का संहार करें। इन समीपस्थ दिवसों में आप साधकों को प्रेरित करें। श्रेष्ठ कर्मों के लिए संघर्ष करने वाले

0: ते सद्रयक संतु रातयो भद्रा भद्रस्य रातयः। सुख प्राप्ति हेतु किए जाने वाले संघर्षों, श्रेष्ठ मनुष्यों के उच्च लक्ष्यों, प्रभात वेला में जागने वालों के व्यवहारों तथा सत्कर्मों का निर्वाह करने वालों के नित्य कर्मों में बाधा डालने वाले आलस्य प्रमादादि शत्रुओं को इंद्रदेव ने ज्ञान की तीक्ष्ण धारा से समाप्त किया। इससे समस्त मनुष्यों में इंद्रदेव प्रशंसनीय हुए। हे इंद्रदेव, आपके समस्त ऐश्वर्य हमें प्राप्त हों। आप जैसे मंगलकारी के सभी अनुदान हमारे लिए मंगलमय हों। तत्तु प्रयः प्रत्नथा ते शुशुक्वनम् यस्मिन् यज्ञे वार मकृण्वत् क्षयमृतस्य वारसि क्षयम्। वि तद्वो चेरध द्वितान्तः पश्यन्ति रश्मिभिः स घा विदे अन्विन्द्रो गवेषणो बंधु भिक्षिद भ्यो गवेषणः। हे इंद्रदेव, जिस यज्ञ में आपने प्रतिष्ठित स्थान बनाया है वहां पूर्ववत ही आपके निमित्त तेजस्वी अन्न उपलब्ध हों। सत्य की महिमा से सुशोभित उच्च स्थान पर पहुंचने वाले आप उसी सत्य मार्ग को ही दिखाएं। सूर्य रश्मियों से सभी लोग दोनों लोकों के मध्य में स्थिर मेघ रूप में आपके ही दर्शन करते हैं। आप ही गौवों के प्रदाता होने के साथ साथ सत्य धाम के ज्ञाता हैं तथा यजमानों के लिए गौवों को देने वाले हैं, ऐसा सुप्रसिद्ध है। नु इत्था ते पूर्वथा च प्रजाच्यम् यदंगिरोभ्यो वृणोरप वज्रमिन्द्र शिक्षन्नपव्रजम् एभ्यः समान्या दिशास्मभ्यं जेषि योत्सि च सुन्वद्भ्यो रंधयाकं चिदव्रतं हृणायन्तं चिदव्रतम्। हे इंद्रदेव, पहले के समान ही आपकी पराक्रम शक्ति प्रशंसनीय हो। जो आपने अंगिराओं को गौ समूह जीत कर दिया तथा उन्हें ले जाने का मार्ग दिखाया, वैसे ही आप हमारे लिए भी ऐश्वर्यों को जीत कर प्रदान करें। आप यज्ञ विरोधियों तथा क्रोध युक्त पापियों को यज्ञादि श्रेष्ठ कर्म करने वालों के हित में विनष्ट करें। सम यज्जनान क्रतुभिः शूर ईक्षयद् घने हिते तरुषन्त श्रवस्यवः प्रयक्षन्त श्रवस्यवः तस्मा आयुः प्रजा वदिद्बाब्दे अर्चन्त्योजसा इन्द्र ओक्यं दिधिषन्त धीतयो देवा अच्छा नधीतयः। जब बलशाली इंद्रदेव ने पराक्रम युक्त कर्मों द्वारा मनुष्यों की तरफ निहारा, तब अन्न प्राप्ति के इच्छुक मनुष्यों ने युद्ध के प्रारंभ होने पर शत्रुओं को विनष्ट किया। उस समय यशः अभिलाषियों ने इंद्रदेव की विशेष अर्चना की। आप अपनी सामर्थ्य शक्ति से शत्रुओं को विनष्ट करके श्रेष्ठ संतान एवं दीर्घायुष्य प्रदान करें। श्रेष्ठ कर्मों के निर्वाहक मनुष्य इंद्रदेव को ही अपना एकमात्र आश्रय दाता मानते हैं। युवम तमिंद्रा पर्वता पुरो युधा यो नह प्रतन्यादप तंत मिदधम वज्रेण तंत मिद्धतम दूरे चत्ताय छत्सद्गहनम यदि नक्षत अस्माकं शत्रून परिशूर विश्वतो धर्मा दर्शिष्ट विश्वतः। युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़कर पराक्रम दिखाने वाले हे इंद्रदेव और पर्वत, आप दोनों युद्ध करने वाले प्रत्येक शत्रु को अपने तीक्ष्ण वज्र के प्रहार से यम लोक पहुंचाएं। हे वीर, शत्रुओं द्वारा चारों ओर से घिर जाने पर हमें उनसे मुक्त कराएं। पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग तीनों लोकों में व्याप्त हे देव, आपके अनुग्रह से हम सभी याजक श्रेष्ठ वीर पराक्रमी संतानों से युक्त होकर अपार धन वैभव से लाभान्वित हों।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 132वें सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।

90.1 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। अब ये समय है भक्ति संगीत का। भक्ति संगीत लेकर उपस्थित हूँ श्रोताओं, मैं आपके बीच आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। आइए कार्यक्रम को आरंभ करें इस प्रार्थना के साथ। असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माम अमृतम गमय। हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, और हमारे कर्म ऐसे हों कि मृत्यु से हम अमरता को प्राप्त करें।

प्रार्थना, प्रार्थना हम सदा ही कुछ मांगने के लिए ही ना करें, अपितु ईश्वर ने जो कुछ दिया है उसके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए ही प्रार्थना होना चाहिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ और आनंद ले रहे हैं भक्ति संगीत का। श्रोताओ, आज मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो मित्र पूर्वा। क्या कभी आपने नटनी जो कि तरह तरह के करतब दिखाती है उसे देखा है? वो नटनी बांस पर चढ़ते समय ढोल भी बजाती रहती है और गायन भी करती रहती है, लेकिन इन सब क्रियाओं को करते हुए भी उसका ध्यान निरंतर अपने पैरों पर ही रहता है। ठीक इसी तरह गाने बजाने की तरह हमें भी अपने सारे काम करते रहना चाहिए और उसके पैरों के ध्यान की तरह हमें भी परमात्मा में अपना मन लगाए रखना चाहिए।

इस जीवन में प्रसन्न व्यक्ति वो है जो लगातार अपना यानी स्वयं का मूल्यांकन करता रहता है, और दुखी व्यक्ति तो वही है जो केवल और केवल दूसरों का मूल्यांकन करता रहता है। तो आवश्यकता है स्वयं

जीवन में थोड़ा सा भी कुछ परिवर्तन होता है तो वो बड़ा ही हमारे लिए कष्टकारक हो जाता है। परिवर्तन जितना कष्टकारी होता है उतना ही आवश्यक भी होता है। यदि हम अपनी योग्यता को परखना चाहते हैं तो ये परिवर्तन ही इसका अवसर देता है और साथ ही साथ और अधिक विकसित होने का हमें मौका भी प्रदान करता है। तो परिवर्तन से घबराई नहीं, बल्कि उसे अपने व्यक्तित्व को निखारने का एक अवसर मानें।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ और आनंद ले रहे हैं भक्ति संगीत का। आज का ये कार्यक्रम आइए इस प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यानी कि सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी कोई कष्ट न देखें, सभी को अच्छा देखने को मिले और हे प्रभु किसी को भी कोई दुख न हो। इस प्रार्थना के साथ ही दीजिए अनुमति भक्ति संगीत यही समाप्त करने की। पूर्वाखले को नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल देश के लिए, सुनते रहिए।
1: क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना।
2: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सन 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम, विद्रोह की हुंकार से अंग्रेजी राज की नींव हिल उठी थी और इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की पुरजोर कोशिश। इसी कालखंड में 13 वर्ष का एक बालक अंग्रेजों की बर्बरता को अपनी आंखों से देख रहा था। प्रयागराज के चौक इलाके में अनगिनत क्रांतिकारियों को सरेआम पेड़ से लटका दिया गया था। उस बच्चे ने अपनी आंखों से कितने ही देशभक्तों के शवों को पेड़ से लटकते हुए देखा और यहीं से उसके मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत का भाव पैदा हो गया। आने वाले समय में ये बालक एक सफल पत्रकार, निबंधकार, उपन्यासकार और नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिन्हें हम पंडित बालकृष्ण भट्ट के नाम से पहचानते हैं। वो बेशक राजनीति में नहीं आए, लेकिन इस घटना ने उनके एक दृढ़ चरित्र का निर्माण किया। वो आजीवन गलत के मुखर विरोधी रहे, पूरी बेबाकी से गलत को गलत और सही को सही कहा करते। अपने इसी तेवर और साहस के साथ उन्होंने आजीवन पत्रकारिता और साहित्य सेवा की। पंडित बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के उन नायक रचनाकारों में से एक हैं। वो भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में स्थान रखते हैं। इस तरह पंडित बालकृष्ण भट्ट हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार और हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रगण्य हैं। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने जनधर्मी व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा, नया रंग रूप और मानस प्रदान किया। इस युगांतरकारी कार्य में वो अकेले नहीं थे। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम घन, राधाचरण गोस्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकार उनके साथ थे। लेकिन ये एक स्थापित मान्यता है कि पंडित बालकृष्ण भट्ट अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय, मुखर और लंबे समय तक संपूर्ण निष्ठा के साथ साहित्य सेवा करने वाले एक समर्पित साहित्यकार थे। सन 1844 में प्रयागराज में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित बेनी प्रसाद भट्ट था और माताजी का नाम था पार्वती देवी। उनके पिता एक व्यापारी थे, जबकि माता एक सुसंस्कृत विदुषी महिला थीं, जिनके कारण बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन के प्रति विशेष रुचि और लालसा जागी। बचपन से ही उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रारंभ में घर पर ही उन्हें संस्कृत की शिक्षा प्रदान की गई और फिर प्रयाग के मिशन स्कूल से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। वो अत्यंत मेधावी छात्र थे। शिक्षा के साथ ही उन्होंने संस्कृत, व्याकरण और साहित्य का भी गहन अध्ययन किया। संस्कृत के साथ ही उन्हें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और फारसी भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन का कार्य भी किया। आगे चलकर दूसरे स्कूलों में उन्होंने संस्कृत का अध्यापन कार्य भी आरंभ किया था, लेकिन अपने सिद्धांतों, अपनी विचारधारा और दृढ़ स्वभाव के कारण नौकरी उन्हें कभी रास नहीं आई और उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दिया तथा नई राह की तलाश में चल पड़े।

पंडित बालकृष्ण भट्ट ने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। इसी के चलते उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। चूंकि उनका विवाह हो गया था, इसलिए अब उन्हें अपनी बेकारी खलने लगी थी। तब वो व्यापार करने के लिए कलकत्ता चले गए, लेकिन उनका मन व्यापार में नहीं रमा और वो वापस लौट आए। साहित्य ही वो विषय था जिसमें उनका मन लगता था। वो संस्कृत साहित्य के अध्ययन और हिंदी साहित्य की सेवा में जुट गए। पिता की मृत्यु के पश्चात ये अपेक्षा उनसे की गई कि वो अपना पैतृक व्यवसाय संभालेंगे। इस व्यवसाय के कारण भी उन्हें गृह कलह का सामना करना पड़ा। उन्होंने गृह त्याग दिया। घोर आर्थिक संकट का सामना करने के बावजूद उन्होंने निरंतर साहित्य सेवा की। अध्यापन कार्य के साथ ही भारतेंदु जी से प्रभावित होकर उन्होंने हिंदी साहित्य सेवा का व्रत ले लिया था। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला, जिसका संपादन वो स्वयं करते थे। मासिक पत्रिका हिंदी प्रदीप का पहला अंक छात्रों से मिले 5-5 रुपए के चंदे से सन 1877 में प्रकाशित हुआ। इसके एक अंक की कीमत 4 आने थी। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप द्वारा निरंतर 32 वर्षों तक हिंदी की सेवा की। उनकी कलम ब्रिटिश हुकूमत को भयभीत किया करती थी। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध हिंदी प्रदीप पत्र लोगों के भीतर राष्ट्रीयता का भाव भरा करता था। दरअसल उन्होंने हिंदी के प्रचार के लिए प्रयाग में हिंदी वर्धिनी सभा की स्थापना

ना भी की थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा की ओर से ही उन्होंने हिंदी प्रदीप पत्र निकालना प्रारंभ किया था। ये एक साहित्यिक पत्र था जिसमें हास्य व्यंग्य और गंभीर दोनों प्रकार की साहित्यिक रचनाओं का प्रकाशन होता था। हिंदी प्रदीप के माध्यम से भट्ट जी ने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के साथ ही राष्ट्रीय चेतना को बलवती बनाने का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक पद्य रचना तैयार की जो हिंदी प्रदीप के मुख्य पृष्ठ पर निरंतर छपती रही। सरकारी नीतियों, ग्राहकों और आर्थिक तंगी से उत्पन्न अनेक समस्याओं का सामना करते हुए पंडित बालकृष्ण भट्ट ने 32 वर्षों तक हिंदी प्रदीप का संपादन प्रकाशन जारी रखा। हिंदी प्रदीप के आरंभिक अंक जहां भारतेंदु युग से पूर्णतः प्रभावित हैं, वहीं द्विवेदी युग में प्रकाशित हिंदी प्रदीप के अंकों में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा निर्देशित साहित्य विधाओं की झलक दिखाई देती है। इस तरह पंडित बालकृष्ण भट्ट ने आधुनिक हिंदी साहित्य के दो महत्वपूर्ण युगों भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में अपनी उत्कृष्ट साहित्यिक पत्रकारिता के माध्यम से अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज करा के एक अलग पहचान स्थापित की। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सन 1906 में सरस्वती पत्रिका के अगस्त के अंक में हिंदी प्रदीप पर लेख भी लिखा था, जिसमें पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा स्थापित हिंदी वर्धिनी सभा और हिंदी प्रदीप निकालने का उल्लेख किया गया था। सरस्वती के पूर्व संपादक पंडित देवीदत्त शुक्ल ने भी लिखा था कि पंडित बालकृष्ण भट्ट हिंदी के अत्यंत स्वाभिमानी लेखक थे, स्वदेश और अपनी संस्कृति से उन्हें अत्यधिक प्रेम था। सच तो ये है कि हिंदी साहित्य के लिए व्यक्तिगत रूप से त्याग करने वाले पंडित बालकृष्ण भट्ट जैसे साहित्यकार और पत्रकार हिंदी साहित्य जगत में कठिनाई से ही मिलेंगे। उन्होंने कलम के माध्यम से मां भारती की अद्भुत सेवा की।

हिंदी प्रदीप में छपने वाले तीखे लेखों से ब्रिटिश सत्ता बेचैन थी। सन 1909 में हिंदी प्रदीप के अप्रैल के अंक में माधव शुक्ल की कविता बम क्या है छपी थी। इससे नाराज होकर ब्रिटिश सरकार ने 3000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। पंडित बालकृष्ण भट्ट के पास भोजन तक के पैसे नहीं थे, वो जुर्माना क्या भरते। परिणाम स्वरूप हिंदी प्रदीप की लौ सदा के लिए बुझ गई। लेकिन 32 वर्षों की अपनी सुदीर्घ यात्रा में हिंदी प्रदीप के साहित्यिक लेखों ने जो उजाला पैदा किया, उससे हिंदी साहित्य जगत आज भी आलोकित है। पंडित बालकृष्ण भट्ट एक सजग पत्रकार और संपादक होने के साथ साथ एक उत्कृष्ट रचनाकार भी थे। उन्हें आज की गद्य प्रधान कविता का जनक माना जा सकता है। उनका गद्य गद्य न होकर गद्य काव्य सा प्रतीत होता है। भाषा की दृष्टि से भी अपने समय के लेखकों में उनका बहुत ऊंचा स्थान है। उन्होंने अपनी रचनाओं में यथाशक्ति शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया है। कहावतों और मुहावरों का प्रयोग भी उन्होंने सुंदर ढंग से किया। वो हमेशा ही हिंदी की परिधि का विस्तार चाहते थे, इसलिए विषय और प्रसंग को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हिंदीतर शब्दों को भी सम्मिलित किया। इसीलिए उनकी लेखनी में कहीं कहीं पूर्वी बोली का प्रयोग भी दिखाई देता है। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने एक ओर जहां आंख, कान, नाक, बातचीत जैसे साधारण विषयों पर लेख लिखे, तो वहीं दूसरी ओर आत्मनिर्भरता, चारुचरित्र जैसे गंभीर विषयों पर भी लेखनी चलाई। साहित्यिक विषय के साथ ही उन्होंने समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए सामाजिक निबंधों की रचना की। पंडित बालकृष्ण भट्ट के निबंधों में विचारों की गहनता, विषय की विस्तृत विवेचना और गंभीर चिंतन के साथ एक अनूठापन भी है। उनके निबंध अधिकतर हिंदी प्रदीप में प्रकाशित होते थे। उनके निबंधों में ईश्वर की भी क्या ठठोल है, नाक निगोड़ी भी बुरी बला है, अकल अजीर्ण रोग, भकुआ कौन कौन है, हम डार डार तुम पात पात, इंग्लिश पढ़े सो बाबू होए, चंद्रोदय, संसार महानाट्यशाला, मेला ठेला, शब्द की आकर्षण शक्ति, बातचीत, भिक्षावृत्ति आदि प्रमुख हैं। उनके निबंधों का संकलन भट्ट निबंधमाला, साहित्य सुमन और आत्मनिर्भरता नाम से प्रकाशित हैं। इसके अलावा उन्होंने नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान और 1 सुजान और रहस्य कथा नाम से उपन्यास भी लिखे तथा दमयंती स्वयंवर, बाल विवाह, चंद्रसेन, विहन्नला, पद्मावती, सीता वनवास, रेल का विकट खेल आदि नाटकों की रचना की। संपूर्ण हिंदी साहित्य में वो प्रथम श्रेणी के निबंध लेखक माने जाते हैं। अपनी लेखन शैली से वो प्रताप नारायण मिश्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निकट मालूम होते हैं। हिंदी प्रदीप के अलावा भट्ट जी ने 2-3 अन्य पत्रिकाओं का भी संपादन किया। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा संकलित हिंदी शब्द सागर के संपादन में भी उन्होंने बाबू श्याम सुंदरदास और शुक्ल जी के साथ कार्य किया। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने परंपरावादी होते हुए भी परंपरा का अंधानुकरण कभी नहीं किया। उन्होंने परंपरा का विश्लेषण कर उसे सतर्क बुद्धि विवेक से देखा, परखा, उसके बाद ही उसके अनुकरण के बारे में विचार किया। उन्होंने निष्प्राण परंपरा और पाखंडपूर्ण धर्म को कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा भी की तथा लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। पंडित बालकृष्ण भट्ट अत्यंत संयमी और त्यागी व्यक्ति थे। बताया जाता है कि अपने पिताजी के गया श्राद्ध के समय 3 वर मांगते हुए उन्होंने कामना की थी कि पैतृक संपत्ति में मुझे 1 भी पैसा न मिले, मेरे पुत्र और पुत्रियों का चरित्र निर्मल रहे और मेरा 1 पुत्र संस्कृत का विद्वान हो। इस तरह एक अत्यंत संयमित और निर्मल जीवन था उनका। आजीवन साहित्य सेवा करते हुए 20 जुलाई सन 1914 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम वतन का राग, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए, सुनते रहिए।
1: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज हम अपने कार्यक्रम इतिहास के पन्नों की 11वीं कड़ी में पहुंच गए हैं। इतिहास के पन्नों से। इतिहास के पन्नों। हमने इसकी 10वीं कड़ी यानी पिछली कड़ी में सुना था, सन 1564 ईस्वी में चौरागढ़ पर अधिकार करने के उपरांत आसफ खां को अपरिमित धन मिला। इसके बाद मुगल दरबार और गढ़ा राज्य के बीच हुए नरई युद्ध के उपरांत की संधि हुई। गढ़ा राज्य की ओर से अपना अगला उत्तराधिकारी चंद्रशाह को घोषित किया गया। चंद्रशाह राजा वीर नारायण के चाचा थे, यानी राजा दलपत शाह के छोटे भाई और वीरांगना रानी दुर्गावती के देवर। स्टूडियो में फिर से एक बार हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर पूजा सक्सेना। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में।
3: नमस्कार।
2: 11वीं कड़ी में भी हमारे श्रोता राह देख रहे हैं कि आप उन्हें कितनी दिलचस्प जानकारियां देने वाली हैं। आपसे सुनना चाहेंगे कि आगे क्या हुआ।
3: रानी दुर्गावती के वीरांगना होने के बाद गढ़ा राज्य का इतिहास तो जैसे बदल ही गया। जैसा आपने कहा, उनके उत्तराधिकारी उनके देवर राजा चंद्रशाह हुए और मुगलों के बीच तो संधि हो ही चुकी थी
2: जी।
3: गढ़ा राज्य को अपने 10 गढ़ जो हैं मुगलों को देने पड़े। हालांकि बाद में अकबर ने वो 10 गढ़ गोंडों को ही वापस लौटा दिए। पर यहाँ गढ़ा में यानी जबलपुर में क्या हुआ, तो हम देखते हैं कि गोंड राजा चंद्रशाह का कुछ छोटा सा राज्य काल है और उसके बाद उनके उपरांत मधुकर शाह हुए
2: जी।
3: और प्रेम शाह हुए, ये सभी गढ़ा के राजा रहे। यहाँ उल्लेखनीय राजा जो हैं वो हैं गढ़ा राज्य के गोंड राजा हृदय शाह
2: जी।
3: शायद आपने उनका नाम
2: बिल्कुल,
3: सुना
2: बिल्कुल।
3: होगा
2: जी।
3: हृदय शाह 1635 में सिंहासन पर बैठे
2: जी।
3: ये समय था रानी को वीरांगना हुए लगभग 70 वर्ष बीत चुके
2: हो चुके थे जी।
3: तो 1635 में जब हृदय शाह गद्दी पर बैठे, उनके लिए चौरागढ़ से शासन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था।
2: अच्छा।
3: कुछ यहाँ वहाँ से आक्रमण हो रहे थे और नरई के युद्ध के बाद अस्थिरता तो फैल ही गई थी
2: जी।
3: तो हृदय शाह ने एक नया निर्णय लिया और उन्होंने चौरागढ़ से अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी।
2: अच्छा।
3: ये 1651 की बात है
2: जी।
3: और उन्होंने जो अपनी नई राजधानी चुनी वो थी मंडला में ही, और आजकल उसे हम रामनगर के नाम से जानते हैं।
2: अच्छा।
3: तो रामनगर मंडला शहर से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में है
2: जी।
3: और आजकल ये ऐतिहासिक स्थल है, पुरातात्विक स्थल है और पर्यटन का भी एक बड़ा जाना पहचाना केंद्र है
2: जी।
3: हम ये तो नहीं कह सकते कि रामनगर सामरिक दृष्टि से बहुत उचित स्थान था, लेकिन ये बहुत ही सुंदर जगह है
2: जी।
3: यहाँ नर्मदा नदी कलकल करके बहती है
2: जी, जी।
3: और दूसरी ओर से बंजर नदी का संगम होता है, तो ये दोनों नदियां मिलकर इस स्थान को दो ओर से घेर लेती हैं। हृदय शाह ने इन दोनों नदियों को जोड़ते हुए एक खाई बनवा दी
2: जी।
3: तो अब ये हुआ क्या कि ये जो यू शेप ये जगह थी
2: जी।
3: ये अब चारों ओर से पानी से घिर गई और एक टापू के समान बन गई।
2: वाह।
3: तो देखने में ये बहुत ही सुंदर लगती है, आप कभी जाएं तो यहाँ पर जाकर आपका
2: मतलब
3: दिल
2: ये जगह हम अभी भी देख सकते हैं जो आप बता रही हैं कि जो हृदय शाह ने बनवाई वो टापू अभी भी है वहाँ पर।
3: बिल्कुल, वो टापू है। हृदय शाह ने जो वहाँ पर बहुत सारी इमारतें बनवाई वो आज भी हम वहाँ पर देख सकते हैं
2: जी।
3: हम साधारणतः जिस तरीके के किलों की कल्पना करते हैं ये वैसा नहीं है। हम जानते हैं कि हृदय शाह जो थे वो एक जाने माने कवि भी थे, तो उनका कवि हृदय रहा होगा
2: जी।
3: और उन्होंने जब स्थान का चुनाव किया तो वो कुछ वैसा ही था जैसे कोई कवि चुनता है। उन्होंने जो उसमें इमारतें बनवाई वो भी बहुत सुंदर है।
2: ये भी सुनते, जैसे आपने कहा कि हृदय शाह को कवि हृदय कहा जाता है, वो कविताएं करते थे, और इसके साथ ही कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि उन्हें संगीत का भी ज्ञान था।
3: बिल्कुल, हृदय शाह को तो संगीत का ज्ञाता कहा जाता है, बल्कि हृदय शाह की गणना 17वीं सदी के अच्छे संगीतकारों में होती है।
2: वाह।
3: वह न केवल अच्छे गायक थे, वो एक अच्छे वादक भी थे, और बल्कि उन्होंने संगीत पर दो पुस्तकें भी लिखी। इन ग्रंथों में शास्त्रीय संगीत की सूक्ष्म विवेचना की गई है, और ग्रंथों का नाम है हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश।
2: तो लीजिए, कितनी अच्छी बात निकल करके यहाँ पर सामने आई है। पूजा जी हमें इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां दे रही हैं। हम बात तो कर रहे हैं गोंड राजवंश की, लेकिन उन्हीं के एक राजा जिन्हें आमतौर पर हृदय शाह कहा जाता है, खासतौर पर उस क्षेत्र विशेष में, उनका नाम था हृदय शाह। और वो ना सिर्फ कविताएं करते थे, संगीत के भी ज्ञाता थे, और उन्होंने हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश, इन दो पुस्तकों को लिखा था शास्त्रीय संगीत पर जो आधारित हैं। और हमारे श्रोता उन पुस्तकों को यदि हासिल कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। पूजा जी, कुछ स्थापत्य कला में क्या योगदान दिया हृदय शाह ने, ये जानना चाहेंगे।
3: तो अगर कभी मंडला जाएं और रामनगर का विष्णु मंदिर देखें, बहुत ही सुंदर मंदिर है और गोंड कला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसको हृदय शाह की रानी थी सुंदरी देवी, उन्होंने बनाया था सन 1667 में।
2: अच्छा।
3: और मंदिर जब पूरा हो गया तो रानी ने उस मंदिर में एक शिलालेख भी लगवाया। इसी शिलालेख से हमको गढ़ा का जो गोंड राजवंश है उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, जैसे कि उनकी वंशावली क्या थी, उनकी उपलब्धियां क्या थी, और उन्होंने क्या विशेष कार्य किए। यहाँ तक कि नरई के युद्ध का जो वर्णन है वो भी रामनगर के शिलालेख में किया गया है।
2: अरे वाह।
3: रामनगर का शिलालेख इसी मंदिर में स्थापित था, और अभिलेख में ये भी जानकारी है कि इस मंदिर के जो प्रमुख कारीगर थे वो थे दयाराम और भागीरथ।
2: अच्छा।
3: उनको भी इस अभिलेख में पूरा क्रेडिट दिया गया।
2: बहुत, ये कितनी अच्छी बात है। देखिए, नहीं तो अक्सर ये हो जाता है कि इमारतें याद रह जाती हैं लेकिन शिल्पकारों का नाम कोई नहीं जानता।
3: अभी सुरक्षा की दृष्टि से इस अभिलेख को राम मंदिर से स्थानांतरित करके पास ही स्थित मोती महल में

0: जैसा कि मैंने कहा कि मंदिर की स्थापना रानी सुंदरी देवी ने कराई थी, तो सुंदरी देवी कौन थी वो भी हमको जनश्रुतियों में और इतिहास में उसका भी वर्णन मिलता है
1: जी।
0: तो एक बार राजा हृदय शाह का दिल्ली जाना हुआ
1: जी।
0: और वो मुगल दरबार में रुके, वहां पर एक गायिका थी सुंदरी देवी।
1: अच्छा,
0: तो हृदय शाह भी गायक थे,
1: बिल्कुल,
0: हम सब
1: बिल्कुल।
0: जानते हैं, और दोनों का आपस में मिलना हुआ होगा
1: जी।
0: और कुछ ही समय में दोनों

0: के बीच में अनुराग हो गया। गोंड राज्य के लिए बहुत सारे अच्छे कार्य करवाए, उसमें से एक है विष्णु मंदिर की स्थापना कराना।
1: तो इस प्रेम विवाह का जो आधार बना वो संगीत बना।
0: बिल्कुल, आधार इसका संगीत था और स्थापत्य में भी आप उसकी सुंदरता देख सकते हैं।
1: जी जी बिल्कुल।
0: ये पंचायतन शैली का मंदिर है, जैसे हम पहले भी वर्णन करते आ रहे थे कि गोंड काल में पंचायतन शैली का विकास हुआ और उसमें खासियत ये थी कि 5 गर्भगृह होते हैं। हमने उसको पचमठा नाम भी दिया था, जिसमें कि एक मुख्य गर्भगृह और 5 देव कुलिकाएं होती हैं। तो चारों कोनों पर छोटे छोटे गर्भगृह होते हैं, इसको देव कुलिका बोलते हैं, और एक गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणापथ होता है। तो इस विष्णु मंदिर में भी एक मुख्य देव कुलिका है और उसके चारों ओर छोटी छोटी 4 देव कुलिकाएं हैं। तो ये चारों देव कुलिकाएं आयताकार जो कक्ष है उसके चारों कोनों पर स्थित हैं। तो जब आप इसके चारों तरफ प्रदक्षिणा लेंगे तो इन चारों देव कुलिकाओं में जो स्थापित देवता थे उनके दर्शन किए जा सकते थे। वर्तमान में ये प्रतिमाएं अब नहीं है।
1: अब नहीं है। जी, जी।
0: जो मंदिर की छत है वो गुंबजाकार है और छत के चारों तरफ से छज्जे निकले हुए हैं। तो छज्जों के नीचे जो तोड़े होते हैं यानी जो ब्रैकेट्स होते हैं वो बहुत ही सुंदर हैं इस मंदिर के। मंदिर के दरवाजे हैं वो मेहराबदार हैं और इस मंदिर का जो संरक्षण करता है वो मध्य प्रदेश का राज्य पुरातत्व विभाग है।
1: अच्छा पूजा जी, आपने एक महल का भी जिक्र किया था इसी एपिसोड में विष्णु मंदिर के पहले, तो उस महल के बारे में आपसे जानना चाहेंगे।
0: विष्णु मंदिर की तरह ही रामनगर में मोती महल भी देखने लायक है। ये जो महल है वो राज परिवार का निवास हुआ करता था।
1: अरे वाह।
0: इसलिए इसको राजा महल के नाम से भी जानते हैं। पर इसके लिए एक स्थानीय किंवदंती है और वो बड़ी मजेदार है।
1: जी।
0: जैसा जानते हैं कि हृदय शाह एक बहुत अच्छे गायक कवि भी थे लेकिन उन्हें तंत्र विद्या का भी ज्ञान था, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो एक स्थानीय किंवदंती है जिसमें कहते हैं कि हृदय शाह ने तंत्र विद्या से इस मोती महल का निर्माण सिर्फ 2.5 दिन के अंदर कर लिया था। जो निर्माण के लिए पत्थर आए थे वो पास ही एक काला पहाड़ है वहां से उड़ उड़ कर आए थे।
1: ऐसी
0: जनश्रुति है। असल में क्या है कि रामनगर के निकट जो काला पहाड़ है वहाँ के अगर आप पत्थर देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तराशे हुए पत्थर हैं। मान लीजिए कि अष्टकोणीय ऑक्टोगोनल खंबे किसी ने तराशे हों।
1: अच्छा।
0: और बिल्कुल एक से, और उन्हें बिल्कुल पास पास सटा के रख दिया हो, पूरा पहाड़ ही बन गया हो, ऐसा दिखाई देता है ये काला पहाड़। लोगों का मानना है कि यहाँ जो अष्टकोणीय खंबे दिख रहे हैं वही उड़ उड़ कर यहाँ से गए और जल्दी से हृदय शाह ने मोती महल का निर्माण कर दिया। पर अगर हम इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इन अष्टकोणीय खंबों का होना एक भूगर्भीय हलचल का परिणाम
1: बिल्कुल,
0: है।
1: बिल्कुल, क्योंकि वो जो मंडला घाटी नर्मदा घाटी जो है वहाँ पर भूगर्भीय हलचलें पहले भी होती थी और अभी भी हमेशा अंदेशा जो है वो मंडराता रहता है।
0: हाँ, ये जो अष्टपहलू पत्थर हैं ये प्राकृतिक हैं, इन्हें तराशा नहीं गया है। जब भूगर्भीय हलचल होती है और ज्वालामुखी से लावा बहकर किसी स्थान पर जमा हो जाता है और जरूरत से ज्यादा जल्दी यानी कि कम समय में ठंडा हो जाता है, तब उस लावा में दरारें पड़ जाती हैं।
1: अच्छा।
0: और अष्ट फलकीय पत्थर में वो तब्दील हो जाती है।
1: अच्छा।
0: इस तरीके से दरारें पड़ती हैं कि अष्ट फलकीय संरचनाएं बन जाती हैं,
1: अपने आप ही प्राकृतिक रूप से तैयार हो जाती
0: बन जाती हैं। तो वो कुछ ऐसा लगता है जैसे ऑक्टोगोनल खंबे एक के बाद एक के बाद एकदम सटाकर लगा दिए गए हों। तो पूरा की पूरा काला पहाड़ ही ऐसा है।
1: अच्छा।
0: और क्योंकि इसी काले पहाड़ के पत्थरों का उपयोग मोती महल और अन्य इमारतों को बनाने में किया गया था तो ये जनश्रुति प्रचलित हो गई।
1: जी।
0: तो मोती महल भी देखने में बड़ा सुंदर है। इसमें प्रवेश के लिए एक बड़ा सुंदर मेहराबदार द्वार है और आप जब अंदर जाएंगे तो एक बड़ा सा चौकोर प्रांगण है और इस प्रांगण के बीच में एक बड़ी सी हौज है जिसके अंदर पानी भरा रहता होगा, उसमें रंगीन मछलियां छोड़ते होंगे जो भी उस समय होता हो, और इस प्रांगण के चारों तरफ कई सारे कक्ष बने हुए हैं जो राजा रानी के निवास के लिए थे। उसी में दीवाने आम था, दीवाने खास था और ये महल कई मंजिला है।
1: अच्छा,
0: अगर आप इसकी छत पर जाएंगे तो चारों कोनों पर चार ऐसे कक्ष हैं जिनकी छत गुंबजाकार है और इस पर जो चूने से स्टको वर्क किया गया है, जो अलंकरण किया है, वो भी बड़ा ही खूबसूरत लगता है। और कई बार तो लोग इसे खरबूजा गुंबज भी कह देते हैं।
1: अच्छा।
0: क्योंकि इसका आकार कुछ अलंकरण के कारण खरबूजे जैसा धारीदार दिखने लगता है, तो खरबूजा अलंकरण के नाम से भी ये जाना जाता है। इसके पास ही अस्तबल है, हाथीशाला भी रही होगी।
1: अच्छा।
0: और खेल का कुछ मैदान भी रहा होगा, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और अगर आप मोती महल की छत पर से मंडला को देखते हैं, जो नर्मदा नदी दिखाई देती है, बंजारा नदी दिखाई देती है और दूर दूर तक जो जंगल दिखाई देते हैं, वो बहुत ही खूबसूरत होते होंगे। जब हृदय शाह यहाँ गाते होंगे, जब महफिलें जमती होंगी, तो ये देखने लायक दृश्य होता होगा।
1: निश्चित रूप से वहाँ स्वयं हृदय शाह भी गाते होंगे, उनकी पत्नी भी गाती होंगी और संगीत की बहुत सारी महफिलें, बहुत सारी सभाएं भी वहाँ पर आयोजित की गई होंगी।
0: जी हाँ, सुंदरी देवी तो खुद गाने की शौकीन थी।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, ये महल क्या आज भी पर्यटकों के लिए खुला है, जा सकते हैं?
0: बिल्कुल, ये राज्य पुरातत्व विभाग मध्य प्रदेश का संरक्षित स्मारक है।
1: जी।
0: तो इन सभी में, चाहे मोती महल हो, चाहे विष्णु महल हो, और इसके पास ही एक राय भगत की कोठी भी है।
1: अरे वाह,
0: आपने स्टेशन भी सुना होगा, भगत की कोठी।
1: भगत की कोठी सुना है, बिल्कुल। तो मैम, इस कोठी के बारे में जानना चाहेंगे कि जैसे मोती महल था वहाँ पे राज परिवार रहा करता था, तो राय भगत की कोठी इसे क्यों कहा जाता है, यहाँ कौन रहते थे?
0: राय भगत हृदय शाह के समय उनके खास मंत्री थे।
1: अच्छा।
0: और उन्हीं के एक विशाल महल है जिसको राय भगत की कोठी कहते हैं।
1: अच्छा।
0: मोती महल से लगभग आधा किलोमीटर आप जाएं अगर पूर्व की तरफ, तो एक रामनगर धंधरी सड़क पड़ती है और उसी पर एक ऊंचा सा टीला दिखाई देता है, वहां पर ये महल है। और ये राय भगत का महल भी कहलाता है, राय भगत की कोठी के नाम से भी जाना जाता है। राय भगत को भगत राय भी कहा जाता है।
1: जी जी।
0: और जब भी हृदय शाह के प्रिय मित्रों की बात आती है तो भगत राय की बात जरूर आती है। कई किस्से भी इन दोनों के आपस में बड़े लोग सुनाया करते हैं।
1: जी।
0: और ये जो राय भगत थे, ये पठारी या प्रधान जाति के थे, इसलिए इनके किस्से बड़े प्रधानों में मशहूर हैं दोनों की दोस्ती के।
1: जी जी।
0: तो हृदय शाह के लिए ये राय भगत की कोठी बनाई गई।
1: जी।
0: ये दक्षिण की तरफ मुंह करके बनी है और इसका भी जो प्रवेश द्वार है बड़ा ही भव्य है।
1: जी।
0: बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मोती महल से भी ज्यादा भव्य है।
1: अरे वाह।
0: और इसमें जो प्रवेश द्वार है उस पर संगमरमर का उपयोग किया गया है, जो इस काल में बहुत कम होता था, खासकर मध्य भारत में। और प्रवेश द्वार के ऊपर नौबत खाना बना है। नौबत खाना जहाँ पर जब राजा का आगमन होता है तब नगाड़े बजाए जाते थे।
1: अच्छा।
0: फूलों की वर्षा होती थी।
1: जी।
0: तो प्रवेश द्वार के दोनों ओर तीन तीन खिड़कियां भी बनी हुई हैं, बहुत बड़ी विशाल खिड़कियां हैं। और दीवार के ऊपर कंगूरे बने हुए हैं, तो ऐसा कहीं कहीं आपको लगेगा कि ये महल है कि किला है। तो दोनों के जो आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं, दोनों को मिक्स किया है। और महल के जो कोने हैं वहां पर खासकर निकले हुए कक्ष भी बने हुए हैं जो बड़े आकर्षित लगते हैं अलंकरण के कारण। और इनकी छतें भी वैसी हैं जैसी मोती महल की गुंबजाकार छतें हैं, धारीदार छतें हैं, खरबूजे जैसी इनके भी गुंबज वैसे ही हैं। और जो राय भगत की कोठी की खास बात है वो यहाँ के भित्ति चित्र हैं।
1: अच्छा।
0: मतलब कि छत पर, दीवारों पर बहुत सारा चित्रण किया गया है। खासकर जब हम प्रवेश करते हैं महल के अंदर, तो जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसकी जो छत है उस पर आज भी बड़ा सुंदर अलंकरण उस काल का देखा जा सकता है। इसमें लाल, हरा, नीला, पीला कई रंग यूज किए हैं। और जैसा हम जानते हैं कि उस समय रंगों के लिए खनिज पत्थरों का उपयोग किया जाता था। खासकर ये पत्थर जो हैं वो भारत में नहीं मिलते, ये मध्य एशिया से बुलाए जाते थे।
1: अच्छा।
0: और इन पत्थरों को घिसकर रंग तैयार किया जाता था। जहाँ कहीं भी इस तरीके की चित्रकारी करनी होती थी तो वहां पर फिर बहुत चिकना चूने का प्लास्टर तैयार किया जाता था, एकदम सफेद खूबसूरत चिकना, और उसके बाद अलंकरण जैसा भी तैयार किया गया हो तो फिर इन खनिजों को तैयार करके इनका पाउडर बनाकर इसमें जो प्राकृतिक गोंद होती है उसको मिक्स किया करते थे, उससे मिक्स करके उसको बना लिया करते थे, रंग पक्के हो जाया करते थे, और फिर इनको छतों पर लगाया जाता था, सुंदर ज्यामिति अलंकरण या फूल पत्तियों का अलंकरण इसमें किया जाता था। जैसा हम जानते हैं कि छत पर उल्टा ब्रश चलाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि जो रंगों का संयोजन है, जो चित्रकारी है, वो देखते ही बनती है।
1: श्रोताओं को तो हमारे लग ही रहा होगा कि बिल्कुल अब वो भागकर बिल्कुल रामनगर जाएं, मंडला जाएं, और पूजा जी ने इतनी अच्छी अच्छी हमें जानकारियां दी हैं। ना सिर्फ ये इतिहास से संबंधित हैं, ना सिर्फ ये गोंड राजवंश से संबंधित हैं, आज का तो हमारा एपिसोड बिल्कुल पर्यटन और संगीत के लिए भी बहुत विशेष रूप से खास रहा है। पूजा जी, इतने सारे जो आज आपने हमें चीज़ें बताई कि राजा हृदय शाह ने मंडला में अपनी राजधानी यहाँ पर स्थापित की, दूसरी जगह लेकर के आए जिसे आज हम रामनगर के नाम से जानते हैं, वहाँ पर विष्णु मंदिर, मोती महल, राय भगत की कोठी और रानी महल का आपने जिक्र किया, लेकिन राजा हृदय शाह के बाद गढ़ा मंडला का क्या हुआ?
0: हृदय शाह का शासनकाल 1671 ईस्वी तक रहा।
1: अच्छा,
0: और उसके बाद उनके वंशजों ने शासन किया जिसमें छत्रशाह हुए, केसरी शाह, हरि सिंह, पडार सिंह, और इसके बाद हम देखते हैं नरेंद्र शाह। तो नरेंद्र शाह ने भी अपने लिए मंडला में ही एक नई राजधानी बनाई।
1: अच्छा।
0: अब उसके अवशेष ना के बराबर हैं, केवल एक बुर्ज रह गया है
1: जी।
0: पर नरेंद्र शाह के बाद भी बहुत से राजा हुए, और फिर 1780 ईस्वी में गढ़ा का यह क्षेत्र सागर के जो मराठा शासक थे उनके अधीन हो गया। यहाँ से फिर गढ़ा मंडला का इतिहास बदल गया।
1: मतलब 1780 तक गढ़ा मंडला पर गोंड राजवंश का शासन रहा।
0: जी हाँ, संग्राम शाह से लेकर और हम देखते हैं कि सुमेर शाह तक गढ़ा मंडला पर लंबे समय तक गोंड राजवंश ने अपना योगदान दिया।
1: वाह। तो श्रोताओं, आज बहुत अच्छी अच्छी हमें जानकारियां मिली हैं राजवंश की। हम पिछले अपने इतने सारे एपिसोड से बात कर रहे हैं, हमने कहानी देखी संग्राम शाह जी की, हमने बात की रानी दुर्गावती की जो कि गढ़ा राजवंश की सबसे मुख्य शासिका के रूप में भी जानी गई, बहुत सारे कार्य उनके हुए और मुगल दरबार तक उन्होंने हिला दिया था। उसके बाद हमने बात की हृदय शाह की, और फिर उनके कुछ और उत्तराधिकारियों ने वहां पर राज किया, गढ़ा मंडला पर जाकर के गोंड राजवंश का शासन समाप्त हुआ। पूजा जी ने हमें ये जानकारियां दी, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी इतनी अमूल्य जानकारियों के लिए। आगे भी अपने अगले एपिसोड में आपसे कुछ और जानकारियां आपसे चाहेंगे, इतिहास के पन्ने हम खोलते रहेंगे कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। में अभी वक्त है आपसे विदा लेने का, मैं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा आपसे इजाजत लेता हूं। इस एपिसोड का ध्वनि अंकन और ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ देश का चैनल, देश के लिए रेडियो आजाद हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

नादिर शाह के नौसैनिक बेड़े का विद्रोह सन 1740, विश्वासघात और बिखरते सपने। अगस्त सन 1740 की भीषण गर्मी में एशिया के नेपोलियन कहे जाने वाले नादिर शाह के महत्वाकांक्षी नौसैनिक सपने अचानक खून और धोखे के दुःस्वप्न में बदल गए। वर्षों तक फारसी शासक ने अपनी शक्तिशाली सेना के बराबर एक समुद्री बल बनाने के लिए काम किया था। उन्होंने तकनीक के लिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी EIC का सहयोग लिया, जबकि जहाज चलाने के वास्तविक अनुभव के लिए स्थानीय अरब जनजातियों पर निर्भर रहे। हालांकि ये किराए की नौसेना रेत की नींव पर खड़ी थी, जो केवल सिक्कों और रोटी के वादे से जुड़ी हुई थी। ये संकट रणनीतिक बंदरगाह बंदर ए लाफ्ट पर भड़का। विभिन्न खाड़ी जनजातियों से भर्ती किए गए अरब नाविकों में भारी रोष था, क्योंकि उन्हें महीनों से वेतन नहीं मिला था और उनके राशन के भंडार खाली पड़े थे। यूरोपीय कंपनियों के अनुशासित क्रू के विपरीत, जहां कील हॉलिंग जैसे कठोर सजाओं से व्यवस्था रखी जाती थी, इन नाविकों को एक ऐसे तानाशाह की सेवा करनी पड़ रही थी जो अपने नाविकों की बुनियादी जरूरतों से ज्यादा विजय को प्राथमिकता देता था। विद्रोह कोई शांत पलायन नहीं था, ये सामूहिक हिंसा का एक विस्फोट था। नाविकों ने एक साथ उठकर अपने कमांडरों पर अपना गुस्सा निकाला। इस अराजकता में उन्होंने फारसी एडमिरल मीर अली खान की हत्या कर दी और उन सभी को मार डाला जिन्होंने उनका विरोध करने का साहस किया। जिन पुरुषों को नादिर शाह ने अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए रखा था, वे अब इसके सबसे खतरनाक चोर बन गए थे। उन्होंने लंगरगाह से हर संभव जहाज को अपने कब्जे में लिया और खाड़ी में गायब हो गए। इस घटना ने एक चौंकाने वाली विडंबना को उजागर किया। नादिर शाह के बेड़े का निर्माण विशेष रूप से यूरोपीय नौसैनिक प्रभुत्व को दरकिनार करने और समुद्री मार्गों पर फारसी आधिपत्य स्थापित करने के लिए किया गया था। फिर भी अपनी ही नौसेना के विद्रोह और कुशल नाविकों के चले जाने के बाद शाह को मदद के लिए वापस यूरोपीय शक्तियों की ओर मुड़ना पड़ा। फारसी अधिकारियों ने EIC और डच VOC से प्रार्थना की कि वे अपने श्रेष्ठ युद्ध पोतों का उपयोग उन्हीं जहाजों को हराने के लिए करें जिन्हें यूरोपीय लोगों ने हाल ही में फारसियों को बेचा था। इस संकट का जवाब एक हताश और तात्कालिक गठबंधन के रूप में मिला। उन्हें मदद के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि उन्होंने इनकार किया तो घबराए हुए फारसी अधिकारी उन पर हमला कर सकते हैं। उन्हें बागियों की ओर ले जाने के लिए अपने ही दल को रिश्वत देनी पड़ी। अंग्रेजों ने एक ट्रांकी यानी एक छोटा तटीय जहाज प्रदान किया, जिसमें फैक्ट्री के गार्ड और अकेला तोपची तैनात था। अंग्रेज रिपोर्टों के अनुसार इन गार्डों ने डच या फारसियों की तुलना में कहीं अधिक डटकर मुकाबला किया। सन 1740 का विद्रोह शक्ति के सहयोजन की सीमाओं की याद दिलाता है। इसने साबित कर दिया कि जहां जहाज और तोपें खरीदी जा सकती हैं, वहीं वफादारी और समुद्री कौशल को इतनी आसानी से नहीं बनाया जा सकता। नादिर शाह के लिए उनके अरब नाविकों का विद्रोह एक अपमानजनक झटका था, जिसने उन्हें एक बार फिर उसी यूरोपीय ताकत पर निर्भर कर दिया जिसे वे हटाना चाहते थे।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए सुनते हैं कार्यक्रम टेक गुरु।
2: 90.8 आजाद हिंद रेडियो में आपका स्वागत है। ये है टेक गुरु प्रोग्राम। एक सफलता की कहानी आई है भोपाल के ईदगाह हिल स्थित सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। शिक्षिका श्रीमती एकता सरीन बन गई हैं मध्य प्रदेश की पहली गूगल सुपर सर्चर। उन्हें गूगल इंडिया ने उनके पहल के लिए गुरुग्राम में अपने कार्यालय में आमंत्रित किया। चलिए उनसे जानते हैं कि गूगल सुपर सर्चर क्या है। नमस्ते एकता सरीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आजाद हिंद रेडियो में।
3: नमस्ते शिवानी जी।
2: सबसे पहले जो हम आपसे पूछना चाहेंगे वो ये है कि आखिरकार सुपर सर्चर क्या है।
3: सुपर सर्चर्स एक बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव टेक प्रोग्राम है। जानकारी के लिए आई थिंक हम हर दिन गूगल का इस्तेमाल करते हैं, गूगल का यूज करते हैं, गूगल पे डिफरेंट सर्च करते हैं
2: जी।
3: गूगल का काम है जानकारी देना, उनका लक्ष्य है जानकारी देना, लेकिन क्या वो जानकारी सही है या गलत है ये जानना हमारा काम है। सुपर सर्चर गूगल इंडिया का एक इंफॉर्मेशन टेक प्रोग्राम है जो कि स्टूडेंट्स के डिजिटल परिदृश्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। किस तरह से उनको क्या सर्च करना चाहिए, क्या फेक है, क्या रियल है
2: जी,
3: ये हम इस प्रोग्राम के जरिए बताते हैं। आज हर कोई इंटरनेट पे एक्टिव है, जानकारी के लिए विश्वसनीय स्रोतों का हम इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं जानते कि क्या वो जानकारी जो हमें मिल रही है जो वेबसाइट्स पे है, क्या वो ठीक है या वो गलत है। इस ट्रेनिंग में हम एजुकेशन देते हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को, और उनको ये बताते हैं कि ऑनलाइन उनको क्या प्राप्त करना चाहिए, उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, उनका किस तरह से मूल्यांकन किया जा सकता है, क्या फेक है, क्या रियल,
2: क्या सही है।
3: दिस इज ऑल अबाउट सुपर सर्चर्स प्रोग्राम।
2: तो आप एक ट्रेन्ड करियर कोच हैं एकता सरीन जी, लैंग्वेज ट्रेनर हैं, तो आप कैसे एक सुपर सर्चर बनी इसके बारे में बताइए।
3: भले ही मैं डायरेक्टली आईटी से लिंक नहीं हूँ, बिकॉज एज ए लैंग्वेज टीचर, एज ए एजुकेटर, एज ए काउंसलर, हम अक्सर गूगल का यूज करते हैं। सो एक बार गूगल इंडिया की तरफ से इंटरनेट ऑसम, बी इंटरनेट ऑसम 2022 में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जिस टाइम पे जो एजुकेटर्स के लिए ओपन था, जिसमें हमको ट्रेनिंग लेना था और फिर आगे ट्रेनिंग देना था। तो मैंने ये काम किया, मैंने उनके साथ ट्रेनिंग ली और इस तरह से मैं गूगल इंडिया के साथ कनेक्ट हुई। मेरी तरह बहुत से एजुकेटर्स हैं जो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज से थे, जो पोलैंड से हैं, यूएस से हैं, इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स से हैं। इस तरह से बहुत सारे एजुकेटर्स इस सेम प्लेटफॉर्म पे आए और हमने ट्रेनिंग लिया और आगे बच्चों को एजुकेट किया। इस तरह से आई बिकेम अ बी इंटरनेट ऑसम, जो मुझे गूगल से अवार्ड मिला, और उसी तरह से ग्रेजुअली मैं सुपर सर्चर्स की डायरेक्शन में पहुंची, और दैट इज हाउ आई वाज invited in Google India office at Gurugram।
2: चलिए, तो बहुत ही अच्छी बात है सरीन जी कि आप बी इंटरनेट ऑसम बन गई हैं, लेकिन आप हमें ये बताइए कि हम कैसे बने इंटरनेट ऑसम।
3: इट्स अ ग्रेट आइडिया। आई थिंक हम सबको आज के जमाने में जब हम गूगल का यूज करते हैं, जब हम इंटरनेट पे हैं, तो आई थिंक हम सबको ऑसम बनना, बी इंटरनेट ऑसम की स्टेटमेंट के साथ फ्लो में आना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि देखिए, बी इंटरनेट ऑसम का मतलब ये होता है कि आप

बात करना है एंड दिस इज योर टॉपिक. आप बिलीव नहीं करोगे हर बच्चे का सेम टॉपिक था क्योंकि उन्होंने नेट से देखा और उसको कट एंड पेस्ट करके लेके आ गए. तो मैं बच्चों को बोलती हूँ कि ठीक है आप

0: हम कुछ लिख सकते हैं, वरना
1: क्रिएटिवली
0: क्योंकि
1: हम प्रेजेंट कर पाते हैं
0: कर
1: अपने आप
0: सकते
1: को.
0: हैं,
1: एग्जैक्टली
0: नहीं तो
1: राइट.
0: एआई टूल्स ऐसे आ गए जहाँ पे हम डिपेंडेंट हो गए उन चीजों पे. तो इस तरीके से आप स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं.
1: हाँ जी, स्टूडेंट्स को बताना होता है कि बेटा देखो, कई बार बच्चा ऐसा भी होता है कि कुछ भी आप देख रहे हो, किसी पे भी आपने कुछ भी कमेंट कर देते हो, किसी की सेल्फी देखी, आपका पर्सनल कुछ किसी बच्चे से कुछ एनमिटी है या आपको पसंद नहीं है वो बच्चा.

इंटरनेट पे भी यू हैव टू बी ब्रेव, सो बी इंटरनेट काइंड, बी इंटरनेट ब्रेव, शेयर विद केयर. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नेट पे हो डजंट मीन कि आपकी मर्जी में जो आएगा वो आप बोलोगे. बी विद सॉफ्ट, क्योंकि हो सकता है कल कोई आ

0: एक बार चेक करते, अपने आप चेक करना है। तो हम लोग कंप्यूटर रूम में थे, बच्चों ने चेक किया, की तरह उसको पेश किया गया था ऑन फर्स्ट अप्रैल फूल्स डे कि हम ये फ्लेवर लेके आ रहे हैं। तो जिस उस कंपनी ने एक एड लॉन्च किया था, से बच्चों को पता चला कि दिस वाज अ फेक न्यूज। सिमिलरली एक ऐसे ही एक न्यूज थी, मैंने बच्चों को उसके लिए भी बताया कि एक आपका एक शिप ग्राउंडेड एट द मरीन बीच इन बॉम्बे। तो बच्चे कहते हाउ कैन दिस हैपन, मतलब एक शिप, इतनी बड़ी शिप मरीन बीच पे ग्राउंडेड कैसे हो सकती है। लेकिन जब बच्चों ने क्रॉस चेक किया, अभी आप भी अगर ये गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि 2011 में एक ऐसी शिप थी जो ग्राउंडेड हो गई थी और वो काफी टाइम तक वहां पर थी। तो मेरे पास उस टाइम पे मुंबई की ऑडियंस थी और मुंबई के कुछ एजुकेटर्स थे, उन्होंने ये बताया मुझे कि यस मैम इट्स अ ट्रू न्यूज इट हैपेंड इन मुंबई कि ऐसा हुआ था। तो कुछ चीजें ऐसी थी हमें साउंड करती हैं कि वो गलत ही है या वो सही ही है, लेकिन जब हम उसको चेक करते हैं तो डोंट गो इमिजिएटली जब आप गूगल सर्च करते हो। तो मैं यहाँ पे बोलती हूँ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या फेक है क्या रियल है, विद दैट यू कैन ऑलवेज चेक आउट ऑन दोस थ्री डॉट्स टू लेट अस नो वेदर इट्स फेक न्यूज और अ ट्रू न्यूज।
1: एक तो सरीन जी, अब अगला प्रश्न मुझे ये आ रहा है कि गूगल में वर्ड सर्च का भी कोई तरीका है क्या?
0: ये आपने बहुत अच्छी बात करी शिवानी जी। यहाँ मैं आपको अपना एक एग्जाम्पल देती हूँ। मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है।
1: अच्छा,
0: तो मैं एक बार वॉशरूम में थी और एक छिपकली मुझे वहां नजर आए, तो मुझे लगा मैं छिपकली को मुझे भगाना है, मैं क्या करूं। तो मेरे को था कि घर में कुछ चीज मिल जाए, मिर्ची विर्ची पाउडर, और मैं डाल दूं और छिपकली चली जाए। तो मुझे समझ नहीं आया, फिर मोबाइल उठाया, उसमें सर्च किया, उसमें वर्ड टाइप किया लिजर्ड DIY। अब उसमें जो रिजल्ट्स आए, विल यू नॉट बिलीव दैट आउट, उसमें आया कि हाउ टू मेक अ लिजर्ड आउट ऑफ अ कार्डबोर्ड। तो मुझे तो चाहिए था कि मुझे लिजर्ड को भगाना है।
1: कैसे
0: या है? तो हो जाएगा कि और सारी लिजर्ड्स मुझे डेवलप करनी है कि आई कैन डेवलप सो मेनी लिजर्ड्स आउट ऑफ अ कार्डबोर्ड। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप क्या वर्ड टाइप कर रहे हो जिससे आपको एग्जैक्टली डालना है, मुझे क्या डालना चाहिए था उस टाइम पे मुझे, जिससे मैं उस लिजर्ड को भगा पाऊं। तो मेरा होना चाहिए था कि हाउ टू गेट रिड ऑफ द लिजर्ड, लेकिन मैंने क्या डाला उसको, हाउ टू लिजर्ड DIY। तो ये वाला चीज हुई। तो मैंने इस चीज को लेके भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम क्या डालते हैं। तो गूगल में जब आप सर्च करते हो तो गूगल आपके क्या वर्ड्स होने चाहिए, क्या आपके प्रॉप्स होने चाहिए, वो बहुत जरूरी होता है कि

0: हमारा पासवर्ड पता चल गया किसी को या कुछ हो रहा है, तो हम अपने पासवर्ड को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम?
1: ये मैं बच्चों के साथ गेम खेलती हूँ हमेशा, जब बच्चों को
0: जी
1: एक्टिविटी करवाती हूँ उनको हमेशा बताती हूँ कि बेटा क्या आज किस किसका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है, लेट्स ट्राई. तो दे डू इट ऑन द बोर्ड, दे जस्ट ट्राई दिस आउट. तो उनको एक एक होता है, एक हमारा अपर केस, लोअर केस,
0: यस
1: न्यूमरल्स, और किस तरह से आपका कॉम्बिनेशन आपको चाहिए. दिस इज मिक्स ऑफ एवरीथिंग आउट.
0: ओके
1: सो मैं बच्चों को एक एक बड़ा वे बताती हूँ. जैसे हमारा एक एक सॉन्ग है, आई एम अ बार्बी गर्ल इन द बार्बी वर्ल्ड. तो आप इसका सबका फर्स्ट इनिशियल ले लीजिए, दैट बिकम्स वन पासवर्ड फॉर यू, क्योंकि आपको पता है वो आपका ये सॉन्ग
0: ये
1: है.
0: सही तरीका
1: सो दिस
0: है।
1: कैन बी अ वे आउट, है कि हमारा एक सॉन्ग भी हो गया और साथ में हमने बीच में जहां भी हमको चाहिए हमें अपर केसेस ले लिए, लोअर केसेस ले लिए, और बीच में हमने कहीं ना कहीं हैश टैग्स या अपने अंडरस्कोर डाल दिया, दैट बिकम्स यू नो. बिकॉज बच्चों को हमेशा होते हैं बच्चे अपने एड्रेस या बर्थडेज या फादर्स नेम या मदर्स नेम लेते हैं, जो इज वेरी वेरी रॉन्ग. तो उनको बताना बहुत जरूरी होता है. दिस कैन बी अ वे ऑफ साइबर बुलिंग ऑल्सो. सो आप कोशिश कीजिए कि अपने आप

0: पर्सनल डिटेल्स किंग आल्सो, सो आप कोशिश कीजिए कि अपने आप पर्सनल डिटेल्स
1: ये सब ना डालें और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स को रखें, तो ये बहुत अच्छी बात है। आजकल देखा जाता है एकता जी कि क्लासरूम्स में भी इंटरनेट है, एआई की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो कैसे हम वहाँ पे एहतियात बरत सकते हैं?
0: आई थिंक यहाँ पे फिर बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि देखिए स्मार्ट बोर्ड्स हर जगह आ चुके हैं, एआई ऑलमोस्ट हर उसमें एंटर कर चुका है, तो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो यूज़ कर रहे हो, जो आप एआई का इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें किस तरह के आप वर्ड्स का यूज़ करो।
1: ओके,
0: आपका मैक्सिमम पर्पस क्या होना चाहिए? टीचर्स, उस टाइम एजुकेटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है यहाँ पर, कि आप बच्चों को उस टाइम अवेयर कीजिए कि आप अगर कोई प्रोजेक्ट वर्क दे रहे हो तो बच्चों को बताइए इस पर्टिकुलर साइट पे आप जा सकते हो, दिस शुड नॉट बी ओपन टू एवरीथिंग आउट। चैट जीपीटी या बार्ड का यूज वो कर रहे हैं तो उनका अपना क्रिएटिविटी कैसे खत्म होता है, तो डोंट लेट देम गिव अ चांस फॉर दैट। करें वो इस्तेमाल करें उसका, लेकिन उनको साथ में बोलिए बुक्स का यूज, लाइब्रेरी का यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट,

SIFT such a beautiful voice. और दुबई में एक just send me your CV. और तुम्हारा जॉब तो बिल्कुल फाइनलाइज्ड है, प्लीज कम ओवर. आपको बड़ा अच्छा साउंड करेगा, बट प्लीज चेक द सोर्स, चेक द पर्सन आउट कि कौन ये इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है. तो स्टॉप इज दैट, स्टॉप. हम बहुत जल्दी से यू नो फ्लो में आ जाते हैं, जो आजकल की जनरेशन का मेजर प्रॉब्लम है.

सोर्स से आया है, हम इजीली उसको चेक कर सकते हो कि आप पूछ सकते हो किस कंपनी में है ये, किस रेडियो स्टेशन में है. ठीक है, आई वुड लव टू कम ओवर टू दुबई, लेकिन लेट मी नो अबाउट द डिटेल्स. सो आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो और अपने लेवल पे कर सकते हो वेरी इजीली. थर्ड कम्स इज एफ. एफ इज फाइन बेटर कवरेज. You can always find out because everything is available. Is it right? Is it wrong? Kitna fake hai?

0: And the star art, get the reality. Again, T stands for tracing the claims. This is usually done by the government, जो आपकी government की sites होती है, वो primary होता है. ये secondary के level पे हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर हमको इसकी जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती. But as a secondary source, हमको ये पता करना होता है कि क्या वो government site थी जहाँ से हमारी information आया, तो it can be true. Mm-hmm. But if it was something which was something कोई business purpose से वो हुआ, तो let's check it out whether that was a right claim or a wrong claim.
1: बिल्कुल सही. तो SIFT के बारे में हमें पता चला. तो आप हमें बताइए एकता जी, टिप्स टू बिकम सुपर सर्चर, आखिरकार हम कैसे बन सकते हैं, ये इसके बारे में बताइए.
0: टिप्स कैन बी, वी हैव अ क्विक टिप्स अबाउट इट कि क्या कर सकते हैं एज अ सुपर सर्चर. सो पहली चीज तो है हमको सर्च बाय वॉइस, जो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे आजकल के बुजुर्ग है उनको टाइपिंग करना में बहुत मुश्किल होता है.
1: जी,
0: लेकिन ऑलवेज सर्च By the voice. आप जैसे भी आप सर्च करोगे, कुछ भी आप बोलोगे, इमिजिएटली आपको आपका वॉइस आपको ट्रेस कर लेती है. और अभी दिस थिंग नॉट इज वेरी मच अवेलेबल ऑन योर मोबाइल्स, वेरी वेरी इजीली भी आपको उसको अपलोड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. नेक्स्ट इज सर्च बाय इमेजेस. हम इमेज से भी इजीली सर्च कर सकते हैं,
1: okay.
0: कहाँ हमें जाना है, कैसा करना है. सिमिलरली गूगल लेंस, गूगल लेंस आपको बहुत तक हेल्प करता है. सपोज मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ और मुझे कोई रेस्टोरेंट दिखता है और मुझे चाहिए कि वो रेस्टोरेंट इज सर्विंग व्हाट, उनका मेन्यू कार्ड में क्या है, क्या ये मुझे सूट कर रहा है, डू आई वांट टू गो देयर. सो आई कैन ऑलवेज गूगल लेंस के थ्रू मुझे उनका पूरा मेन्यू कार्ड मिल सकता है, उसके थ्रू मैं जा सकती हूँ क्योंकि ये रेस्टोरेंट मेरे लिए है विदाउट इवन स्टेपिंग इन द रेस्टोरेंट. दिस इज समथिंग विच इज रियली रियली हेल्पफुल. आपके QR कोड्स, आपकी इमेजेस, इवन सपोज आपको कोई परफ्यूम गिफ्ट करता है. रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ था.
1: अच्छा.
0: मुझे किसी ने परफ्यूम गिफ्ट किया, कोई जापान से आया था, बट नाउ मुझे उस लैंग्वेज को समझ में नहीं है बिकॉज आई डोंट नो जापानीज. सो मैंने गूगल लेंस के थ्रू उसको चेक किया, अपनी लैंग्वेज में उसको डाला कि आई वांट टू सी इन हिंदी कि क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर. मुझे पता चला उसके डायरेक्शंस, कैसा यूसेज है उसका. तो इवन दिस कैन बी डन वेरी इजीली बाय गूगल लेंस. सो वी कैन डू द रेगुलर थिंग्स एंड दैट हाउ यू कैन बिकम अ सुपर सर्चर फॉर श्योर.
1: ओके, तो एकता जी आप हमें बताइए कुछ क्लेम सोर्सिंग के बारे में, ट्रेसिंग के बारे में, इसके बारे में हम कैसे कर सकते हैं.
0: See, इसका बहुत सारा वेज हो सकता है कि आपका जो डिफरेंट वेज होते हैं जब हम सोर्सेस पे जाते हैं, जब डिफरेंट क्लेम्स देखते हैं, तो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग. हमारी कुछ साइट्स हैं जो हमेशा आपको विच यू कैन जस्ट ऑलवेज रिलाई अपॉन. देयर सर्टेन साइट्स जो हमेशा जो गवर्नमेंट की साइट्स होती हैं, जैसे सपोज आपके आजकल रिजल्ट आ रहा है, बोर्ड के बच्चे अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या होगा, वो किस साइट पे जाए. जैसे आप खोलते हो बोर्ड रिजल्ट्स, यू विल फाइंड सो मेनी साइट्स टेलिंग यू आउट, बट बेस्ट टू गो टू .cbse. गिव यू द एग्जैक्ट राइट थिंग आउट कि दिस इज व्हाट द थिंग्स आर. सो जो भी आप इंफॉर्मेशन देते हो शुड बी ऑन अ गवर्नमेंट साइट एंड गवर्नमेंट साइट्स आर देयर व्हिच विल गिव यू द राइट इंफॉर्मेशन अबाउट. So there can be certain sites which one can rely upon and how we can just go about. So these are few domains like .gov, NIC.in, education is

0: नथिंग हमारे पास अवेलेबल होता है, क्योंकि मैं बोलूंगी घर में हम सब, घर में बच्चे भी हैं जो सेम लैपटॉप यूज करते हैं या सेम डेस्कटॉप यूज कर रहे होते हैं. सो डेफिनेटली अपना सेफ सर्च का ऑप्शन हमको ओपन करके
1: सेफ
0: रखना चाहिए.
1: सर्च.
0: उसमें हमेशा क्या होता है कि आपका फिल्टर्ड हो जाता है, जो भी सेक्सुअल फिल्म्स आ रही हैं या नोटिफिकेशन आ रहे हैं या इवन कुछ वायलेंस से लिंक जो चीज आती है वो
1: यस
0: ऑटोमेटिकली फिल्टर होके आएगी, तो
1: जी.
0: वो बच्चों के रीच तक नहीं रहेगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंडली, आपके पास कहीं से भी कुछ कॉल आता है और वो वीडियो कॉल आ रहा है, सो मेक श्योर अपने कैमरे पे अपना थंब प्रेस करके जरूर रखिए, जिससे आपका कोई भी वीडियो सामने तक ना पहुंचे जहां से भी कॉल आ रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल, गलत नंबर जो आपके पास सेव नंबर नहीं है उसको आपको रिसीव ही नहीं करना चाहिए. फिर आगे गेमिंग की बात, गेमिंग के साथ भी आई थिंक हमको बहुत क्लियर होना चाहिए, पेरेंट्स को बच्चों को गाइडेंस देते रहना चाहिए कि क्या जरूरी है. कई बार बच्चों को स्टेप्स मिलते हैं कि इसके बाद आपको नेक्स्ट लेवल ये रहेगा, आपको ये करना है, ये चैलेंजेस आपको एक्सेप्ट करने हैं. सो आज हम टू स्टॉप देयर, बिकॉज कई कई गेम्स ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को यू नो उनके उनके पर्सनालिटी के लिए, उनके पर्सनालिटी को डेवलप करने की जगह उनको ऑल डिप्रेशन में ले जाते हैं, जो आप अक्सर बच्चों को देखते रहते हो. तो टीनेजर्स के साथ बहुत जरूरी है कि उनको हमको वहां पर स्टॉप करना चाहिए. स्टॉप जो आपका सेव बटन है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि उनको जरूर पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सेफ सर्च का बटन हमेशा ऑन रखें.
1: ये आपने बहुत अच्छी बात बताई सेफ सर्च के बारे में, कि कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट हो गया है ये. और वैसे देखा जाता है साइबर बुलिंग का बुरा प्रभाव होता है, इससे प्रभावित लोगों को कैसे मदद मिल सकती है जो इससे प्रभावित हो चुके हैं अब?
0: देखिए, साइबर बुलिंग एक तरह का, जैसे आप रेगुलर डेज में इतने बच्चों का रैगिंग होता है या बुलिंग होता है, साइबर बुलिंग भी उससे वर्स चीज है.
1: क्या है ये साइबर बुलिंग बेसिकली?
0: देखिए, साइबर बुलिंग में क्या है, आपने कोई पिक डाला, एक इट्स वेरी वेरी वेरी कॉमन एग्जांपल, बच्चे अपनी पिक्स अपलोड करते रहते हैं, तो बच्चों की पिक पे बच्चे उसके बाद कॉमेंट्स भी देखते हैं. बच्चे जब कमेंट्स देखते हैं तो हर तरह के कमेंट्स आ सकते हैं, हो सकता है आपको 4 अच्छे कमेंट आए तो 10 खराब कमेंट्स भी आ जाए. उसके बाद जो उनको गलत कमेंट दे रहे हैं उससे लिंक भी लोग जुड़ जाते हैं, तो बच्चा को किसी तरह से भी पुट डाउन किया जा सकता है. अभी तो आप रियल लाइफ में, हम ये बात करें, साइबर बुलिंग चल रहा है, बस उसको आप बच्चे क्लासरूम तक, अपने ग्रुप्स तक भी लेके चले जाते हैं, तो बच्चे का कई बार घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता है कि मेरे साथ साइबर बुलिंग हो रही है, कॉन्स्टेंटली कोई मुझे वॉच कर रहा है, कॉन्स्टेंटली मुझे कोई गलत कॉमेंट कर रहा है, ग्रुप में उसको सबके सामने इंसल्ट कर रहे हैं, लुक्स अच्छे नहीं, आपके लिप्स बहुत मोटे हैं, यू डोंट लुक लाइक गुड at all, you are not worth, आपका हेयर स्टाइल आपको सूट नहीं करता, आप एक ऐसा ड्रेस पहन के आए हो. तो इस एज में ये छोटी छोटी चीजें बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं बच्चे, और बच्चे पब्लिक आने को तैयार नहीं होते हैं, उनका सोशल लाइफ जीरो हो जाता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लेट्स टॉक देम आउट, और पेरेंट्स को भी अप्रोचेबल होना चाहिए. अगर बच्चा आपको लग रहा है उनके सिम्टम्स की बच्चा लोगों से मिलने को तैयार नहीं है, आपके घर में कोई आ रहा है बच्चा बाहर आने को तैयार नहीं है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग. सो लेट्स टॉक टू अ चाइल्ड. अगर बच्चे से बात करेंगे तो डेफिनेटली अ चाइल्ड शुड ऑल्सो बी आस्क्ड टू गो टू अ काउंसलर, गो टू अ एजुकेटर, जिससे आप कंफर्टेबल हो, स्पीक इट आउट. तो दिस इज वी कॉल यू आर ब्रेव, आप ब्रेव हो इसलिए आप आके बात कर रहे हो. सो टॉक इट आउट. जब हम बात करते हैं तो बहुत हद तक चीजें क्लियर हो जाती हैं. और अगर आपको लगता है कि किसी को आपको ब्लॉक करना है तो प्लीज डू दैट, उसमें हमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं.
1: बिल्कुल,
0: है
1: बिल्कुल.
0: कई बार बच्चे इस बात से भी घबराते हैं कि अगर मैंने ब्लॉक करा तो
1: क्या होगा,
0: हाउ विल द थिंग्स कम टू अस. तो इट्स इंपॉर्टेंट, आप ब्लॉक कर सकते हो, जिप इट आउट, यू नो, कंप्लीटली जिप अ पर्सन आउट, ब्लॉक इट आउट एंड फ्लैग इट आउट. दिस इज थ्री थिंग्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग साइबर बुलिंग, कि वन शुड नो अबाउट इट, एंड बच्चों को हमें ट्रेन करना बहुत जरूरी है. इस प्रोग्राम के थ्रू हर एजुकेटर को और हर पेरेंट्स को जुड़ना चाहिए.
1: वेरी नाइस, वेरी नाइस. जैसे कि हम एहतियात बरत सकते हैं इन चीज़ों से कि हम साइबर बुलिंग की ओर ना जाए, या कैसे उस डिप्रेशन से बचा जा सकता है, कैसे हम पहले अवॉइड कर सकते हैं ऐसे सिचुएशंस कि हम साइबर बुलिंग की ओर जाए ही ना, उससे हम प्रभावित ना हो, लेकिन कोई ऐसी जगह है जहां हम शिकायत कर सकते हैं इन चीज़ों के बारे में? जैसे आपने बताया ब्लॉक कर दीजिए, वो एक मेथड है, लेकिन क्या कहीं शिकायत भी दर्ज की जा सकती है?
0: डेफिनेटली यस, साइबर स्टेट्स के सेशंस रहते हैं, आप डेफिनेटली गो एंड कंप्लेन ओवर देयर. इमीडिएटली एक्शन लिया जाता है, वन शुड गो एंड informed directly there. तो उनके पास इस तरह की complaints आती हैं और वो action भी लेते हैं.
1: एक तो सरीन जी, कोई मैसेज जो आप श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं बताइए.
0: मैं यहाँ पे एक कोट से एंड करना चाहूंगी, दैट इंटरनेट गिव्स अस द एक्सेस टू वेरियस थिंग्स, राइट, इन जस्ट वन क्लिक, बट यू हैव टू बी वाइज, यू हैव टू बी इंटरनेट ऑसम, सो डेफिनेटली यू विल बी द सुपर सर.
1: तो श्रोताओं आपको समझ में आया कैसे हम गूगल सर्चर बन सकते हैं, बी इंटरनेट ऑसम बन सकते हैं एकदम एकता सरीन जी की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद शिवानी जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके और अपने लिसनर्स से बात करके।
1: जी, तो आप सुन रहे हैं टेक गुरु प्रोग्राम, सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.8, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम टेक गुरु 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए, अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

0: अगर आपको दो हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें। ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
1: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
0: दो हफ्तों से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
3: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भारत विभूति।
1: मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी दोस्त सुनीता सिंह।
2: मैं हूं आपका दोस्त दीपक नेमा।
1: श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति। इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं स्वाधीनता संग्राम सेनानी, समाज सेवी और गांधीवादी विचारक लोकनायक उमियो कुमार दास की। श्रोताओं, आज हम उस महान आत्मा को जानने समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र की स्वतंत्रता और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। आज हम स्मरण कर रहे हैं लोकनायक उमियो कुमार दास जी का, एक ऐसे महापुरुष जो केवल असम के ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के गौरव हैं।
2: लोकनायक उमियो कुमार दास जी का जीवन साधारण नहीं बल्कि असाधारण त्याग, तपस्या और समर्पण की एक अद्भुत गाथा है। वे एक ऐसे युग के साक्षी और निर्माता थे जब भारत की आजादी के लिए हर घर से दीप जल रहे थे, हर सीने में देशभक्ति की ज्वाला धधक रही थी। उस महान स्वतंत्रता संग्राम में उमियो कुमार दास जी ने अग्रणी भूमिका निभाई। आज के इस कार्यक्रम में हम उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानेंगे, उनके योगदान को समझेंगे और उनसे प्रेरणा लेंगे। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, हम उनके दिखाए मार्ग पर चलेंगे और एक बेहतर समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे।
1: श्रोताओं, उमियो कुमार दास, जिन्हें लोक नायक की उपाधि से विभूषित किया गया था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान सेनानी, समाज सेवी, गांधीवादी विचारक, शिक्षाविद और असम के प्रमुख राजनेता थे। उनका जीवन त्याग, समर्पण और राष्ट्र सेवा का एक अनुपम उदाहरण है। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश की स्वतंत्रता और समाज की सेवा में समर्पित कर

0: सांस्कृतिक शहर है। वहाँ की शैक्षणिक वातावरण ने उनके व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्कूल के दिनों से ही वे मेधावी छात्र के रूप में जाने जाते थे।
1: प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद ओमियो कुमार दास ने गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज में दाखिला लिया। कॉटन कॉलेज असम का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान था, जहां उन्हें उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त हुई। यहां उनका संपर्क विभिन्न राष्ट्रवादी विचारों और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए लोगों से हुआ। बाद में उन्होंने कलकत्ता के सिटी कॉलेज में अपनी उच्च शिक्षा जारी रखी। कलकत्ता उस समय भारतीय राजनीति और स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र था। यहाँ उन्हें गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों की गतिविधियों को करीब से देखने का अवसर मिला। इन महान नेताओं के विचारों और कार्यों ने युवा ओमियो कुमार दास को गहराई से प्रभावित किया।
0: कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने छात्र राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया। वे छात्र संगठनों से जुड़े और राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करने लगे। ये उनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत थी। जब 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया, तब ओमियो कुमार दास ने इसे अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। वे गांधी जी के आदर्शों, सत्य, अहिंसा और स्वराज से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने असम में असहयोग आंदोलन को संगठित करने में अग्रणी भूमिका निभाई।
1: युवा ओमियो कुमार दास ने असम के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर छात्रों और युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सार्वजनिक सभाओं को संबोधित किया और लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत की। उनके प्रभावशाली भाषणों और निष्ठा ने कई युवाओं को आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। सन 1930 में जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, ओमियो कुमार दास इसके असम में प्रमुख नेताओं में से एक थे।
0: कठोर परिस्थितियां भी उनके संकल्प को नहीं तोड़ सकी। जेल में रहते हुए भी वे अन्य कैदियों को प्रेरित करते रहे और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति उनकी निष्ठा बनाए रखते रहे। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा निर्णायक मोड़ था। ओमियो कुमार दास ने असम में इस आंदोलन को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, तो ओमियो कुमार दास ने इसे पूरी तरह से अपना लिया।
1: इस आंदोलन के दौरान गोपीनाथ बारडोली और सिद्धिनाथ शर्मा जैसे नेताओं के साथ ओमियो कुमार दास को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें असम के विभिन्न जेलों में कैद किया गया। उनकी गिरफ्तारी ने आंदोलन को और अधिक तीव्र कर दिया। पूरे असम में लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ओमियो कुमार दास को अनेक बार कारावास में डाला गया। उन्होंने कुल मिलाकर कई वर्ष जेल में बिताए, लेकिन उनका मनोबल कभी नहीं टूटा। उनकी अटूट देशभक्ति और निरंतर संघर्ष ने उन्हें असम के सबसे सम्मानित स्वतंत्रता सेनानियों में से एक बना दिया।
0: ओमियो कुमार दास की योग्यता और लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें 1937 में असम विधानसभा के लिए चुना गया। ये उनके राजनीतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। 1945 में उन्हें भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी चुना गया, जहां उन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में योगदान दिया। भारत की स्वतंत्रता के बाद ओमियो कुमार दास ने अपने राजनीतिक कार्य को जारी रखा। उन्होंने ढेकियाजुली विधानसभा क्षेत्र से लगातार 3 बार 1951, 1957 और 1962 में चुनाव जीता। इन वर्षों के दौरान उन्होंने असम सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्री पदों पर कार्य किया।
1: जब ओमियो कुमार दास असम के श्रम मंत्री थे, तब उन्होंने चाय बागान मजदूरों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। असम में चाय उद्योग एक प्रमुख आर्थिक स्तंभ था, लेकिन चाय बागान के मजदूर अत्यंत शोषणकारी परिस्थितियों में काम करते थे। ओमियो कुमार दास ने चाय बागान मजदूरों के लिए भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड की स्थापना की। ये पहल एशिया में अपनी तरह की पहली योजनाओं में से एक थी। इस योजना ने हजारों मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की और उनके जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: उन्होंने मजदूर वर्ग को संगठित करने और उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलनों में भाग लिया जहां उन्होंने भारतीय मजदूरों के अधिकारों की वकालत की। शिक्षा मंत्री के रूप में ओमियो कुमार दास ने असम में बुनियादी शिक्षा योजना को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये योजना महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित थी जिसका उद्देश्य शिक्षा को व्यवहारिक और उपयोगी बनाना था।
1: उन्होंने असम में शिक्षा के प्रसार के लिए कई स्कूल और शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए। उनका मानना था कि शिक्षा ही समाज को सशक्त बनाने का सबसे प्रभावी साधन है। उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार पर ध्यान केंद्रित किया। ओमियो कुमार दास ने खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री के रूप में भी कार्य किया। इस दौरान उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि असम के सभी क्षेत्रों में खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं की उचित आपूर्ति हो। उन्होंने विशेष रूप से गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया।
0: ओमियो कुमार दास केवल एक राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे बल्कि एक प्रतिभाशाली लेखक भी थे। उन्होंने असमिया भाषा में कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। ओमियो कुमार दास की सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक उपलब्धि महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, उसका असमिया भाषा में अनुवाद था। उन्होंने इसे मोर सत्य अनेश्वर काहिनी शीर्षक से अनुवादित किया।
1: ये अनुवाद असम के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने उन्हें गांधी जी के जीवन और विचारों को उनकी अपनी भाषा में समझने का अवसर दिया। इस अनुवाद ने असम में गांधीवादी विचारों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओमियो कुमार दास ने महात्मा गांधी पर कई अन्य पुस्तकें भी लिखीं। गांधी जीर जीवनी अर्थात गांधी जी की जीवनी, ये पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। महात्मा गांधी आमी किदोर बुजिलू अर्थात महात्मा गांधी को मैंने कैसे समझा, इस पुस्तक में उन्होंने गांधी जी के विचारों और सिद्धांतों की अपनी व्याख्या प्रस्तुत की है।
0: असुमोत महात्मा, असम में महात्मा, ये पुस्तक महात्मा गांधी की असम यात्रा और असम में उनके प्रभाव पर केंद्रित है। इन पुस्तकों ने असम के लोगों को गांधीवादी विचारधारा से परिचित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओमियो कुमार दास की लेखनी सरल और प्रभावी थी जो आम लोगों तक आसानी से पहुंच सकती थी। ओमियो कुमार दास का जीवन केवल राजनीति तक सीमित नहीं था, वे एक समर्पित समाज सेवी थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज की सेवा में लगा दिया।
1: ओमियो कुमार दास कई गांधीवादी और सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए थे। ओमियो कुमार दास ने इस संगठन के माध्यम से असम में अस्पृश्यता के खिलाफ संघर्ष किया। भारतीय आदिम जाति सेवक संघ से भी वो जुड़े थे। इस संगठन के माध्यम से उन्होंने आदिवासी समुदायों के कल्याण के लिए कार्य किया। इसके साथ ही भारत सेवक समाज से भी उनका संबंध था। ये संगठन समाज सेवा के लिए समर्पित था और ओमियो कुमार दास इसके सक्रिय सदस्य थे।
0: गांधी स्मारक निधि, ये संगठन महात्मा गांधी की स्मृति में स्थापित किया गया था। ओमियो कुमार दास इससे सक्रिय रूप से जुड़े थे। कस्तूरबा स्मारक निधि, ये संगठन महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य करता था। असम सेवा समिति, ये असम का एक प्रमुख समाज सेवी संगठन था जिसके संस्थापकों में ओमियो कुमार दास भी थे। ओमियो कुमार दास ने असम में नशा विरोधी अभियान चलाया। उस समय असम में विशेष रूप से चाय बागानों में शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन एक बड़ी समस्या था। उन्होंने लोगों को नशे की बुराइयों के बारे में जागरूक किया और नशा मुक्ति के लिए कार्यक्रम चलाए।
1: ओमियो कुमार दास ने कुष्ठ रोग और तपेदिक से पीड़ित रोगियों के पुनर्वास के लिए भी कार्य। उस समय ये रोग एक बड़ी सामाजिक समस्या थे और इन रोगों से पीड़ित लोगों को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। ओमियो कुमार दास ने इन रोगियों के लिए उपचार और पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्य किया। ओमियो कुमार दास एक सरल और विनम्र व्यक्ति थे। उनका जीवन गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित था। वे सत्य और अहिंसा में दृढ़ विश्वास रखते थे। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि लोग उन्हें लोक नायक कहकर पुकारा करते थे।
0: उनमें अद्भुत संगठन क्षमता थी। वे विभिन्न वर्गों के लोगों को एक साथ लाने और उन्हें एक साझा उद्देश्य के लिए संगठित करने में सक्षम थे। उनकी वाणी में जादू था। जब वे सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करते थे तो लोग मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनते थे। ओमियो कुमार दास एक निडर व्यक्ति थे। ब्रिटिश शासन के दौरान उन्होंने कई बार जेल की यातनाएं सही, लेकिन कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनका नेवर से डाई, कभी हार ना मानने वाला दृष्टिकोण उनके चरित्र का एक प्रमुख पहलू था।
1: श्रोताओं, वो एक आदर्श पारिवारिक व्यक्ति भी थे। उनकी पत्नी पुष्पलता दास भी एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेविका थीं। दोनों ने मिलकर समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के कार्य किए। उनकी बेटी ने भी पिता के आदर्शों का अनुसरण किया। ओमियो कुमार दास के समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के महान योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें सन 1963 में पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया था। ये भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये सम्मान उन्हें उनके जीवन भर के समर्पित कार्य के लिए दिया गया था।
0: भारतीय डाक विभाग इंडिया पोस्ट ने 15 मई 1998 को ओमियो कुमार दास के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। ये सम्मान उनके महान योगदान की स्वीकृति थी। 1995 में ओमियो कुमार दास की जन्म शताब्दी के अवसर पर गुवाहाटी में ओमियो कुमार दास सामाजिक परिवर्तन और विकास संस्थान की स्थापना की गई। ये संस्थान भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त संस्थान है। ये संस्थान सामाजिक शोध और विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। ढेकियाजुली में एक कॉलेज को लोकनायक ओमियो कुमार दास कॉलेज के नाम से नामित किया गया है। ये कॉलेज उनकी स्मृति में स्थापित किया गया है और असम में युवाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करता है।
1: ओमियो कुमार दास का निधन 23 जनवरी सन 1975 को हुआ। उस समय उनकी आयु लगभग 79-80 वर्ष थी। उनके निधन से असम और पूरे भारत ने एक महान नेता और समाज सेवी को खो दिया। उनकी मृत्यु पर असम में शोक की लहर दौड़ गई। उनके निधन के समय उनकी पत्नी पुष्पलता दास और उनकी बेटी जीवित थीं। पुष्पलता दास स्वयं एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और संसद सदस्य थीं। उनका निधन सन 2003 में हुआ।
0: ओमियो कुमार दास की विरासत आज भी असम में जीवित है। उनके द्वारा स्थापित संस्थाएं और उनके विचार आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। चाय बागान मजदूरों के लिए उनके द्वारा स्थापित भविष्य निधि योजना आज भी लाखों मजदूरों को लाभान्वित कर रही है। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें, उनके द्वारा किया गया गांधी की आत्मकथा का अनुवाद आज भी असम में व्यापक रूप से पढ़ा जाता है। ये पुस्तकें नई पीढ़ियों को गांधी जी के विचारों और स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से परिचित कराती हैं।
1: ओमियो कुमार दास ने असम के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने असम में शिक्षा के प्रसार के लिए कई संस्थान स्थापित किए और ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक जागरूकता फैलाने का कार्य किया। असम की अर्थव्यवस्था में चाय उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए उन्होंने चाय बागान मजदूरों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अथक प्रयास किए। उनकी पहल से चाय बागान मजदूरों को न केवल बेहतर वेतन मिला बल्कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त हुई।
0: उन्होंने असम की बहु सांस्कृतिक और बहुभाषी विरासत को समझा और सभी समुदायों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने चाय बागान मजदूरों और अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रयास किए। ओमियो कुमार दास ने असम के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने किसानों की समस्याओं को समझा और उनके समाधान के लिए नीतियां बनाई। उन्होंने कृषि सहकारी समितियों की स्थापना में सहायता की, जिससे किसानों को बेहतर बाजार और उचित मूल्य मिल सके। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास पर भी जोर दिया। उनका मानना था कि स्वस्थ समाज ही विकसित समाज हो सकता है।
1: ओमियो कुमार दास के जीवन का केंद्र गांधीवादी विचारधारा थी। उन्होंने महात्मा गांधी के 3 प्रमुख सिद्धांतों, सत्य, अहिंसा और सर्वोदय को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाया। सत्य उनके जीवन का आधार था। वे हमेशा सत्य बोलते थे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हों। उन्होंने कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया। उनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा उनके चरित्र की पहचान थी।
0: ओमियो कुमार दास अहिंसा में दृढ़ विश्वास रखते थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी उन्होंने हमेशा अहिंसक तरीकों को अपनाया। वे मानते थे कि हिंसा से कभी भी स्थायी समाधान नहीं मिल सकता। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि अहिंसा के माध्यम से बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। सर्वोदय यानी सभी का उत्थान उनके जीवन का मूल मंत्र था। वे किसी एक वर्ग या समुदाय के विकास में विश्वास नहीं करते थे। उनका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों, विशेषकर सबसे पिछड़े और वंचित वर्गों का उत्थान करना था। उन्होंने अपने जीवन में इस आदर्श को साकार करने का प्रयास किया।
1: गांधी जी की तरह ओमियो कुमार दास भी खादी और स्वदेशी वस्तुओं के प्रबल समर्थक थे। वे हमेशा खादी के वस्त्र पहनते थे और लोगों को भी स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने असम में खादी उद्योग के विकास के लिए भी प्रयास किया। ओमियो कुमार दास महिला सशक्तिकरण के प्रबल समर्थक थे। उनकी पत्नी पुष्पलता दास स्वयं एक सशक्त महिला थीं, जो स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेती थीं। ओमियो कुमार दास ने महिलाओं को शिक्षा और समाज सेवा के कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।
0: उन्होंने कस्तूरबा स्मारक निधि के माध्यम से महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य किया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी और लड़कियों के लिए स्कूल स्थापित करने में सहायता की। ओमियो कुमार दास का मानना था कि समाज का वास्तविक विकास तभी संभव है जब महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। उन्होंने अपने जीवन में इस विचार को व्यवहारिक रूप दिया।
1: ओमियो कुमार दास युवाओं के लिए एक महान प्रेरणा स्रोत थे। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प और समर्पण से समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। ओमियो कुमार दास ने अपना संपूर्ण जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कभी व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं सोचा। उनका जीवन निस्वार्थ सेवा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
0: ओमियो कुमार दास अपने सिद्धांतों पर हमेशा अडिग रहे, चाहे जेल की यातनाएं सहनी पड़ी या अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। ओमियो कुमार दास शिक्षा को समाज के विकास का सबसे महत्वपूर्ण साधन मानते थे। उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा के प्रसार के अथक प्रयास किए। युवाओं को उनसे ये

0: और एकता का बार गिरफ्तार किया गया और जेल में कठोर यातनाएं भी दी गईं। लेकिन इन यातनाओं ने उनके संकल्प को और अधिक मजबूत किया।
1: स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी के कारण ओमियो कुमार दास को आर्थिक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी आर्थिक लाभ के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। ओमियो कुमार दास ने अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष किया। उस समय समाज में ये प्रथाएं गहराई से जड़े जमाई हुई थीं। उन्हें इन रूढ़ियों को तोड़ने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अपने प्रयासों में सफल रहे।
0: ओमियो कुमार दास के समकालीन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कई महान नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध थे। महात्मा गांधी उनके आदर्श और प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने गांधी जी से व्यक्तिगत रूप से भी भेंट की और उनके मार्गदर्शन में काम किया। गांधी जी भी ओमियो कुमार दास के समर्पण और कार्य से प्रभावित थे। स्वतंत्र भारत में ओमियो कुमार दास का संबंध कई अन्य राष्ट्रीय नेताओं से भी था। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इन नेताओं के साथ काम किया।
1: असम के अन्य प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों जैसे गोपीनाथ बारडोली, तरुण राम फूकन और अन्य के साथ भी उनके घनिष्ठ संबंध थे। इन सभी नेताओं ने मिलकर असम में स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत बनाया। लोकनायक ओमियो कुमार दास का जीवन त्याग, तपस्या और समर्पण की अद्भुत गाथा है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश की स्वतंत्रता और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। वे केवल एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी नेता, कुशल प्रशासक, प्रभावी लेखक और समर्पित समाज सेवी भी थे।
0: उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प और समर्पण से समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। उन्होंने गांधीवादी सिद्धांतों को केवल सिद्धांत के रूप में नहीं बल्कि व्यवहार में अपनाया और इस प्रकार एक आदर्श जीवन जिया। आज भी असम और पूरे भारत में उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उनके द्वारा स्थापित संस्थाएं और उनके विचार आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। वे सच्चे अर्थों में लोकनायक थे। लोकनायक अर्थात जनता के नायक, जिन्होंने अपना जीवन जनता की सेवा में समर्पित कर दिया।
1: ओमियो कुमार दास की जीवनी युवा पीढ़ी के लिए एक महान प्रेरणा है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा और निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य ही जीवन को सार्थक बनाता है। उनकी स्मृति हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन देती रहेगी। लोकनायक ओमियो कुमार दास जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची महानता त्याग में है, सेवा में है, निस्वार्थ भाव में है। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प और समर्पण से पूरे समाज को बदल सकता है। सत्य, अहिंसा और सर्वोदय के मार्ग पर चलकर ही मानवता का वास्तविक विकास संभव है। दोस्तों, अब वक्त है आपसे विदा लेने का। कार्यक्रम भारत विभूति में हमने ढेर सारी बातें की लोक नायक ओमियो कुमार दास जी के बारे में। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन अखिलेश कुमार वर्मा और मैं था आपका दोस्त दीपक निमा
0: और मैं थी आपके साथ सुनीता सिंह।
1: तो दोस्तों, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भारत विभूति 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए।